मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 47 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही

0: फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जी हाँ श्रोताओं, जब हर सांस में ईश्वर का स्मरण बस जाता है तब जीवन केवल जिया नहीं जाता बल्कि धन्य हो जाता है। संसार के रिश्ते धन पद और वैभव एक दिन साथ छोड़ देते हैं, पर प्रभु का नाम जन्म जन्मांतर तक हमारा सच्चा साथी बनकर रहता है। हर सांस हमें याद दिलाती है कि ये जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है, इसीलिए प्रत्येक श्वास के साथ उनका नाम लेना केवल भक्ति नहीं बल्कि कृतज्ञता का वो भाव भी है। जब मन प्रसन्न हो तो ईश्वर का धन्यवाद करें और जब मन दुखी हो तो उन्हीं का सहारा।

ईश्वर का गुणगान केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता श्रोताओं, बल्कि ये तो आत्मा की पुकार होती है। जब हृदय सच्ची श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करता है, तब मन को ऐसी शांति और आनंद प्राप्त होता है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता।

श्रोताओं, सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, पर ईश्वर की भक्ति से मिलने वाला आनंद अनंत और अक्षय होता है। उनके नाम का जप मन को निर्मल बनाता है, चिंताओं को हल्का करता है और जीवन को सही दिशा देता है। जो व्यक्ति प्रभु के गुणों का गान करता है, उसके भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष जैसे दिव्य गुण स्व

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है।

0: उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना की आखिरी पेशकश। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है।

का प्रयागराज केंद्र श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कठोपनिषद से पाठ।

सामने आकर खड़े रहते हैं। चतुर व्यक्ति दोनों की उचित परीक्षा करके उनके चुनाव में विवेक से काम लेता है। धीमान पुरुष प्रेय के मुकाबले श्रेय को ही पसंद करता है। मूर्ख आदमी प्रेय को योग क्षेम का साधन समझकर उसे अपनाता है।

पद का प्रतिपादन करते हैं। सब तप अंतिम साध्य के रूप में जिस पद की घोषणा करते हैं, जिस पद की चाह से मुमुक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें थोड़े में कहता हूँ, वो पद है ओम।

बहिश्च। जिस तरह जगत में व्याप्त एक ही अग्नि अपना स्वरूप बनाए रखकर अलग अलग पदार्थों की संगति से उन उन रूपों को धारण करता है, उसी तरह सर्वभूतों के अंदर रहने वाला अंतर्यामी एक होते हुए भी हर एक रूपधारी के साथ उस रूप का बनता है और उनके बाहर अलिप्त भी रहता है।

जिस तरह एक ही वायु जगत में प्रवेश करके दुनिया के अलग अलग पदार्थों के संबंध में आकर उन उन आकारों को धारण करता है, उसी तरह सर्वभूतों के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा एक होते हुए भी हर एक रूपधारी के साथ उस रूप का बनता है और उनके बाहर अलिप्त भाव से भी रहता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर

0: सब लोगों का नेत्र रूप सूर्य जिस तरह साधारण नेत्रों के बाह्य दोषों से अछूता रहता है, उसी तरह सब भूतों के अंदर रहने वाला एक आत्मा अलिप्त बाह्य होने से दुनियावी दुखों से लिप्त नहीं होता।
1: गौरव ग्रंथों से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कठोपनिषद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचों खेती किसानी हम सब करत ही, और समय के साथ देखा तकनीक भी आई गई बा। आवाज सबसे ज्यादा जरूरी बा कि जब तकनीक आए तो हम कुछ में बदलाव करी। अब बदलाव में सबसे बड़ी चीज बा कि हम रासायनिक जौन खेती करते ही उसे अब वैज्ञानिक भैया अरे बतावता है बहुत कुछ नुकसान बा। अब वो चाहे मिट्टी खराब होत हो या फिर पर्यावरण पे असर होत हो। तो जैविक खेती एक शब्द आए कि जैविक तरीके से हम कैसे खेती करी, एकर लाभ का बाटे, और ऐसे जौन उपज होते वो बाजार में 4 पैसा के आमदनी कैसे बढ़ाए देते। आज यही सब चीजें पे बात करे के बदे भैया डॉक्टर प्रवीण चरण भैया आए हैं। डॉक्टर साहब आपके हमरे एक कार्यक्रम में स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब हमरे किसान भैया अरे ये जाना चाहिए कि जैविक खेती के उद्देश्य का बा।
1: देखिए, जैविक खेती कोई एक नया विषय नहीं है। जैविक खेती जो हमारे पूर्व से हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं। जब 1960 में हमारे पास खाद्यान्न की कमी हुई, तब केमिकल खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि हमें उपज बढ़ानी थी। और आज की स्थिति यह है कि उपज तो हमारी बढ़ गई, बढ़ने के हमारे पास खाद्यान्न इकट्ठा हो गया। परंतु इसके साथ साथ क्या हुआ, केमिकल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारी मृदा की स्थिति खराब हुई है, हमारे स्वास्थ्य भी खराब हुए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अब जैविक खेती के ऊपर हमें फिर से जाना पड़ेगा। निश्चय ही जैविक खेती से ही हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं।
0: एक बात आवत है जिसे कि रसायन डाला थी, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जैविक खेती के तरफ बढ़ावत हैं कि ऐसे का करें खेती में को कहलाए कि हाँ भाई जैविक तरीके से खेती की जाती है।
1: देखिए, जैविक खेती के लिए बहुत ही पुराने तरीके ये थे कि हम जो है फसल चक्र अपनाया करते थे। गर्मियों में बहुत गहरी जुताई किया करते थे, जिससे क्या होता था कि जो कीट पतंगों के अंडे होते थे, जब ज़मीन पे धूप पड़ती थी तब 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था, ज़मीन गर्म हो गई 50 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता था, जिससे क्या हो कीट पतंगे बीमारी के जो भी कीटाणु हुआ करते थे वो हमारे मर जाते थे। और उसके बाद हम तुरंत अप्रैल मई में जैसे खेत हो गया, उसके बाद हम क्या करते थे, तुरंत अपने सनई या ढैंचे की बुवाई किया करते थे,
0: जी
1: जिससे क्या होता था हमारी मृदा में ह्यूमस बढ़ता था, जिससे कि हमारे वो तत्व जो सूक्ष्म तत्व हमारे धरती के अंदर पाए जाते थे। आपने देखा होगा, कुछ समय पहले तक आपने देखा था कि जब बारिश हुआ करती थी तो केंचुआ निकल के हमें घूमते दिखाई देते थे। आज की परिस्थिति ये केंचुआ कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे मित्र कीट जो है केमिकल यूज़ करने से अधिकताई से वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और
0: जी
1: जो
0: सर
1: शत्रु कीट है उन्होंने अपनी ताकत उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में देखते बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो अगर हम खेती को अगर टिकाऊ करना है तो हमें C/N ratio 0.7 से 8 के बीच हो तब अच्छी खेती हो सकती है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में क्या 0.2 से 3% आ गया है। तो ये बड़ी गहन सोचने की बात है, क्योंकि अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाले समय में खेती नहीं कर पाएंगे। और केमिकल से खेती कब तक आप करेंगे, क्योंकि भाई पहले खेत तक कहते थे खेती और बाड़ी, यानी खेती और पशु दोनों साथ साथ हुआ करते थे। परंतु आज की भौतिकता में पशु धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं और खेती हमारी हो रही है। खेती हम डिपेंड हो गए हैं, जाते हैं बाजार, बाजार से यूरिया ले आए, यूरिया ले आए, DAP ले आए, ठीक है, हम इसके लिए मना नहीं करते हैं। संतुलित मात्रा में इन उर्वरकों का प्रयोग कीजिए। हम बहुतायत से उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से हमारी मृदा हमारी खराब होती चली जा रही है। हमें मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
0: जी
1: मिट्टी की जांच करने से हमें ये पता लगता है कि हमारी भूमि में, हमारी मृदा में किन किस चीज़ों की कमी है। 16 तत्व की जगह अब 17 तत्व हो गए जो हमारी मृदा में चाहिए अच्छी खेती के लिए। अब उन तत्वों की जब कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो खेती हमारी अच्छी नहीं होगी, खेती में तुरंत हमें नुकसान होता रहेगा। इसलिए पहले आपने देखो वर्मी कंपोस्ट चला करता था, है गोबर की खाद चला करती, हमारे खेत खेत से निकले हुए अवशेषों को हम खेतों में ही जोत बो दिया करते थे,
0: जी
1: जिससे क्या होता था वहाँ मृदा की अच्छी मृदा बन जाती थी और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती थी। आज की स्थिति क्या है, हमारी पैन जो है वो है ठोस होता चला जा रहा है, बारिश होती है हमारे खेत का पानी बाहर निकल जाता है, ना कि नीचे सोखता है, तो जिससे हमारी खेती में पानी की भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो हमें फसल

0: चक्र जरूर अपनाना चाहिए। जैसे धान बोया है, धान के बाद हमें गेहूं लेना है, गेहूं के बाद हमें अरहर लेनी है, फसल चक्र दलहनी फसलें जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे टॉक्सिक अपने छोड़ते हैं जो कि दूसरे पौधे उस टॉक्सिक को अपना भोजन बनाते हैं,
1: जी
0: तो हमारे
1: डॉक्टर
0: मृदा का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बात होता है जिसे रासायनिक खेती और जैविक खेती, अगर हम एक तुलनात्मक अपने किसान भैयारे से बात करी तो एक जैविक खेती से लाभ ज़्यादा बा उ कौने रूप में बा?
0: देखिए, जैविक खेती से लाभ निश्चित अधिक है, क्योंकि जैविक खेती को देखिए एकदम एक साथ में हमें नहीं करना है, क्योंकि एक साथ करने से क्या है नुकसान, तो हमें 10% अपने हिस्से का लेके धीरे धीरे 10% लेकर 10-10% करके हमको बढ़ाना है, क्योंकि आज जैविक खेती की तरफ हर आदमी का रुझान हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य आदमी की आज सबसे बड़ी स्थिति होगी कि स्वास्थ्य हमारा सही रहे, तो इनके उत्पाद भी अच्छे महंगे बिक रहे हैं, आप पैकेजिंग अच्छी हो रही है तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु इसको धीरे धीरे करें जिससे आपको खेती से अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: लागत बहुत हद तक किस स्तर पे कमी हो सकता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जैविक खेती से आपकी लागत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, जो कि आप बाजार से खरीदते हैं केमिकल, बाजार से खरीदते हैं उर्वरक, वो जो आपको आपके घर में, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में मिल जाते हैं, तो उनको तैयार करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बाजार मूल्य आपका शून्य हो जाता है, और उससे क्या है आपको जो भी उत्पाद प्राप्त होगा उसमें आपको फायदा होगा।
1: शुरुआत में चुनौती का बात है खेती कर,
0: शुरुआत में देखिए चुनौती ये है कि हमें बाज़ार के बारे में बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, तो से हमें ये पता होना चाहिए हमारा जो जैविक उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं वो हम बेचेंगे कहाँ,
1: जी
0: तो उसके लिए हमें बाज़ार का ज़रूर पता कर लेना चाहिए। आप तो आजकल बहुत ही व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, आप ऑनलाइन भी अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, और उनको बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अगर आपका उत्पाद अच्छा है, सेटिस्फाई है, तो आपसे लोग आपके पास आकर स्वयं ही ले लेंगे।
1: बिल्कुल, काहे कि मतलब कि जैविक खेती से जो भी हम उत्पादन करी थी बाजार खुद आए के खेती तक वो खरीद लेते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल 100% खरीदेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, जिसे आप बताएं कि फसल चक्र अपनावें, गोबर के खाद जो भी परंपरागत तरीके से खेती रही ओका अपनावें, और माटी के जांच की भी बात करें, और जौन भी उत्पादन होत बा ओका बाजार में सही तरीके से पहुँचे हैं तो 4 पैसा के मुनाफा ज़्यादा हुई।
0: बिल्कुल 100%
1: डॉक्टर साहब,
0: होगा।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दें हमें किसान भैया हरे के, और निश्चित बात कि अब किसान भैया हरे थोड़ा सा जागरूक होता है धीरे धीरे, भाई रसायन के तरफ से जैविक खेती अपनी है तो निश्चित बात कि 4 पैसा की आमदनी ज़्यादा हुई। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में इतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आपने सुना डॉक्टर प्रवीण चरण से दुर्गेश कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय था जैविक खेती से लाभ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, वर्षा ऋतु में बच्चों की आंखों में होने वाला सामान्य संक्रमण।
1: वैसे तो बरसात का मौसम गर्मी से राहत देने का काम करता है, परंतु इस मौसम में कई तरह के संक्रमण होने की संभावना रहती है। खास तौर पर सबसे ज़्यादा संक्रमण आँखों का होता है, क्योंकि आँखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक व संवेदनशील हिस्सा हैं। बरसात के मौसम

0: मौसम में कीटाणु अधिक पनपते हैं, जिससे इस मौसम में कंजंक्टिवाइटिस, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्टाई आदि अन्य कई तरीके से आई के इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। परंतु यदि बरसात के मौसम में अपनी आँखों की देखभाल सही प्रकार से करें तो ये संक्रमण से बची रह सकती हैं। इस मौसम में आँखों की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। आँखों की समस्याओं को रोकने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे आँखों को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ये आदत बच्चों में बहुत कॉमन है। आँखों को हमेशा साफ़ पानी से हाथ धो करके ही छूना चाहिए। आँखों को बार बार साफ़ पानी से धोना चाहिए, जिससे आँखों एवं उसके आसपास जमी धूल गंदगी निकल जाए और आँखों में नमी भी बनी रहे। आँखों को पोंछने के लिए साफ़ कपड़े का प्रयोग करें। किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया, रुमाल या किसी अन्य कपड़े का प्रयोग ना करें। हेल्दी एवं पौष्टिक भोजन करें, जिससे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तथा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे आँखों को पूर्ण आराम मिल जाता है। यदि आप कोई चश्मा पहनते हैं तो उसे नियमित रूप से साफ कपड़े से साफ करते रहिए, नहीं तो चश्मे का इन्फेक्शन आपकी आँखों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं तो बरसात के मौसम में इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि असावधानी पूर्वक कॉन्टैक्ट लेंस के प्रयोग से आँखों को नुकसान भी पहुँच सकता है। यदि आपको तैरना पसंद है तो ये ध्यान रखें, जिस पानी में आप स्विमिंग कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा रनिंग वाटर हो। यदि आप स्विमिंग पूल में तैरना पसंद करते हैं तो ये देखें कि पूल का पानी साफ़ हो और पूल के आसपास कहीं पे भी गंदा पानी इकट्ठा ना हो। बरसात के मौसम में आई इन्फेक्शन से बचने के लिए बाहर जाते समय चश्मा लगा कर जाएं। यदि आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है तो चश्मा या किसी भी तरह के ग्लास का प्रयोग ना करें तथा अपने चश्मे, रुमाल या तौलिया का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए ना दें, जिससे कि दूसरे की व्यक्तियों की आँखों में संक्रमण ना हो सके। यदि आपकी आँखों में खुजली हो रही है तो शुरू में उसे ठंडे पानी से धोएं। अगर फिर भी खुजली कम नहीं हो रही है तो नज़दीकी आँख के डॉक्टर से जाके जाँच कराएं। यदि आपकी आँखें लाल हो गई हों, उसमें सूजन हो रही हो, जलन हो रही हो, पीले रंग का मवाद आ रहा हो, तो अपने अनुभव के अनुसार कोई दवाई ना लें, इसके बजाय आँखों के विशेषज्ञ से सलाह लें। मानसून के दिनों में कॉर्नियल अल्सर एक गंभीर समस्या है। इससे आँख की पुतली पर घाव हो जाता है, जिससे आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर समय रहते इसका सही इलाज ना हो तो इससे अंधापन भी हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। मानसून के दिनों में स्टाई की समस्या बहुत कॉमन है। इस रोग में पलकों पर सूजन आ जाती है तथा बहुत पेन होता है, पलक फूलकर लाल हो जाती है। ऐसा होने पर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। यदि घर पर किसी सदस्य को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो उसे आँखों में दवा डालने के बाद अपने हाथों को ठीक से धोना चाहिए तथा संक्रमित व्यक्ति का सामान अलग रखना चाहिए। इन सावधानियों को रखकर इस रोग को घर में अन्य सदस्यों में फैलने से रोका जा सकता है। घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें तथा जल जनित क्षेत्रों के पास जाने से बचें, क्योंकि इस तरह के रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, जिससे गंदगी बढ़ती है, जिससे बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन एवं मलेरिया हो सकता है। यदि आप हमारी बताई हुई बातों को मानते हैं तो बारिश के मौसम में भी आप अपनी आंखों की पूर्ण सुरक्षा रख सकते हैं।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, वर्षा ऋतु में बच्चों की आंखों में होने वाला सामान्य संक्रमण। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 7:31 से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

शाम जी बजकर 30 मिनट पर पंचायत घर कार्यक्रम में तेरस लाल और साथियों से लोकगीत सुनने के अलावा सुनिएगा मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवानी शाम 5:15 पर। सुबह 7 बजे से आनंद लीजिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनाएंगे सुबह 7:10 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दोपहर 12:15 पर सुनना न भूलिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन। सुबह 8:45 पर रोज की ही तरह सुनवाएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9 बजे और दिन में 10:30 पर। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनाएंगे दिन में 11 बजे। सुगम संगीत के अंतर्गत सुबह 9:50 पर कलाकार होंगे अर्पित मिश्र। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार संगीता मिश्रा और त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वरों में लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। दोपहर 2:30 पर मोहनलाल कांसकार और साथी सरोज सिन्हा और संगीता राय के स्वर में लोकगीत सुनिएगा। बच्चे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग सुनेंगे दिन में 11:15 पर। कल्पना सहाय की वार्ता सुनवाई जाएगी, समझें अपनी भावनाएं सवारें अपना भविष्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपने फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का कार्यक्रम सुनिएगा हेलो अनुरोध दोपहर 1:15 पर। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता, ग्रामीण बच्चों में खेल और रचनात्मकता का विकास।

0: श्रोताओं, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 6:55 होने को हैं, आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष

0: निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तन

0: सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत 26,000-अधिक-2,000-तम वर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का, स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब आनंद फिल्मों से भजन का।

फिल्म से भजन कार्यक्रम में अभी आपने सुना था अखियों के झरोखे से, फिल्म से ये भजन। हेमलता का स्वर था, समीर ने शब्द रचना दी थी और डेविड धवन का संगीत था। और अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं आदिपुर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: श्रोताओं को याद दिला दें, सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है और सुबह 10:30 पर सुनवाएंगे कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार।

0: तार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता।
0: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60

0: जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
1: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आलू के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई सम्पन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट, आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन, राग तोड़ी, और सुनिए धुन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन राग तूड़ी और धुन। और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

अभी आपने आनंद लिया आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें। आप सुनेंगे पहले समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़ और फिर खबरनामा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,800

0: करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने की सरकार

0: के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया।

0: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Udaan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending.

0: match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas, Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the five-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Saira. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Ira Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
4: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही

0: मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
0: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमीकंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
0: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त

0: का बना है, जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्क दर्ज हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुए को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 70वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दुरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज 9 बजे आप सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी आई है, और दिन में 10:30 पर कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत सुनवाएंगे।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

नहीं बल्कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। नमस्कार, आदाब, सस्नेह, अभिवादन, सत श्री अकाल, शुभम मंगलम आप सभी को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त मोना पांडे।

दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर खेत में किसान अकेला हो, बाजार में छोटा दुकानदार अकेला हो, कोई महिला अकेली हो या कोई युवा अपने सपनों के साथ अकेला संघर्ष कर रहा हो, तो मंजिल तक पहुंचना कितना कठिन हो जाएगा, है ना? लेकिन जब यही लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, अपने संसाधन जोड़ लेते हैं, अपनी मेहनत और विश्वास को एक कर देते हैं, तब जन्म लेती है सहकारिता। जय श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाती है, और इस वर्ष हम 2026 में ये दिवस 5 जुलाई को यानी आज मना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में 3 मिलियन यानी 30 लाख से भी अधिक सहकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और इनके माध्यम से 1 अरब यानी 100 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, दुनिया की लगभग 10% कार्यरत आबादी को सहकारी संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती हैं।

श्रोताओं, सवाल ये है कि आखिर सहकारिता है क्या? तो आपको बता दें कि सहकारिता का अर्थ है सबके लिए, सबके साथ और सबके द्वारा विकास। इस व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य बराबरी का अधिकार रखता है। निर्णय मिलकर लिए जाते हैं और लाभ भी सभी में समान रूप से बांटा जाता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का विकास महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, भारत की पहचान भी सहकारिता से गहराई से जुड़ी हुई है। दूध क्रांति हो, किसानों की उन्नति हो, ग्रामीण बैंक हो या महिला स्वयं सहायता समूह, हर जगह सहकारिता ने लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली लाई है। आज हमारे देश में लाखों सहकारी समितियां, कृषि, डेयरी, बैंकिंग, चीनी उद्योग, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और आवास जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी सहकारिता और अधिक सशक्त बनाने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भी की, ताकि सहकार से समृद्धि का सपना साकार हो सके। एक से

श्रोत आइए अब बात कर लेते हैं इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई इस पर। तो आपको बता दें कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। बाद में इसकी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1995 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। तब से प्रत्येक वर्ष ये दिवस दुनिया को ये संदेश देता है कि सहयोग के सतत विकास की सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का सबसे प्रभावी माध्यम है। संविधान में 97वां संशोधन के अनुसार जो कि 2011 में पारित हुआ था और 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ, इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक लोकतांत्रिक, स्वायत्त और जवाबदेह बनाना था। अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 43(b) को राजनीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। इसमें राज्य को स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, स्वायत्त संचालन और पेशेवर प्रबंधन प्रणाली सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। साथ ही भाग 9(b) अनुच्छेद 243(zh) से 243(zt) जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियां और उनके गठन, चुनाव, प्रबंधन, लेखा परीक्षा यानी ऑडिट आदि से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021 में निर्णय उसने दिया कि भाग 9 ब के प्रावधान राज्य की सहकारी समितियों पर पूरी तरह लागू नहीं होंगे क्योंकि इस संशोधन को राज्यों से आवश्यक अनुमोदन नहीं मिला था। हालांकि बहुराज्य सहकारी समितियां इन पर ये प्रावधान लागू रहते हैं। तो सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन को संवैधानिक मजबूत

97वां संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया तथा संविधान में अनुच्छेद 43 बी और भाग 9 बी जोड़े गए।

0: येलो
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किसी एक दिवस या विशेष विषय के बारे में आपको बताएं, चर्चा करें और साथ ही आपका मनोरंजन भी हो। तो गाने भी सुनते चलिए और बातें भी। हर वर्ष इस दिवस की एक विशेष थीम भी निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से विश्व समुदाय को सहयोग, समावेशन और टिकाऊ विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, यदि समाज में सहकारिता ना हो तो क्या होगा? छोटे किसान बाजार में पीछे रह जाएंगे, छोटे व्यापारी बड़ी कंपनियों के सामने टिक

0: येलो
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किसी एक दिवस या विशेष विषय के बारे में आपको बताएं, चर्चा करें और साथ ही आपका मनोरंजन भी हो। तो गाने भी सुनते चलिए और बातें भी। हर वर्ष इस दिवस की एक विशेष थीम भी निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से विश्व समुदाय को सहयोग, समावेशन और टिकाऊ विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, यदि समाज में सहकारिता ना हो तो क्या होगा? छोटे किसान बाजार में पीछे रह जाएंगे, छोटे व्यापारी बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर कम मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। लेकिन जहां सहकारिता है, वहां विश्वास है, वहां रोजगार है, वहां समान अवसर हैं और सबसे बड़ी बात, वहां इंसानियत है। सच ही कहा गया है, अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पांचों उंगलियां मिलकर मजबूत मुट्ठी बन जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए आज हम अपने जीवन में भी सहकारिता की भावना को अपनाने का संकल्प लें। यदि विद्यालय में विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करें, यदि पड़ोसी एक दूसरे का साथ दें, यदि समाज का हर व्यक्ति दूसरों की प्रगति में अपनी खुशी तलाशे, तो हमारा देश निश्चित ही विकास की ऊंचाइयों को छू लेगा। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रतिस्पर्धा आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन सहयोग पूरी दुनिया को आगे बढ़ा सकता है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं मोना पांडे आज के कार्यक्रम के इस अंक से विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का हाथ थामे रहिए और जीवन में सहकारिता की इस सुंदर भावना को सदैव जीवंत रखिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तोत्री थी मोना पांडे, कार्यक्रम प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की।

0: उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार।
1: वंदना जी नमस्कार। सभी सुधीर श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है कार्यक्रम चिट्ठी आई है में।
0: नेहा जी देखिए ये हमारे एक मुझे लगता है कि ये नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं और ये हैं मोहम्मद अदनान जी।
1: जी
0: इन्होंने हमें संदेश भेजा है रामपुर प्रतापगढ़ से।
1: क्या बात।
0: और
1: है?
0: ये कहते हैं कि आज मैंने मामूल के मुताबिक रेडियो ऑन किया उर्दू प्रोग्राम सुनने के लिए
1: जी।
0: तो प्रोफेसर सालिहा रशीद साहिबा अपना मकाला पेश कर रही थी
1: जी।
0: उनके पेश करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया। साथ ही डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी साहब का कलाम अदबी था। AIR के तमाम अहबाब का शुक्रिया। उर्दू ड्रामे पर कोई प्रोग्राम सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। साथ ही उर्दू प्रोग्राम के लिए एक और संदेश आ रहा है नेहा जी, आतिफ खान आजमी उत्तर प्रदेश से जिन्होंने हमें लिखा है संदेश। ये कहते हैं कि उर्दू प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमने प्रोफेसर सालिहा राशिदा रशीद साहिबा से शिबली नुमानी और शेरुल आजम पर मकाला सुना जो हमारे तमाम साथियों को पसंद आया। शिबली जी हमारे गांव के थे। मैंने अपने दादा और वालिद से इनके बारे में बहुत सुना और बाद में पढ़ने का मौका भी मिला। उसके बाद डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी ने अपने कलाम को बहुत अच्छी आवाज़ में पेश किया। AIR प्रयागराज के तमाम मेंबर का बहुत शुक्रिया। मुमकिन हो तो इरफान सिद्दीकी का भी कोई प्रोग्राम प्रस्तुत कीजिए।
1: बहुत शुक्रिया अदनान जी और आतिफ जी, आप रामपुर से और आपने आज़मी लिखा है तो शायद आज़मगढ़ से आपने ये पत्र लिखा है। अच्छा लग रहा है। उस समय तो जब आपने ये कार्यक्रम सुना है तो उस समय उर्दू कार्यक्रम के जो इंचार्ज मोहम्मद शमीम जी रहे, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र पुंछ हो गया है तो अभी वर्तमान में इस कार्यक्रम के जो इंचार्ज हैं प्रदीप मिश्र जी हो गए हैं। तो आपने कहा कि डॉक्टर सालिहा आई थीं और जफरुल्लाह जी ने बहुत सुंदर मकाला प्रस्तुत किया था। कोशिश रहेगी कि जो स्टैंडर्ड आपने सुना है सुनते रहे हैं वो हमारा केंद्र उसी तरह से मेंटेन करता रहे। और इरफान जी पर आधारित आपने कार्यक्रम सुनाने के लिए कहा है तो ये कंसर्न सेक्शन तक आपकी पसंदगी को हम वहाँ तक ज़रूर भेजेंगे ताकि इस पर आधारित कार्यक्रम आप सभी सुन सकें। तो बहुत शुक्रिया अदनान जी और आतिफ जी।
0: और नेहा जी दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी हमें ये संदेश भेज रहे हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। ये कहते हैं कि हमें आकाशवाणी प्रयागराज के वैसे तो सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन 3 जून 2026 का कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में शिप्रा श्रीवास्तव जी द्वारा साइकिल दिवस पर जो उन्होंने जानकारी दी थी वो बेहद लाजवाब लगी। और इसके साथ साथ 3 जून को ही जो प्रसारित हुआ था 7:30 बजे कार्यक्रम बोलते नगमे, नेहा जी और वंदना जी बहुत अच्छी प्रस्तुति आप दोनों की रही, शानदार लगी ये प्रस्तुति, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: ग्राम जसवाड़ी मध्य प्रदेश से आप लिख रहे हैं नागनपुरे जी, वंदना जी, गोलू जी, शुक्रिया आपका। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और शिप्रा जी ड्यूटी पर, शिप्रा जी ने वो गाना बजाया ही है, सुनो सुनो मिस चैटर्जी समझो दिल का मैटर जी,
0: जी।
1: तो ये जो साइकिलिंग है दोस्तों हमारे पैरों को तो मजबूत करती ही है, हमारी जेब को भी मजबूत करती है और प्रकृति का ख्याल रखते हुए ये आदत चलती रहती है हमारे साथ। तो अगर नज़दीक जाना हो और आप कर सकते हैं तो ज़रूर साइकिल ही चलाएं, साइकिल ही इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और प्रकृति भी बचेगी, हम भी बचेंगे। बोलते नगमे आपको पसंद आया, इसी तरह इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। शुक्रिया आप दोनों का।
0: सिटी पोस्ट ऑफिस प्रयागराज से हमें संदेश भेजा है अपना जफर अब्बास साहब ने और ये कहते हैं नेहा जी कि मेरे एक मित्र ने 6 जून को आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर यूसुफ हसनैन की एक क्लिप भेजी जिसमें लीवर संबंधी लाभदायक जानकारी, लीवर के जो फंक्शन होते हैं और ख़राब लीवर से होने वाली जो बीमारियां हैं और उसे कैसे बचा जा सकता है, इन विषयों पर ज्ञानवर्धक जो चर्चा की वो बहुत अच्छी लगी। इसको जानने के लिए गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है लेकिन डॉक्टर यूसुफ साहब ने बड़े ही संक्षेप में बड़े ही सहजता के साथ जो समझाया वो हमारी समझ में सरलता के

चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को। वंदा राठौर का नमस्कार। दोस्तों, खूबसूरत से संदेश आपके हम तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में

0: साथ आ गया और कृपया यूसुफ साहब को पुनः अवसर दें और वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और बचाव पर उनसे जरूर बातचीत करें।
1: बहुत शुक्रिया जफर अब्बास जी, आप प्रयागराज से पत्र लिख रहे हैं। डॉक्टर यूसुफ हसनैन जी का आना हुआ था और उन्होंने किडनी पर बहुत शानदार बात की थी। आपने जो कहा कि ये जो छोटी सी क्लिप किसी ने रिकॉर्ड की रेडियो सेट के माध्यम से और आपको भेज दी और आप बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और आपका जो ये सुझाव है कि डॉक्टर हसनैन को दोबारा बुलाएँ तो ज़रूर बुलाएँगे। और आपने जो विषय सुझाया है कि वर्षा ऋतु में कैसे इंसान अपना ख्याल रखें उस पर ही आधारित बातचीत सुनवाने की पूरी कोशिश होगी, तो बहुत शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, ये सविता सिंह जी हैं
1: जी।
0: और राजापुर प्रयागराज से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। ये कहती हैं कि पनघट में सभी बहनों को मेरा राम राम, और मैंने प्रोग्राम सुना पनघट और अक्सर सुनती रहती हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और जो हम पिछले बहुत दिनों से भूल चुके होते हैं तो वो जो मस्ती के हमारे पुराने दिन थे वो सब जहन में ताज़ा हो जाते हैं जब जब हम इस प्रोग्राम को सुनते हैं, जहाँ पर हमारी जो बहनें हैं वो बड़ी ही ख़ास जानकारियाँ हमसे साझा कर रही होती हैं और लोकगीतों के ज़रिए वो हमारे दिल को छू जाती हैं।
1: सविता जी, आपने बिल्कुल दिल की बात कह दी। वो शायद हम सभी के दिल में ये बात होती है कि हम लोग जब छोटे थे या उसका जो अगला पड़ाव होता है जब हम यू ओपन में रहे हैं हम सभी लोग, तो वो जो पेड़ों पर झूले हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, मठरी खाना, रसमलाई खाना, वो चाहे उसको क्या कहते हैं, दही बड़ा इस तरह की जो बातें पनघट में ये जो पनहारन हमारी करती हैं बहुत सुंदर। कई बार वो व्यंजन की बात करती हैं कि सत्तू का पराठा कैसे बनाएं, तो कई बार कहती हैं कि भैया बहनी हरिन जब खाली समय हो तो का करें। तो ये सारी बातें आप सुनती हैं, दूसरों को भी ज़रूर बताएं, इसी तरह से चिट्ठियां भेजिए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो नए नए पक्ष हैं गांव के उससे रूबरू कराते रहें। शुक्रिया आपका।
0: और नेहा जी, ये एक संदेश मुझे दिख तो रहा है, नाम मैं ढूँढ रही हूँ, और अच्छा हाँ, ये है डॉक्टर कहकशा इरफान जी
1: जी,
0: और इन्होंने प्रयागराज से अपना संदेश भेजा है और ये कहती हैं कि 22 जून को उर्दू कार्यक्रम सुना जिसके अंतर्गत मिर्ज़ा हादी रुसवा की नॉवेल निगारी उमराव जान अदा के आईने में डॉक्टर जोही ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो पूरी तरह से उनके बारे में बयां किया, जो बातें बताई वो बड़ी ही दिलचस्प लगी, बहुत मालूमाती बातें थीं और ये प्रोग्राम सुनकर दिल खुश हो गया हमारा।
1: डॉक्टर कहकशा इरफान जी, आप भी केंद्र आई थी कुछ समय पहले, आपका आना हुआ था और सभी सुधी श्रोताओं को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मिर्ज़ा हादी पर आधारित, और डॉक्टर जूही ने जिस तरह से पेश किया और आपने कहा कि बहुत मालूमाती जान पड़ता है, तो जिस तरह से हमारा उर्दू कार्यक्रम चलता है और जिस तरह की रिसर्च होती है, आप सभी लोग जानते हैं, कोशिश होती है कि जो कार्यक्रम और जो व्यक्तित्व विशेष रहे हैं उसकी आत्मा को ढूंढकर आप सभी सुधी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो ऐसा अगर हम करने में सफल रहे हैं तो हम आपकी ओर से जो मुबारकबाद है वो कबूल करते हैं और सेक्शन तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे।
0: माधुरी कुशवाहा जी कोठा पारशाह प्रयागराज से हमें संदेश भेज रही हैं और इनका कहना है कि 10 जून को एक ही कलाकार जो कि अभिनेता सुनील दत्त साहब पर केंद्रित था, वंदना श्रीवास्तव जी ने जो पेश किया, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने सुनील दत्त साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके फिल्मी करियर के बारे में जो बातें बताई, साथ ही जो गीत सुनवाए, उसने प्रोग्राम को बहुत ही रोचक बना दिया, मन खुश हो गया और बहुत सुंदर प्रस्तुत रही 15 जून की वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत मोना पांडे जी ने जिसे प्रस्तुत किया था और ये बातें हुई थी, अनुभव की पूंजी और उपेक्षा का दर्द, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर में खूबसूरत तरीके से एक एक वाक्य जो उन्होंने बोला है वो प्रेरणा से भर दे रहा था, आंखों को नम कर दे रहा था। हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे माता पिता दादा नानी, उनका कोई विकल्प नहीं है, उनके अनुभव के छांव तले हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जीवन के मंत्र को समझ सकते हैं। ये प्रस्तुति वाकई बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी, लाजवाब थी।
1: बहुत शुक्रिया माधुरी जी, आपको नमस्कार प्रयागराज पसंद आया, आपको वॉइस ऑफ प्रयाग पसंद आया, उसमें प्रयागराज की आप

0: आवाज़ शामिल रही। मोना जी का काम अच्छा लगा और वंदना जी का काम अच्छा लगा, वंदना श्रीवास्तव जी का और राठौर जी का भी नहीं तो देखिए सुधीर श्रोताओं, अगर राठौर जी बुरा मान गए तो हम क्या करेंगे
1: नहीं चिट्ठियां तो मैं तब भी पढ़ूंगी श्रोताओं की
0: ये हंसी ठिठोली भी कितनी बढ़िया है ना सुधीर श्रोता आप सभी के साथ तो देखिए बहुत सुंदर लगता है जब उन्होंने एक ही कलाकार के अंतर्गत सुनील दत्त साहब पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और उनकी जो सादगी रही है, जिस कदर उन्होंने दर्शकों को छुआ, उसी पन को हम लोगों ने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने की कोशिश की और आपको अच्छा लगा। वॉइस ऑफ प्रयाग में ये जो आप कह रही हैं, मोना जी ने कहा कि अनुभव की पूंजी, हमारे केंद्र से अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं और बस ज़रूरत इस बात की है कि समाज के हर कोने से लोग आगे आएं और इन बातों को स्वीकार करके आचरण में ढालें। शुक्रिया आपका माधुरी जी।
1: और नेहा जी देखिए, इसी कार्यक्रम को पसंद किया है नीरा त्रिपाठी जी ने अशोक नगर से, और इनका कहना है कि मोना जी ने जब बातें बताई बुजुर्ग दिवस के अवसर पर, तो हमारी भारतीय संस्कारों में, हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे वृद्धजन होते हैं उनका बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में, हमारे वो अभिमान होते हैं। मोना जी ने जो एक एक शब्द बोले हैं और इस ढंग से बताया कि किस तरह से आज जो बच्चे हैं कल युवा होंगे और आगे चलकर वो भी बुजुर्ग होंगे, तो हम अपने व्यवहार को अगर अच्छा रखेंगे तो हमारे बच्चे आगे चलकर ही हमारा साथ देंगे, हमारे मनोभाव को समझेंगे। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पर प्रेमेन जी का कार्यक्रम, नीलम जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, डाकिया का जो महत्व सोनम जी ने बताया था वो भी बहुत अच्छा लगा है, ओलंपिक डे के बारे में जो बातें बताई गई नमस्कार प्रयागराज के अंतर्गत वो भी बहुत अच्छी लगी, और ख़ासतौर पर आकाशवाणी के 90 वर्ष कार्यक्रम सुना, वसुधा बनर्जी जी से नेहा जी की बातचीत बड़ी सार्थक लगी, दुर्लभ संस्मरण सुनने को मिला, हार्दिक शुभकामनाएं, कार्यक्रम चिट्ठी आई है में हमारा ये पत्र जरूर शामिल कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है। कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से बातचीत की थी वंदना राठौर ने, और अब आप सुनेंगे सामयिक चर्चा जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गाँव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी पर संपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी
3: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खास तौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
4: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही

0: लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की, जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
1: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
0: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी, या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं, उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़ कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं, कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गाँव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद

0: इस अधिनियम के जरिए की जा रही है। लेकिन सर, मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थी जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर, क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
1: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है, इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है, अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं, और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है, वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी, और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा, और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए, उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है, और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
1: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी, या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा, और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की

0: नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है। इसमें एक और जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है, कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा गाँव का आमूलचूल परिवर्तन कर।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।

बहुत हुआ और रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए कि लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, यूं तो अदा फरीज़े हम साएगा बहुत हुआ, यूं तो अदा फरीज़े हम साएगा बहुत हुआ। मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए, अर्ज क्या है कि बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहां दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहां दादे हुनर सोच के चल, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी है मौजे हवा, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, और मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, और फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, और डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, जानी

0: दीदे तर सोच के चल, जानिबे दस्त जरा दीदे तर सोच के चल। और दूसरी गजल का मतला समात फरमाए, सहले मुमतना में समात फरमाए। अच क्या है कि सदा देने से कुछ होता नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है। अशेर देखें कि निकल जाती है दूर उंगली छोड़ाकर, निकल जाती है दूर उंगली छोड़ाकर, हवा के साथ अब चलना नहीं है, हवा के साथ अब चलना नहीं है। अशेर बतौर खास ये समात फरमाए, आज क्या है कि यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है। और शेर देखें कि तो फिर ये आबयारी किस लिए है, तो फिर ये आबयारी किस लिए है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है।
1: जनाब सलाम फैजी के नशार के साथ सामिन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। आप सुन रहे हैं
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अर्पित मिश्रा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे अर्पित मिश्र। आपने सुने इनके स्वर में गीत और भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।

फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनाएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में श्रोताओं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीता मिश्रा, त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वर में लोक गीत। तो पहले सुनते हैं संगीता मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। अभी आपने सुना था संगीता मिश्रा के स्वर में देवी गीत, और अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में कहरवा।

लोकगीतों में कार्यक्रम लोकमाधुरी में अब समय हो चला है त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीतों को सुनने का। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना था दादरा, स्वर था त्रिभुवन लाल यादव का, और अब लीजिए सुनिए त्रिभुवन लाल यादव और साथियों के सुर में ये कहरवा।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार थे संगीता मिश्रा, त्रिभुवन लाल यादव और साथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत।
1: श्रोताओं, नृत्य हम जब भी देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ हैपन हुआ, कुछ हमारे साथ भी हुआ और हम उसी भाव में बह चलते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि गाना सुना आपने और आपके जो होठ हैं वो गुनगुनाने लग जाते हैं, भले ही हमें गाना आए या ना आए। वैसे नृत्य के साथ भी होता है ना, आपने कभी देखा हो शादी में बजते हुए या फिर किसी मंच पे किसी भी नृत्यकार या नृत्यांगना को देखा हो तो पैर अचानक से उसी में शामिल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है, वो हमें धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगता है और हम उसके होने लगते हैं। आपको लग रहा हो कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आप अनु सिन्हा जी हैं। आपने ज़रूर बहुत सारे वीडियोस उनको लाइव करते हुए देखा होगा। कथक नृत्यांगना हैं आप, देश विदेश के मंचों पर आपने भावों को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। चलिए आज उस भाव के सफ़र पर निकल पड़ते हैं जो कभी जन्मे और उन्होंने उसको सींचा। स्वागत करते हैं अनु सिन्हा जी का, बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: मैंने आपको कई सारे वीडियोस में भी देखा है, पढ़ा भी आपको, अच्छा लगा ये जान करके कि जिस तरह से आप बिल्कुल इलेक्ट्रिफाई कर देती हैं जो हमारे जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग होते हैं, आप जब देखती हैं कि वो आपके साथ होने लगते हैं तो कैसा लगता है?
2: ये सब सही में मेरे लिए एक सपना जैसा ही लगता है आज भी, क्योंकि इस सपने को ही लेकर मैं पैदा हुई हूँ और इस सपने को सजाने के लिए, संवारने के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र इसमें मैंने न्योछावर किया है। तो मुझे तो हर एक छोटा से छोटा मंच और बड़ा से बड़ा मंच जो है बहुत ऊर्जा और एनर्जी देकर जाता है। मैं इसी में जागती हूँ, इसी में सोती हूँ और इसी में मैं खोई रहती हूँ।
1: जब आपने सोचा, आप टाटा नगर से हैं
2: जी, जी,
1: उसके बाद आप गौतम बुद्ध नगर आती हैं, गोरखपुर का जो इलाका है अपना, फिर कुछ जयपुर से सफर हुआ दिल्ली और तमाम शहर
2: जी,
1: और विदेशों के भी कुछ
2: जी,
1: स्थान आप गई। उस समय आपने जब ये सोचा ही होगा कि नहीं मैं भी कुछ करूं, तो ये लगा था आपको कि इतना बड़ा हो जाएगा?
2: नहीं, कभी भी नहीं, इतना बड़ा तो कभी नहीं सोचा था, ये तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये जरूर है कि अब जैसे जैसे जो सपने साकार होते जाते हैं वैसे वैसे लगता है कि वाकई जब इंसान बचपन से कुछ सोचता है, और मैं बच्चों को भी हमेशा ये कहानी अपनी सुनाती हूँ कि मैं सपने में देखा करती थी कि मैं मंच में नृत्य कर रही हूँ, मैं बॉम्बे में कलाकारों के साथ मैं घूम रही हूँ, मैं बॉम्बे के बड़े बड़े कलाकार लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, ये मैं सपने में बचपन में देखती थी। लेकिन मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी नृत्य संगीत से कोसों दूर था।
1: फिर पिता

0: जी
1: हाँ, मेरे
0: डांटते नहीं
1: पिताजी
0: थे।
1: बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ऐसे सोसाइटी से, हम लोग जैसे बिहार की मैं
0: जी
1: बेटी हूँ,
0: जी
1: बिहार में मेरे नानी घर, दादी घर, सब बिहार। तो जो जमशेदपुर है वो भी पहले बिहार था, अब
0: जी
1: झारखंड है।
0: अब झारखंड है।
1: तो मैं जब फादर मेरे रेलवे में थे, जमशेदपुर में पैदा हुई मैं, और जमशेदपुर में जो कल्चर है वो पूरा बहुत ही एक मल्टी कल्चर है। वहाँ पर
0: हाँ,
1: पूरे देश के लोग वहाँ
0: लोग
1: पर
0: रहते
1: रहते हैं,
0: हैं।
1: क्योंकि टाटा स्टील सिटी है, उसके वजह
0: हाँ
1: से पूरे हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे लोग वहाँ पर कार्यरत है। और वहाँ पर बंगाल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसके वजह से आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। घर घर में वहाँ पर नृत्य संगीत करते हैं। इवन मेरे
0: जी
1: पिताजी हमें स्कूल में भी नृत्य संगीत में पार्ट लेने नहीं देते थे, जबकि हमारे मम्मी के नानी घर में इसका बहुत चलन था। क्योंकि मेरे नानी घर एक जमींदार फैमिली से होते थे, जो राजगीर के पास उनका
0: जी
1: गाँव है, स्योतर नाम है उस जगह का। तो वहाँ पर उनके घर में बोलते थे, कुछ भी करो मंदिर में करो, अपने घर में करो, चाहे भजन है, कीर्तन है, शादी ब्याह के नृत्य संगीत, कुछ भी है, सिर्फ घर में अपने घर के स्तर पे। लेकिन
0: ये
1: हाँ
0: जो एक ग्लास सीलिंग है
1: जी,
0: कि
1: इसको
0: नहीं करना है,
1: हाँ नहीं करना ही नहीं था हमें तो
0: और उस
1: करना।
0: अनूप की नज़र में
1: हाँ
0: जो सपने में घूम रही थी चीज़ें,
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल,
0: हकीकत में करना था।
1: हाँ
0: कैसे
1: बहुत
0: हुआ ये?
1: उसके लिए बहुत मेहनत करते करते अड़ोस पड़ोस में हमने कुछ देखा नृत्य संगीत सीखते हुए लोगों को करते हुए, तो बहुत मुझे इच्छा होती थी, मैं छुप के देखती थी और उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करती थी। और जब हम लोग के वहाँ पर बहुत सारे जो फेस्टिवल होते थे, जो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इन सब पूजाओं में बहुत ज़्यादा वहाँ पर
0: प्रस्तुतियां
1: सभी
0: देते हैं।
1: बंगाली और उड़िया जो उड़ीसी डांसर, तो मुझे उनसे बहुत रहता था, तो उससे मुझे बहुत मार भी पड़ती थी। तो ऐसे करते करते जब शादी की जो बारी आई, तो मेरी बारी भी आ गई, एक चार बहनों की शादी हो गई, फिर पांचवी में मैं थी, तो मेरी भी शादी वही जब 16-17 साल 2 महीने की उम्र थी मेरी उस समय, तो मेरी शादी हो गई। उस समय हमने बस अपना स्कूल खत्म ही किया था, कॉलेज में पढ़ा था, और कॉलेज की पढ़ाई जो है हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग शादी के बाद ही करते हैं, क्योंकि शादी तो हो गई, स्कूल खत्म होते हैं, कॉलेज
0: जी
1: में पाँव रखा, शादी हो गई, फिर आपके ससुराल वाले आपको पढ़ा सकते हैं, और ससुराल में सब लोग पढ़ाते ही हैं, क्योंकि हम
0: जी
1: लोग क्या है वो जो गौना वगैरह भी होता है कि
0: हाँ
1: एक साल के बाद
0: हाँ
1: में, वो
0: जी
1: सब परंपरा तो उस समय थी, अब तो वो सब परंपरा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस सब परंपरा को देखा है घर में। तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी पढ़ना चाहे, सब लोग पढ़ते रहते हैं और घर भी संभालते रहते हैं। और मेरी भी ऐसे शादी हो गई और मैं भी आ गई, उसके बाद तो मेरा तो सपना तो फिर हमें भी लगा, फिर सपना तो टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया,
0: जी
1: फिर सोचना ही नहीं था। फिर ऐसे करते करते फिर 19 साल की उम्र में तो मेरा बेटा भी हो गया एक,
0: जी
1: तो हम लोग भी उस समय स्ट्रगल करने लग गए, वहां से फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली में फिर थोड़ी पढ़ाई भी
0: मतलब
1: करते
0: अभी
1: रहे।
0: तक वो प्रारंभिक शिक्षा शुरू नहीं
1: नहीं
0: हुई
1: नहीं नहीं नहीं
0: थी।
1: बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं,
0: आह,
1: बिल्कुल भी नहीं, वो जो देखा था
0: मतलब
1: थोड़ा
0: वो जो
1: बहुत।
0: सपना देखा
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: रखा हुआ है, और अभी तक
1: हाँ अभी तो
0: वो
1: कुछ नहीं, वो तो शुरुआत ही नहीं हुई, बस वो जो देखा, छुप के देखा, जो ऐसे देखा, जो थोड़ा स्कूल में देखा या कहीं। अच्छा उस समय तो ना टीवी ना कुछ ऐसा ना कुछ, हमें तो जो जिस तरह के से मैगजीन जो होते हैं, जो मैगजीन में भी कुछ फोटो देखते हैं, वो सब फोटो देखना भी मना था, कभी कभार वही पंडाल में देख लिया या स्टेज पे देख लिया बंगाली लोग। तो मैं तो बता रही हूँ कि 84-85-80 के बाद की, उसमें 80 से लेके 90 तक 95 तक तो कुछ था ही नहीं घर में। हमारी तो ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली, जब शादी हो गई हमारे, फिर हस्बैंड भी उस समय अपना काम में नए नए थे सब लोग, और हम लोग
0: जी
1: को भी अपना मुझे पढ़ाई भी चल रही थी, कुछ ना कुछ करना भी था, लेकिन नृत्य और संगीत के बारे में तो सोचना ही नहीं था, वो तो सब भूत भी उतर गया था एक तरह से। और गाना सुनते थे, गाना मैं बहुत अच्छा गाती थी बचपन में,
0: जी
1: गाना मैं जरूर गाती थी, कोई भी गाना मैं सुनती थी तो गाना याद कर लेती थी और उसको मैं अच्छा से गाती थी, तो गाना लोग सुनते थे, तो मैं सोचती थी चलो ठीक है अब गाना ही गाएंगे और डांस तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन खैर ऐसे हुआ कि ऐसे समय चलता गया, उसके बाद जब मेरा बेटा 6-7 साल का हो गया, 8 साल का, तब हम लोग की स्थिति थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई, संभल गई, काम धंधा भी अच्छा हो गया, सब सेटल होने लग गया परिवार, तो पैसे की भी कमी नहीं रही। उसके बाद फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में मैं गई थी, तो उनके ऑफिस में टेबल पे एक कथक की किताब रखी हुई थी, तो देखते ही मैं तो बहुत ही ललायित हो गई कि ये किताब कैसे। तो उन्होंने बोला ये हमारे कोई वेंडर है वो आए हैं, तो उनकी बहन ये करती है, उनको कुछ पैसे देने थे स्पॉन्सरशिप, तो हमने उनको पैसे दिए। तो मैंने बोला अरे आपने पैसा भी दिया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने ये काम जो मैं करना चाहती थी उसके लिए आपने किसी और को पैसा दिया। मैंने किनको दिया उनके, आप प्लीज मिलवा
0: जी
1: दीजिए। तो उन्होंने फिर उनको बुलाया, और ये 99 की बात है, 69 से आप समझ लीजिए, 69 से भी अगर मैं पैदा हुई, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी अगर आप वो समझ सकते हैं
0: मतलब
1: कि
0: 30 साल,
1: हाँ 30 इयर्स हो गए।
0: ये
1: हाँ
0: तो
1: यही एक
0: अनोखी
1: मेरी
0: कहानी
1: अनोखी
0: है।
1: है, और इसको ही मैं बोलती हूँ कि मेरा नाम कहीं गिनीज बुक में भी जाना चाहिए, मेरा नाम कहीं और भी जाना चाहिए, और भी कहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में मैंने शुरू किया उस उम्र में तो लोग खत्म कर देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: उस उम्र में लोग नाचना गाना खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और अपने घर गृहस्थी संभालते हैं, लेकिन हमने सब घर गृहस्थी पहले किया, सब चीजें पहले

0: माली। उसके बाद जब मौका मिला फिर उनको मैंने बुलाया और उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला हाँ मेरी सिस्टर है, वो अपना संस्था चलाती हैं ऐसे ऐसे, और वहाँ पर एक गुरुजी हैं वो सिखाते हैं। तो बहुत बड़े गुरुजी थे, बहुत नामी, वो रावत सर गुरुजी थे, हरिश्चंद्र रावत जी। बिरजू महाराज जी से भी सीखा हुआ था उन्होंने, बड़े बड़े गुरुओं से सीखा हुआ था, दुर्गा लाल जी से सीखा हुआ था, प्रसार भारती, दूरदर्शन, सबके बहुत ग्रेडेड आर्टिस्ट आज भी है उनका सब जगह। तो उन्होंने बोला कि वो गुरुजी वहाँ पर संस्था चलाते हैं और सिखाते हैं सबको। मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे एक बार आप मिलवा दीजिए। मैं फिर उनके पास में गई और फिर गुरुजी को जब मैंने अपनी सारी ऐसे बताया कि गुरुजी मन में मेरी ऐसे लालसा है, इच्छा है, तो उस उम्र में कोई भी गुरु अपनाने में बहुत कतराते हैं।
1: हाँ,
0: तो एकदम डरते भी है, कतराते भी है, और सोचते हैं कि इस उम्र में मैं क्या सिखाऊं,
1: हाँ,
0: और कैसे सीखेगी ये,
1: जी
0: ठीक है, और क्या कर लेंगी, बिल्कुल सोचा भी नहीं था गुरुजी ने। अगर मेरी शिक्षा में किसी ने मुझे सहयोग किया तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति, बस मुझे करना ही है, और अब मेरे पास समय भी है और मेरे पास में जगह भी है और पैसा भी है, आप प्लीज कराइए। तो गुरुजी ने बोला कि आप यहाँ पर आके सीखिए। तो मतलब नहीं, मैं सबके साथ तो नहीं सीख पाऊंगी, और वहां पर अगर हम जाके सीखेंगे उनके क्लास में तो मेरे पास में मेरे लिए अटेंशन भी नहीं देंगे और शायद मेरा उतना कॉन्फिडेंस भी ना हो सीखने का। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं यहीं पर आपके लिए बच्चे इकट्ठा कर दूं अपने, जहाँ पर मैं सीखना चाहती हूँ, तो आप यहीं पर सिखा देंगे आके। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ कम से कम आप 30 बच्चे इकट्ठे करो।
1: 30?
0: हाँ, उन्होंने बोला 30 बच्चे, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 99 में शुरू किया, अभी बात 2000 पहुंच गई
1: जी,
0: ठीक है, 26 साल पहले से। 2000 की बात है, 2000 सरस्वती पूजा, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी इस बार सरस्वती पूजा आप मेरे संस्था में करिए, मैंने 30 बच्चे इकट्ठे कर लिए। गुरुजी पूरा सब कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर आए, सजाया अच्छा से, सारे बच्चों को बुलाया, बच्चों को घुंघरू उंगरू दी गई और मुझे भी घुंघरू दे के घुंघरू पूजा करके हम लोगों ने कार्यक्रम पहला दिन का शुरुआत किया, पूरा बड़ा धूमधाम से, और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या मैं बताऊं कि गुरुजी आ गए, बच्चे आ गए, क्लास लग गई, सब चीजें हो गई। मैं जो घुंघरू सुबह बांधती थी तो शाम तक घुंघरू में उतारती नहीं थी, और आने के बाद में उसके बाद में फिर गुरुजी की सेवा में मैं लग जाती थी। मेरी प्रैक्टिस कम होती थी, मैं गुरुजी की सेवा में लग गई। मैं फिर भूल गई कि मुझे नाचना भी है। फिर गुरुजी का आना जाना, उनका सेवा, फिर बच्चे आने लग गए, फिर बच्चों के पेरेंट्स, फिर सारे बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो गए, फिर वो भूल गए कि ये तो अनु जो है ये तो खुद सीखने के लिए मुझे सीखना था ना।
1: जी,
0: एक साल के बाद में मैंने एक बड़ा कार्यक्रम, मैंने बोला गुरुजी एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो गुरुजी ने बोला हाँ करो। सब लोग नाचे, मैं भी गुरुजी के साथ में दो प्रस्तुति मैंने उस समय गुरुजी के ने सिखाया और मैंने उसको नाचा, एक ठुमरी और एक विष्णु वंदना।
1: कैसा लगा
0: तो
1: आपको?
0: ना, हम खूब सुंदर ड्रेस पहने, खूब सुंदर, मतलब कि एकदम, सच पूछिए तो बिल्कुल परियों की दुनिया में मैं चले गई, बहुत आनंद आया। लेकिन बाद में जब मैंने फोटो देखा, वीडियो देखा, तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मैं तो बहुत ही खराब नाच रही हूँ। मैं बहुत रोई, सब लोगों ने भी बोला, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो सच में मैं तो सीखी नहीं उतना, एक साल तो निकल गया लेकिन मुझे तो उतना सीखने का मौका नहीं मिला
1: जी,
0: मैं तो यही सब करते रही। उसके बाद मैंने गुरुजी से इस बारे में बात किया कि गुरुजी मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तो मेरे अपने, तो गुरुजी बोले ठीक है तुम अलग से भी आओ मेरे पास में। फिर हम गुरुजी के पास में बहुत दूर नोएडा से वसंत विहार, 1 घंटा मैं अपने ड्राइवर को लेके जाके सुबह से शाम तक बैठती थी, लेकिन वहां पर फिर से वही हाल, बैठते तो थे घुंघरू बांध के, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट भी मेरी क्लास नहीं हो पाती थी, क्योंकि सब लोग इतना ताबड़तोड़ नाचते थे। फिर हम वहां पर अपने आप को बहुत ही असहाय और एकदम से एकदम नौसिखिया और ऐसे महसूस करते थे कि कोई उम्र को भी लेके इसको, फिर हम वहां पर रोना गाना। मेरे सर्कल बहुत अच्छे थे, मेरे हस्बैंड का सर्कल और उनके जो दोस्त लोग थे, तो सबको जब पता चला कि मैंने नाच शुरू किया है, ये सब किया है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम आपको ना मौका देंगे, आप अपने गुरुजी के साथ में टीम के साथ में प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम लीजिए। तो बड़े बड़े प्रोग्राम मुझे मिलने लग गए, मतलब मुझे तो मिलने लग गए लेकिन प्रोग्राम तो नाच तो लोग और रहे हैं ना, नाम प्रोग्राम में नाम मेरा है लेकिन मुझे तो नाच उतना आता नहीं है, तो मैं कैसे नाचूंगी, तो नाच तो और लोग रहे हैं जो मेरे ग्रुप के लोग हैं जो सीख रहे हैं, जो गुरुजी से सीख रहे हैं, या फिर जो सीनियर डांसर हैं, जो अच्छे डांसर हैं, और मेरा उसमें कहीं भी थोड़ा से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री कहीं हो जाती थी, मैं तैयार वर होके सज के सुंदर से फोटो खिंचा लेते थे और थोड़ा से ऐसे करके। फिर मुझे लगा कि ये भी अब गड़बड़ हो रहा है, तब कुछ डांसर्स और मिले, डांसर्स लोगों ने बोला कि दीदी आप इधर उधर इतना भटक रहे हैं और इतना समय भी लगा रहे हैं, आपके पास में प्रोग्राम्स भी है सब है, तो आप पंडित राजेंद्र गंगानी जी के पास में कथक केंद्र में क्यों नहीं जाते हैं। अब इसी में मैं बताऊंगी कि वही कथक केंद्र है जहां पर मैं 10 साल पहले गई थी
1: जी,
0: उस जगह पे जब मेरी शादी हुई थी एकदम, और तब हम वहां पर गए थे एक बार। उस समय एक उड़िया डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं आता है, आपने कुछ नहीं सीखा है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग ऐसे लोगों को नहीं लेते हैं। उस समय मेरी उम्र वही 18-19, मेरा बेटा नहीं हुआ था, 19 साल से पहले की बात है, तो 18 साल की उम्र थी। अगर उस समय हम सीखते तो शायद मुझे बहुत कामयाबी होती है और पता चले, लेकिन भगवान को जो मंजूर है

0: और जो किस्मत में है, जो समय से पहले जैसे कुछ नहीं मिलता है, तो वो समय से ही होना था। तो बाद में फिर उसी जगह पे मैं पहुंची 2003 में,
1: तो उन्होंने
0: सोचिए।
1: सिखाया।
0: हाँ, फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं अनु, फिर पंडित राजेंद्र गंगाणी जी जब मिले, वो गुरुजी तो इतना प्यार से मिले और इतना अच्छा से उन्होंने देखा, सुना, समझा। उन्होंने बोला, नहीं तुम आओ, हम लोग सिखाएंगे। ओ, इतना सबको उन्होंने मेरी ड्यूटी पर लगा दिया। खुद भी गुरुजी सिखाते थे, मैं दिन भर बैठती थी केंद्र में, जबकि मेरा वहां पर एज के हिसाब से मैं वहां पर क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए इनरोल नहीं हो पाई मैं।
1: जी
0: लेकिन मैं वहां पर क्या था कि उस समय बड़ी आजादी थी कि कथक केंद्र में बैठ के बाहर के लोग भी आराम से दिन भर बैठ के सीख सकते थे और
1: जी
0: बैठ सकते थे, देख सकते थे, समझ सकते थे। फिर तो मैंने तो वहां पर तो अड्डा ही जमा लिया। मैं सुबह ही उठ के चले जाती थी, शाम तक, रात तक। उस समय कथक केंद्र में जो एनएसडी बिल्डिंग है अभी,
1: जी जी
0: उसी के
1: जी
0: अंदर ही हम कथक केंद्र हुआ करता था। और उस समय हमारे गुरुजी कथक केंद्र में वहीं पर
1: अब
0: गुरु
1: वो
0: के पद
1: बात
0: पे
1: आने
0: थे।
1: लगी धीरे धीरे कि नहीं,
0: जी
1: अब वो पकड़ और हस्त
0: हाँ
1: मुद्राएं और वो
0: हाँ
1: सब
0: तब मुझे समझ
1: चीजें।
0: में आने लगे। फिर गुरुजी ने अपने बहुत ही सीनियर सीनियर डांसर्स लोग को भी, सबको बोला कि तुम सब लोग अनु को गाइड करो और तुम बताओ और समझाओ और सिखाओ। फिर उन लोग भी सब बताने लग गए, कुछ घर में भी आके सिखाने लग गए। फिर गुरुजी की क्लास में भी, जहाँ गुरुजी बोलते, जो बोलते, जहाँ, उसके बाद में फिर मैंने प्रोग्राम लेना भी शुरू कर दिया। और फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा भी जो भी निम्न नाचती थी, मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने सच पूछे तो स्टेज पे ज्यादा सीखा। मैंने स्टेज में जो भी टेढ़ा मेढ़ा नाचे, फिर हम देखे कि इतना गंदा नाच रही हूँ, इसको ठीक करना है। फिर मैंने देखा इसमें भी ठीक करना। फोटो, मैंने इतना फोटो सेशन कराया, फोटो देख देख के मैंने अपने आप डांस को ठीक किया कि फोटो में हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, फोटो में हाथ वैसे नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन अपने फोटो में देख के।
1: इसका मतलब है कि आप मूल्यांकन करती थी
0: हाँ
1: बैठ करके, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: नहीं कि हो गया तो फोटो में खो गए,
0: नहीं नहीं नहीं
1: वाहवाही में पड़
0: नहीं
1: गए
0: नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे
1: कि
0: तो लोगों ने बोला कि अनुजी आपका तो
1: हाँ।
0: भाव इतना अच्छा है, आप तो मंच पे खड़े हो जाती हैं तो सबकी छुट्टी कर देती हैं। इतना चने के झाड़ पे चढ़ाया कि मैं तो बोलती थी कि ठीक है। इतना एक मुझे थोड़ा सा मालूम था कि चलो ठीक है, एक जो स्टेज पर्सनालिटी चाहिए वो भगवान ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होने से कुछ स्टेज में डांस अच्छा नहीं लगता है।
1: इसका मतलब जब आपको लोग चढ़ा रहे थे
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: भाई आप तो क्वीन
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: लेकिन जब आप अपनी फोटो खुद ही देख रही थी
0: बिल्कुल
1: तो कैसा लग रहा था कि यार
0: नहीं,
1: कोई कह
0: मैंने तो
1: कुछ और
0: देखा
1: रहा है और
0: भी
1: हम कुछ लग
0: बिल्कुल।
1: और रहे हैं। जैसे ये अंतरात्मा की जो आवाज आ रही थी आपके,
0: हाँ
1: इसको
0: जी
1: यही कहें
0: हाँ बिल्कुल
1: कि जो कुछ भी हो रहा था, शोर चारों तरफ था,
0: जी
1: लेकिन एक आवाज जो आपको सुनाई पड़ रही थी कि ये ठीक तो नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: तो आप उसको मतलब पकड़ ली थी। बहुत लोग पकड़ नहीं पाते,
0: नहीं,
1: वो शोर
0: मैंने
1: में खो
0: सही में
1: जाते
0: वही,
1: हैं।
0: मैंने मेरे पास में वही सिक्स सेंस जो था वो काम मेरा कर रहा था। मुझे खाली एक चीज का थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस था कि चलो मेरे हाथ में थोड़ा सा पैसा है और भगवान का एक थोड़ा सा हमारे पास में सपोर्ट है लोगों का, और मेरे पति भी जो बोल रहे हैं कि ठीक है तुम करो। तो मैं साथ साथ गाना भी सीख रही थी, इसके साथ में तबला वाले को अलग से मैं बुलाती थी। मैं सोचती थी चलो ये डांसर जो है, हो सकता है वो कॉम्पिटिशन में ना बताए, तबला वाले से पूछते हैं।
1: मतलब ये
0: हाँ
1: था कि जानने की जो जिज्ञासा थी वो कभी
0: बिल्कुल,
1: बुझी नहीं
0: नहीं
1: थी
0: नहीं बुझी नहीं।
1: कि
0: और
1: अच्छा इनसे नहीं हो रहा है तो उनसे
0: हाँ,
1: होगा।
0: तो जैसे होता है ना कि एक को पकड़ के बैठ गए, मैंने बोला नहीं ऐसे तो फिर मेरा तो समय ऐसे बहुत लेट हो चुके हैं, हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर मैंने एक सारंगी वाले को पकड़ लिया। वो सारंगी वाला ना बचपन से उसने कथक वालों के साथ में बहुत बजाया था। मैंने उसको बोला कि भैया तुम बता सकते हो मुझे क्या कमी हो रही है। उसके बाद में तबला के जो बोल रटाने लग गए गुरुजी लोग कि तबला के बोल रटो, तबला के बोल याद करो, ताली खाली याद करो, पढ़ंत याद करो। पढ़ंत याद ही नहीं कर पाती थी, इतने
1: जी
0: मुश्किल मुश्किल तकिटे दिगिट ऐसे निकलते ही नहीं थे, ये लिख के भी देते थे। अच्छा फिर उसके बाद कुछ डांसर्स आने लग गए तो मैंने बोला भैया मुझे ना लिख के दे सकते हैं आप सारा कुछ,
1: जी
0: तो लिख के दे दिया। कॉपी बन गई 1 महीने की, काफी सारी चीजें मैंने याद कर ली। खैर ऐसे करते करते मैंने प्रोग्राम्स तो बहुत कर लिए।
1: मतलब जब आप रण महोत्सव में काम कर रही थी,
0: हाँ
1: हिंदी साहित्य जो
0: जी जी
1: सम्मेलन
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: ताज महोत्सव हुआ, ये सारी
0: ताज
1: चीज,
0: महोत्सव में मैंने इतना गंदा नाचा
1: आप
0: कि
1: इतनी ईमानदारी से ये बात कह
0: मैं
1: रही
0: तो, मैं बता रही हूँ,
1: हैं
0: इतना गंदे तरीके से मेरी एंट्री हुई उस समय, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे उस समय, जो पहली बार मैं ताज महोत्सव में मैं एंट्री ली। और मेरे साथ के जो ग्रुप के जितने डांसर थे वो सारे ताबड़तोड़ डांसर थे, सारे एकदम कथक केंद्र के मजे हुए। लेकिन जब मेरी एंट्री आती थी, मेरे हाथ पांव, मुझे अभी भी मेरे ना कुछ वीडियो है, मेरी उंगलियां कपकपा रही है, एकदम ऐसे कांपते थी मैं अंदर जाते हुए।
1: आपको डर नहीं लग रहा है ये माइक पर
0: नहीं
1: ये
0: मैं तो
1: बोलते
0: माइक
1: हुए
0: मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो
1: ईमानदारी
0: बोलती हूँ कि नहीं, ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी मेरे उम्र की बहुत सारी महिलाएं आती हैं, लेकिन उनको क्या लगता है, थोड़ा से सीखते लगता है कि मुझे बहुत अच्छा आता है और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। उन्होंने थोड़ा से रील बना लिया, उनके कुछ लाइक आ गए, वो बोल रहे हैं हम डांसर बन गए। उनको मैं बोल रही हूँ कि आप पाँव ठीक करिए तो वो मुझसे नाराज हो जा रही है, उनको मैं बोल रही हूँ हाथ ठीक करिए तो मुझसे नाराज हो जा रहे हैं, उनके बच्चों को डांट रही हूँ तो

0: नाराज हो जा रहे हैं, क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई मुझे किसी ने ये सब नहीं टोका तो मेरा डांस कितने दिन तक खराब रहा। अगर मुझे उन्हीं दिनों सब टोकते और बताते तो मेरा डांस उन्हीं दिनों बहुत ठीक हो जाता।
1: इसका मतलब है कि अगर कोई आलोचना भी कर रहा है, टोक रहा है,
0: वो अच्छा है,
1: अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है।
1: मतलब ध्यान दीजिए, बुरा मत
0: बिल्कुल
1: मानिए।
0: बिल्कुल। बाद में क्या हुआ कि ऐसे करते करते जब 2005 के बाद राजगीर महोत्सव में मैं पहुंची, बोधगया महोत्सव तक तो मैं अच्छा नहीं नाच रही थी, इतना मुझे पक्का मालूम है कि 2003 4 फिर 5 के बाद जब मुझे खुद अपना वीडियो अच्छा लगने लग गया।
1: आपको समझ थी कि
0: हाँ
1: अच्छा क्या है, बुरा क्या है?
0: देखिए, अच्छा और बुरा ये है ना कि एक तो है कि मैं बहुत एफर्ट्स लेकर नाच रही हूँ, एक है कि चलो ठीक है थोड़ा से हम गलत भी नाच रहे हैं लेकिन उसमें एक पूरा आपका बॉडी जो है बहुत अच्छा से ट्विस्ट हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन बहुत सुंदर है, आपके हाथ बहुत सुंदर है, आपके मेकअप अच्छा से किया हुआ है, आपने कपड़े ठीक से पहने। मुझे तो ना मेकअप करना आता था ना मुझे ठीक से कॉस्ट्यूम का पता था, लेकिन मैं कुछ भी पहन लेती थी, सब बोलते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
1: अंदर वाली जो एक ईमानदारी थी या रोशनी थी, वो कहीं ना कहीं काम कर रही थी कि एक दिन होगा, एक दिन वो भी आएगा जब हस्त मुद्राएं भी एकदम सटीक होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे ना कुछ गुरु भाई लोग थे जो
1: जी
0: कि गोल्ड मेडलिस्ट बहुत अच्छे सीखे हुए, उनको मैं बैठ बैठ के मैं बोलती थी भाई ये जरा देखना ना मेरा, इसमें फोटो देखो ना, ये वीडियो देखो ना, इसे बताओ। उन लोग बताते दीदी सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको ऐसे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फोटोग्राफी पे बड़े बड़े फोटोग्राफर उनसे मैंने, तो फोटोग्राफर भी ना कैमरा लेके ना बड़े दुखी हो जाते थे, बोलते थे अनु जी एक्सप्रेशन तो आ नहीं रहा है। अच्छा वो फोटोग्राफर ऐसे थे जिनको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो अगर मैं गई तो मुझे ले तो लिया फोटोग्राफी के लिए,
1: जी
0: लेकिन वो बेचारे क्लिक करने में उनको असुविधा हो रही है, वो बोल रहे हैं आपका एक्सप्रेशन तो आ नहीं रहा है।
1: मतलब
0: हाँ
1: कमाल की बात है कि आपने खुद से बहुत
0: इसीलिए मैं
1: सीखा।
0: बोलती हूँ कि देखिए जब आजकल लोग बोलते हैं ना कोचिंग, कोचिंग में कोई क्या पढ़ाएगा जब तक आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कि नहीं।
1: सिक्स सेंस आपको बता रहा है
0: हाँ
1: कि समथिंग शुड बी
0: यस
1: चेंज्ड।
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल।
1: फोटोज बता रही
0: हाँ
1: हैं, कुछ लोग थे, लेकिन दिशा नहीं थी कि एकदम सटीक यही है।
0: बिल्कुल।
1: आप चलती जा रही थी।
0: बस मैं चलती जा रही थी, बीच में कई उतार चढ़ाव आए, कई बार ऐसी चीजें हुई, परिस्थिति ऐसी हुई पारिवारिक या कुछ आर्थिक भी हुआ बीच बीच में, बहुत सारी चीजें हुई, फिर ब्रेक लगा, फिर आगे बढ़े, फिर ब्रेक लगा, फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे करते करते 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ में 2 साल के लिए काम करने का मौका मिला। और
1: दुखी हो कि छोड़ी नहीं।
0: नहीं छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें तो वो सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं था ना अभी तक जो बचपन से चाहती। लोग तो ये सुंदर सुंदर इसीलिए बोल रहे थे कि वो सब कुछ देख के अच्छा लग रहा था। अच्छा प्रगति मैदान में वहां पर जनरल मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने जब देखा और जब मेरे डांस प्रोग्राम हुआ तो पूरा हॉल बुक मतलब खचाखच भरा हुआ, तो वहां पर उन्होंने जनरल मैनेजर ने बुलाया और बोले कि यहाँ पर तो प्रगति मैदान में क्लासिकल डांस में तो लोग हॉल में 25-50 लोग भी नहीं बैठा पाते हैं, तो आप इतने लोगों को कैसे भर लिया आपने, इतना हॉल आपका बुक कैसे हो जाता है, कैसे फुल हो जाता। तो मैंने यही कहा कि हाँ मैंने फिर थोड़ा दिमाग लगा के ना कि स्लो नृत्य नहीं दिखाना है, मैंने सोचा कि हम एकल नहीं करेंगे क्योंकि एकल में करेंगे तो अगर मैं गलतियां करूंगी या मैं खराब नाचूंगी या कुछ ऐसे करूंगी तो 5 मिनट पब्लिक बोर हो जाएंगी और फिर मुझे नहीं देखेंगे, तो मैं एकल नृत्य नहीं करूंगी, मैं समूह नृत्य करूंगी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा झलकी दिखा दिखा के मैं चले जाऊंगी।
1: मतलब
0: हाँ
1: आपको अपनी कमजोरी
0: का
1: और
0: मालूम था,
1: मजबूती
0: हाँ दोनों का एहसास था।
1: दोनों का
0: हाँ तो
1: एहसास था।
0: मुझे ये दिखा कि मैं थोड़े से आऊंगी और थोड़ा से सुंदर से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नाचे निकल गए, ग्रुप आ गए, उनका
1: आपको अपनी
0: ताबड़।
1: ईमानदारी से डर नहीं लगता कि लोग फिर मंच नहीं देंगे?
0: नहीं, वो बहुत लोगों ने ऐसे ब्लैक लिस्ट किया, तो मैंने बोला कि देखिए ब्लैक लिस्ट तो जो भी कर रहे हैं तो वो लोग कभी तो एक सबकी सीमा है ना,
1: जी
0: तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है कितने सारे मंच
1: क्या
0: है ना। हाँ कुछ लोग तो रिटायर हो गए, कुछ लोग इस दुनिया से भी चले गए, रिटायर हो गए तो मेरा मेरी बारी आ गई, नए लोग आए तो उन्होंने बोला कि मौका दिया फिर।
1: मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है आपको? ये जो धैर्य है ना।
0: धैर्य मैंने हमेशा रखा, मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, मुझे कितने सारे प्रोग्राम जैसे संकट मोचन ही मैं मनाती हूँ, संकट मोचन में
1: मैंने देखा
0: 10 साल तक मैंने अर्जी भेजी, 10 साल लगातार, उसके बाद मुझे 2000 अभी 4 साल पहले मुझे उसमें मतलब
1: नेत विश्वंभर मिश्र जी
0: हाँ
1: हैं।
0: जी, तो 2 बार वहां पर मुझे परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बुलाया, एक बार तो मैं नहीं जा सकी थी और एक बार मैंने वहां प्रस्तुति दी। उसके बाद वो गंगा महोत्सव जितने महोत्सव है
1: जी, अब आपके हस्बैंड और आपके
0: हाँ
1: घर वाले जब आपको देखते हैं, उन उतार चढ़ावों से तो घर वालों ने देखा है, आपके बच्चे ने देखा है।
0: हाँ सबने देखा, सब लोग अब यही बोलते हैं कि आप बहुत ही स्वार्थी हैं, आप एकदम फोकस है, सेल्फ सेंटर्ड है, आपने अपने नित्य के सामने किसी को नहीं देखा, आपने कुछ नहीं सोचा,

0: आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन हाँ ये बात सही है, देखिए जब मैं घर में रहती हूँ जो मुझे मेरी ज़रूरत होती है यहाँ पर वो मैं कर देती हूँ।
1: आपके जैसे व्यक्तित्व से मैं बहुत कम मिली हूँ जो इतना साफ गोई है, जो
0: लेकिन
1: देखा वो बोला और जो करना है वो करना है, चाहे जिसको जो समझना है वो समझता रहे।
0: मुझे बहुत साल पहले, जब मैं बता रही हूँ जब मेरे खराब दिन थे, जब मेरा बेटा हुआ था, तो मुझे नौकरी की जो जरूरत पड़ती थी तो अलग अलग जगह पे जाके इंटरव्यू दे देते थे। एक बार मैनेजर के लिए एक पोस्ट निकला था तो मैं गई वहाँ पर इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि आपकी एक कमजोरी और एक आपकी जो
1: जो
0: स्ट्रेंथ वो
1: हाँ
0: बता
1: प्लस
0: दीजिए।
1: पॉइंट
0: तो
1: है।
0: उस समय तो मुझे स्ट्रेंथ और कमजोरी के बारे में तो मालूम ही नहीं था, क्या सवाल पूछ रहे हैं। बोला ये कैसा सवाल है, मैं लो कि मैं अपनी कमजोरी मैं खुद क्यों बताऊं, और मुझे क्या पता कि मेरी कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ मैं क्यों बताऊं, ये तो दूसरा देखेंगे ना। ये दोनों चीजें तो कोई और देख के बताएगा ना। उस समय तो मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी तो उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी, 23 साल की। तो 23 साल की उम्र में मुझे तो इसका तो मैं आकलन कैसे करूं। लेकिन फिर भी मैंने एकदम तपाक से मैंने बोला था कि मुझे जहां तक लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तेज, और मैं मुंह पे पटाख से जवाब दे देती हूँ, जो भी मन में होता है वो मैं बोल देती हूँ। और दूसरे मेरे मुझे ये लगता है कि जिस चीज को मैं चाहती हूँ कि करना है उसको मैं करके ही छोड़ती हूँ, कि
1: ये
0: मैं
1: तो
0: ठान
1: आपने
0: लेती हूँ।
1: साबित कर दिया है।
0: हाँ
1: अच्छा, अब घर वाले,
0: जी
1: जैसे आपका बेटा अब बड़ा हो गया
0: हाँ,
1: होगा,
0: वो दुबई में सेटल्ड है और
1: दुबई,
0: बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा
1: घर
0: कर
1: के
0: रहा है।
1: बाकी लोग
0: हाँ
1: जो
0: मेरे
1: आपकी
0: पति जो
1: बहनें
0: हैं
1: हैं,
0: वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में हैं,
1: तो
0: कंपनी
1: जब
0: है,
1: अब
0: अच्छा।
1: परफॉर्म करती हैं और अब हस्त मुद्राएं भी, भाव भी बिल्कुल सटीक हैं जैसे होने चाहिए, लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और आपके
0: बिल्कुल
1: साथ बह जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: अब उनको कैसा लगता
0: नहीं,
1: है?
0: वो तो जब लोगों से सुनते हैं तो फिर मेरे पति तो सिर्फ थोड़ा सा सर हिला देते हैं ऐसे, हाँ, नहीं कर रही है, कर रही है। उनको लगता है कि लोग भी बोल रहे हैं तो मैं मन, क्योंकि वो देखने कभी नहीं आते मेरा प्रोग्राम, कभी कुछ उनकी ज़रूरत पड़े तब वो करते हैं। और जब मेरा बेटा है, और मेरा बेटा ज़रूर बोलता है कि मम्मी आपको जो अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा लग रहा है आप उतना करो, ठीक है, आप औरों के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और कंपटीशन मत करो बिल्कुल भी, आप कितना कर पा रहे हैं, जो अच्छा कर पा रहे हैं आप उतने ही करते रहो। तो मुझे भी यही लगा कि हाँ कंपटीशन नहीं करना। बहुत लोगों ने बोला कि जैसे हमारे अच्छे से डांसर है, जो बड़े बड़े डांसर हैं, जो हमारे उम्र
1: जी
0: के
1: जी
0: आसपास की
1: जी
0: हैं, जो हमसे थोड़ी छोटी भी हैं, बहुत अच्छा नाच रही हैं, बहुत ही अच्छा नाच रही हैं वहाँ पर, तो उनके साथ में मैं कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहती हूँ। बचपन से नाच रही हैं, ठीक है, बचपन से नाच रही है, तो बचपन से नाचना में जो एक एनर्जी आपके बॉडी में, जो फ्लो में जो आ जाता है, ठीक है।
1: वो मैंने आपके
0: हाँ
1: वीडियोस देखे हैं और आप जो
0: हाँ
1: ईमानदारी से ये बात कह
0: हाँ
1: रही हैं,
0: जी
1: बहुत कम लोगों में ये बात है, शायद
0: जी
1: तभी ईश्वर आपके साथ हैं।
0: तो ये मैं मानती हूँ। तो मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं है, कि जैसे एक होता है ना कि जैसे किशोर कुमार तो बहुत अच्छे सिंगर थे,
1: जी
0: लेकिन वो तो क्लासिकल सिंगर नहीं है थे ना, तो क्लासिकल
1: सुबोध
0: सिंगर वालों ने तो उनको जीवन भर बोला है कि ये तो क्लासिकल नहीं सीखा है भाई, तो नहीं सिखाया तो क्या हुआ, तो उन्होंने गाया तो खूब है, पूरे
1: जी
0: जीवन भर गाया। श्रीदेवी तो कभी डांसर नहीं थी, हेमा मालिनी एक डांसर थी, लेकिन श्रीदेवी ने तो कभी नहीं सीखा था, माधुरी दीक्षित ने थोड़ा सीखा था, बहुत कम सीखा था, बाई बर्थ डांसर थी।
1: जो लोग आपकी खूबसूरती के कायल रहे हैं,
0: जी
1: मैं आपको साक्षात देख रही हूँ सुधीर श्रोता, वैसे ही सुंदर प्यारी, कैसे इसको मेंटेन किया हुआ है आपने?
0: ये एक तो थोड़े से खानदानी भी होता है,
1: अच्छा, जीन्स
0: खानदानी, हाँ
1: हैं
0: जीन्स,
1: मदर
0: हाँ
1: फादर के,
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ
0: मदर के
1: ठीक
0: तरफ
1: है।
0: से, मदर के तरफ से। हमारी मम्मी को सब लोग देव नूतन कहते थे, फिल्म की जो हीरोइन थी नूतन, उनके जैसे ही लगती थी। और फादर भी एक ऐसा है, थोड़ा जेनेटिक है, और दूसरा फिर हम लोग वही है कि थोड़ा खान पान को हम लोग अनुशासन और नियम से करते हैं, बाहर का ये सब चीज
1: अवॉइड
0: थोड़ा,
1: करती
0: हाँ जितना सिंपल और साफ सुथरा
1: हैं।
0: खाना खाए, और बाकी फिर वही है कि अंदर से भी विचार भी थोड़ा शुद्ध, मन भी शुद्ध है, भावना शुद्ध है, थोड़ा
1: बहुत सुंदर।
0: पॉजिटिव, ठीक
1: अच्छा,
0: है।
1: कई महिलाएं ना मैंने
0: हाँ
1: देखा है झुंझला जाती हैं,
0: हाँ
1: जो
0: बिल्कुल
1: घर
0: हाँ
1: परिवार की जिम्मेदारी, और
0: बिल्कुल, देखिए
1: 5 साल
0: वो
1: तक कुछ नहीं
0: हाँ
1: हुआ तो शायद
0: खत्म,
1: अब ढल गया, अब
0: हाँ
1: कुछ नहीं है, उनको क्या कहेंगे आप?
0: एक तो ये सबसे ज्यादा जो महिलाओं के साथ में ये जो शुरू होता है वो 40 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, सभी के साथ, हम लोग के साथ में भी होता रहा है और आगे भी। एक तो कुछ आपका बायोलॉजिकल जो चेंज होता है, जो बॉडी में जो आपके चेंजेस होते हैं, उससे वजह से किसी भी महिलाओं को, चाहे वो सक्षम है या वो पूरा अपने फील्ड में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, उनको भी, सभी को ये दौर से गुजरना पड़ता है और वो फेस करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के वजह से भी बेचारे इरिटेट हो जाते हैं,
1: जी
0: कुछ पति के
1: जी
0: वजह से हो जाते हैं, उनसे भी अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहा है कि कम से कम कुछ नहीं है, चलो कुछ भी नहीं दे रहे हो तो भी आप बोलो कि ठीक है भाई चलो तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। अब जैसे मेरे पति हैं एकदम मुझे इंटरफेयर नहीं करते हैं, और ना ही वो खुद चाहते हैं कि इंटरफेयर मैं करूं।
1: जी
0: मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे और कब नहीं आएंगे, ये पहले दिन से हमारा तय था कि ये सब पूछना उछना नहीं है, एकदम नहीं पूछना है कि 12 बजे आप जगे हुए हैं कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं बैठी हूँ, हम लोग के घर में वो सब नहीं,
1: एक
0: आपको
1: अनुशासन भी रहा है।

0: हाँ,
1: जो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है।
0: अनुशासन मेरा रहा है, मैं शाम को खाना जैसे 7 बजे 8 बजे खा लेती हूँ, पहले से, बहुत पहले से खाना जल्दी खाना है, सुबह में जैसे कि थोड़ा से उठ के या टहलना है
1: जी,
0: ठीक है ना।
1: आपसे बात करते हुए समय का अंदाज ही नहीं रहा, पता नहीं मन में और कितने प्रश्न है लेकिन अब ये सिलसिला यहीं थामना होगा। और बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही खुश रहें, खिलखिलाती रहें, बहुत सारे बच्चों को सिखाएं और हम लोगों ने जो आपसे सीखा है वो हमेशा अपने पास रखें। बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कृपया

0: खिलखिलाती रहें, बहुत सारे बच्चों को सिखाएं, और
1: जी
0: हम लोगों ने जो आपसे सीखा है वो हमेशा अपने पास रखें। बहुत
1: थैंक यू,
0: शुक्रिया आपका।
1: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा से नेहा गुप्ता की बातचीत थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं एक पहली लीला फिल्म का गाना, जिसे गाया है मोहित चौहान ने। गीत मनोज मोहनसिर का है और संगीत है टोनी कक्कड़ का।

सनम रे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की आवाजों में। गीत और संगीत है मिथुन का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म छिछोरे से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: बच्चों, आप सभी का अपने प्रिय कार्यक्रम बाल संग में हार्दिक स्वागत है।
0: और बच्चों, कैसी रही आपकी गर्मी की छुट्टियां? तो बच्चों, किसी ने दीदी नानी के घर जाकर खूब मस्ती की होगी।
2: बिल्कुल।
0: और किसी ने नई नई किताबें पढ़ी होंगी। किसी ने खेल कूद का आनंद लिया होगा।
2: बिल्कुल।
0: तो किसी ने अपने माता पिता के साथ घूमने का अवसर पाया होगा।
2: 100% भैया, अब समय है, लेकिन क्या है भैया, फिर से अपने प्यारे विद्यालय लौटने का।
0: बिल्कुल,
2: है ना। सबने मौज मस्ती तो गर्मी की छुट्टियों में कर ली।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन भाई, अपने स्कूल की ओर चले हम।
0: बिल्कुल।
2: वही स्कूल की घंटी, वही कक्षा, वही शिक्षक, वही मित्र और नई नई सीख हमारा इंतजार कर रही है भैया।
0: बिल्कुल बच्चों, विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं है। यही वो स्थान है जहाँ आप अनुशासन, समय का महत्व,
2: बिल्कुल,
0: सहयोग, मित्रता, ईमानदारी और अच्छे संस्कार सीखते हैं। यहीं से हमारे सपनों की नई उड़ान मिलती है।
2: बिल्कुल। तो बच्चों आओ, आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। हम रोज समय पर विद्यालय जाएंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और अपने विद्यालय को स्वच्छ रखेंगे और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे।
0: हाँ बच्चों, तो क्या आपने अपना स्कूल बैग तैयार कर लिया है? और वैसे दीदी, कुछ बच्चों का तो स्कूल शुरू भी हो चुका है। वो स्कूल जाने भी लगे हैं। और वैसे बच्चों, जिनका अभी स्कूल खुल रहा है, वो भाई हर विषय की कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, बॉक्स, जिसमें भी जो भी चीजें हैं जरूरी चीज चेक कर लें और सबको ये भी देख लें कि सब चीजें सही से रख लिया
2: से
0: है आपने अपने बैग में।
2: हाँ।
0: भाई, और हाँ दीदी, सबसे जरूरी बात तो ये है कि
2: क्या?
0: वो पानी की बॉटल।
2: हाँ।
0: उसका जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों।
2: बच्चों, यदि आपने पहले से सभी चीजें व्यवस्थित रूप से रख ली हैं, तो आपको सुबह विद्यालय जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और ध्यान रखिए, समय पर सोना, समय पर उठना और पूरे उत्साह के साथ विद्यालय जाना। क्यों भैया?
0: बिल्कुल दीदी, क्योंकि छुट्टियां थी जो गर्मी की, तो इसमें बच्चों का जो दिनचर्या है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है।
2: हाँ।
0: भाई ठीक भी है कि वो उनको लगता है बच्चों को कि अब थोड़ा सा समय है, थोड़ा देर से उठा जाए।
2: बिल्कुल।
0: तो
2: भैया, बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी हो जाती
0: तो
2: है।
0: ये जो दिनचर्या थोड़ी सी जो बदल जाती है, तो उसको फिर से आपने व्यवस्थित करने की जरूरत है, क्योंकि हर नया सत्र एक नई शुरुआत लेकर आता है। यदि पिछली कक्षा में

0: कोई कठिनाई रह गई थी, कोई
1: हाँ
0: कमी रह गई थी,
1: हाँ
0: तो इस बार उसे दूर करने का अवसर आपके पास है बच्चों।
1: बिल्कुल
0: हर दिन कुछ नया सीखिए, प्रश्न पूछिए, खुद से
1: हाँ
0: भी पूछिए और
1: हाँ
0: लाइब्रेरी का उपयोग कीजिए, खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।
1: और हाँ, अपने उन दोस्तों का भी हाथ थामिए जो किसी कारण से स्कूल आने में संकोच कर रहे हों। उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। तो मिलकर कहिए, सभी बच्चे कहिए, विद्यालय की राह है,
0: विद्यालय की राह है,
1: उजियारे की राह है,
0: उजियारे की राह है,
1: ज्ञान से बनती है जीवन की हर चाह।
0: ज्ञान से बढ़ती है जीवन की हर चाह।
1: चलो मिलकर कदम बढ़ाएं,
0: चलो मिलकर कदम बढ़ाएं,
1: रोज स्कूल हम समय पर जाएं।
0: रोज स्कूल हम समय पर जाएं। और बच्चों, जो दीदी हमारे ये जो नए साथी अपने स्टूडियो में
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ प्यारा सा गीत सुनवा दें हम
1: अरे
0: लोग।
1: क्यों
0: और
1: नहीं
0: इतनी अच्छी
1: भैया,
0: बातें हम लोगों ने की
1: हाँ
0: बच्चों को
1: हाँ
0: बताई, तो अब एक प्यारा सा गीत भी सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ कर चलिए सुनते हैं।

0: आप लोगों को सॉन्ग कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक ताली तो बनती है ना
1: बिल्कुल।
0: है भैया। देखिए हमारी जो बच्चे हैं उनका उज्जवल जो भविष्य है उनकी उनके परिश्रम के ऊपर है, उनके कार्यों के ऊपर है कि वो कैसी राह चुनते हैं, उन्हें कैसी
1: बिल्कुल
0: दिशा मिलती
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना।
1: ये भी है दीदी
0: हाँ
1: कि वो कितना उस पे सफलता पाते हैं और उसके
0: हाँ
1: पीछे उनकी कितनी मेहनत है।
0: मेहनत है बिल्कुल। तो बच्चों अगर आपको अपना भविष्य जो है अच्छा बनाना है तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी विषय पर भैया अपने कार्यक्रम में एक वार्ता है ना, बच्चों को सोच रही हूँ सुनवा दूँ है ना। और वार्ताकार हैं कल्पना सहाय दीदी, और विषय क्या है भैया आप
1: दीदी
0: बताएंगे?
1: विषय है समझें अपनी भावनाएं और संवारे अपना भविष्य।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दीदी आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे या बच्चों की जो एक खास उम्र होती है ना,
0: हाँ
1: उसमें बच्चे जो हैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर
0: काबू
1: पाते
0: नहीं कर
1: हैं।
0: पाते बिल्कुल।
1: कभी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते
0: हाँ
1: हैं या बहुत जल्दी कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं
0: बिल्कुल।
1: होता
0: और
1: है।
0: पता ही नहीं हो पाता है कि क्या ऐसा उनके मन में चल रहा
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और कभी कभी माता पिता के प्रति भी वो उनके जो भावनाएं हैं
0: हाँ वो
1: वो
0: गलत होने
1: गलत
0: लगती
1: सोचने
0: हैं
1: लगते हैं, जबकि
0: बिल्कुल।
1: माता पिता उनका अच्छा ही सोचते हैं।
0: हाँ
1: तो कुल मिला के ये धैर्य रखने की ज़रूरत है बच्चों को और समझने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी चीज़ अगर उनसे कही जा रही है, उनके
0: हाँ
1: माता पिता बड़े या उनके टीचर्स कह रहे हैं, तो उनके
0: उनके
1: बेहतरी के
0: अच्छे
1: लिए
0: के
1: कहें,
0: लिए कह
1: तो
0: रहे
1: उनको
0: होंगे
1: सोचना है, विचारना है और
0: बिल्कुल।
1: उस पर ध्यान देना है। तो ऐसी ही ये वार्ता है कि समझें अपनी भावनाएं, संवारे अपना भविष्य। और वार्ताकार हैं कल्पना सहाय दीदी।
2: बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके स्कूल खुल गए हैं, समर वेकेशन समाप्त हो गया है, अब हमें गंभीरता से पढ़ाई लिखाई करनी है और ये तय करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं बनना, क्या चाहते हैं करना। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि अपनी भावनाओं को समझें और अपने भविष्य को संवारें। ये बहुत अच्छा विषय है बातचीत करने का। बातचीत या संवाद करना अनेक बातों का, समस्याओं का हल है, समाधान है। बिना बातचीत के समस्याएं गूढ़ होती हैं, उलझती जाती हैं, इसलिए आपस में बात करना बहुत आवश्यक है। अपनी भावनाओं को समझने से अर्थ है कि हम अपने रुझान को जानें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। जिस काम को करने का बार बार मन करे उसमें आनंद आए, बोरियत ना महसूस हो, बहुत अच्छा लगे करके उस काम को हम समझ लेते हैं कि वो हमारी भावनाएं हैं, हमारी क्षमताएं हैं। यहाँ एक बात और बहुत ध्यान देने की है कि हमें ज्ञान, विवेक, समझ, जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ने के साथ साथ घर में अपने पेरेंट्स से यानी अपने माता पिता से सब बातें बतानी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, और उन पर चर्चा करनी चाहिए। अपने शिक्षक और मित्रों से भी खुलकर बात करिए, इसी से आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते ढूंढ सकेंगे। आज अपने कैरियर को बनाने के अनेक विकल्प हैं, कोई एक रास्ता नहीं है कि हमको यही अपनाना है। तो इन विकल्पों में से किसी भी क्षेत्र को मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आप खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल का पीरियड स्कूल में होता है, पूरी लगन के साथ भाग लीजिए, वहीं से आप एक खिलाड़ी के रूप में भविष्य को बना सकते हैं। कुछ बच्चों का गणित के प्रश्नों को हल करने में बहुत मन लगता है, जब तक किसी सवाल का उत्तर ना निकल आए किसी अन्य काम में मन नहीं लगता। समझ लीजिए विज्ञान में आप सफल होंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इस दिशा में आपका रुझान कैसा है, आपके भविष्य के लिए आपको क्या बनना है, क्या कैरियर अपनाना है, इसमें सहायक होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, गीत संगीत गुनगुनाते रहते हैं बहुत खुशी होती है, संगीत सुनने में झट से आप स्वर ताल और लय को पकड़ लेते हैं, तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, संगीतज्ञ बन सकते हैं, संगीत के शिक्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार अपनी क्षमताओं को आप विभिन्न दिशाओं में जान सकते हैं। व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान जाता है, पहचान जाता है और अच्छे से समझ जाता है तो उसे अपनी लक्ष्य स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। कहा जाता है वन लाइफ वन मिशन, माने एक जीवन के लिए एक लक्ष्य तय करिए, एक

एकाग्र होकर एक रास्ते पे चलिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जहां लगन है, परिश्रम है, निरंतरता है, वहां सफलता आपके हाथ में है। अपने कैरियर को, भविष्य को सुंदर ढंग से संवार सकते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, चित्रकार, खिलाड़ी, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, कुछ भी बन सकते हैं। अपने भविष्य को तय करने के लिए बस एकाग्रता और एक रास्ते को अपनाना आवश्यक होगा। बच्चों का मन कभी इस काम में लगता है कि आज तो मैं इंजीनियर बनूंगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। फिर दूसरे दिन लगता है मैंने बहुत अच्छा चित्र, मैं चित्रकार बन सकता। इसलिए एक रास्ते को तय करना होगा। जीवन में कुछ करने के लिए आपको रास्ता तय कर उस पर लगन और परिश्रम के साथ बढ़ना होगा। यह एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि ज्ञान तो होता है, जानकारी भी होती है, लेकिन उसमें अनुभव का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप अपने लक्ष्य को जानना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों से, अपने माता पिता से, शिक्षकों से, मित्रों से जरूर अपने भविष्य के विषय में बात करिए। उन बातचीत के बीच में आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। उनके अभिभावकों को भी बच्चों के साथ समय देना होगा। ये अभिभावकों के लिए है कि वो अपने बच्चों को समय अवश्य दें, चाहे आधा घंटा ही दें। आजकल माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को समय कम दे पाते हैं, उनसे संवाद कम कर पाते हैं। लेकिन आप ये सुनिश्चित करिए कि अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, बच्चों के साथ जरूर बैठेंगे और किसी भी विषय पर बातचीत जरूर करेंगे। बच्चों के मित्रों के विषय में भी आपको बात करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो संगत है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके लक्ष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए। माता पिता अपनी नौकरी में जरूर व्यस्त हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य निकालें। ये आप देखिए, बहुत सारी बच्चों की समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। बच्चों के लिए अभिभावकों को बहुत सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ही बच्चों को कुम्हार की तरह एक आकार देने में सहायक होते हैं। बच्चों पे कोई भी चीज थोपने की आवश्यकता नहीं है। या माँ बाप ने जो अपने मन में बना लिया है कि बच्चे को इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए या आईएएस बनना चाहिए, ये सर्वथा गलत है। हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के साथ होता है। बच्चा भी आपकी कोई विशेषता लेकर जन्म लिया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, उसकी विशेषताओं को पहचानना है, बातचीत करके उसके मन को खोलना है, फिर आपको उसके कैरियर या भविष्य के विषय में दिशा देनी है। बच्चे बहुत ज़्यादा अपने को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन माँ बाप का काम ही यह है कि वो बच्चों की बातों को सुने और एक कारीगर की तरह से बच्चे के जीवन को एक आकार दें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जरूरत से ज़्यादा शैतान हो जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते, स्थिर ही नहीं होते। तो आप प्रतिदिन बच्चों को लेकर थोड़ा सा, मेरा कहना यह है, किसी विषय पे पढ़ना, चैंटिंग करना, गाना, उनके साथ बैठिए और इसका अभ्यास कराइए उन्हें, तो उनके अंदर एकाग्रता आएगी। पढ़ाई की बात मत करिए उनसे, तब वो समझेंगे, उनका इंटरेस्ट आने लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अभिभावकों के लिए एक सलाह भी है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए। मनोवैज्ञानिक आपके बच्चे का परीक्षण करेगा और वो बता देगा कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी क्षमताएं हैं और उसे किस दिशा में ले जाना चाहिए। काउंसलिंग की आजकल बार बार चर्चा हो रही है, तो बच्चों के कैरियर या भविष्य को संवारने के लिए आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। कहीं पर ये समस्याएं आ जाती हैं कि बच्चों को जानना माता पिता के लिए भी दिक्कत तलब जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी है, वो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप उनके मनोविज्ञान का ध्यान रखिए और जरूरत पड़े तो किसी मनोवैज्ञानिक से सहायता लीजिए। वो बच्चा क्या है जिसके आँख में कोई सपना ना हो, उस सपने को हकीकत में उतारने की ललक ना हो। हर बच्चे को, हर किशोर को समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर बुनना चाहिए, सपना गढ़ना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझकर उसे हकीकत में लाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए प्राणपण से जुट जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जापर जाकर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। अगर आपने सच्चे हृदय से कोई लक्ष्य तय कर लिया

0: है तो आप अवश्य उसको हासिल करेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं, आप अपने करियर को अवश्य प्राप्त कर लेंगे पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ प्रण कर लीजिए कि मुझे ये पाना ही है। स्कूल खुल गए हैं, सभी बच्चे लगन के साथ पढ़िए, अपनी योग्यता क्षमता को पहचानिए, उसमें अपने बड़ों की सहायता लीजिए और भविष्य के लिए एक ताना बाना बुनिए जिसको पाने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में खूब सफल हों, जो चाहें वो बने, ये हमारी और सारे बड़ों की शुभकामनाएं हैं। आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ऐसा हमारा विश्वास है।
1: तो बच्चों ये थी वार्ता, समझें अपनी भावनाएं, संवारें अपना भविष्य, और वार्ताकार थी कल्पना सहाय दीदी। और देखिए दीदी, इस वार्ता में कल्पना सहाय दीदी ने बहुत सी अच्छी बातें बच्चों के लिए बताई और उनके माता पिता के लिए भी बहुत सी बातें थी।
2: बिल्कुल, वो जरूरी है,
1: बच्चों की भावनाओं को समझें और उनका सहयोग करें, जहां बच्चों को जरूरत है जिस तरह की सहयोग की वो उसमें सहयोग करें, और बच्चों को तो जरूरत है ही है समझने की।
2: उसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि पूरे टाइम पढ़ने की बातें ना करें, उनके हिसाब से भी, जैसे उनको एक्टिविटी में कौन सी स्किल्स उनकी अच्छी है तो उसको भी निखारने का वो प्रयास करें। उसके बाद फिर क्योंकि स्टडी तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर प्रेशराइज आप पूरे टाइम उनको करेंगे हर काम को छोड़कर, चलो पढ़ो चलो पढ़ो,
1: तो बच्चों का हमेशा मूड
2: नहीं होता है। उसके हिसाब से पेरेंट्स को सोचना चाहिए।
1: बहुत सी जो बातें हैं बच्चों के मन में, बहुत सी विचार होते हैं, बहुत सी उनके जो बातें हैं वो कहना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से बच्चे हैं जो नए साथी हमारे स्टूडियो में हैं भाई, अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनसे कब बातें शुरू की जाए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक नई साथी हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम वेदिका है।
2: वेदिका, ओके। तो वेदिका, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
3: मैं क्लास 2 में पढ़ती हूं।
2: क्लास 2 में पढ़ते हैं। आपको क्या क्या चीज पसंद है?
3: मुझे खेलना पसंद है।
2: और
3: मुझे
2: केवल खेलना पसंद है,
3: ड्राइंग करना
2: पसंद है, पढ़ना पसंद है।
3: हाँ।
2: क्या पढ़ते हो आप?
3: मुझे मैथ पसंद है।
2: मैथ पसंद, अरे वाह,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: मैथ पसंद है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मैथ का नाम सुनते ही कहते हैं कि अरे अभी किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी के नाक में दर्द।
1: लेकिन वेदिका को भाई,
2: वेदिका को लेकिन मैथ
1: पसंद है। अच्छा वेदिका, आपने कहा कि आपको खेल पसंद है, तो इंडोर या आउटडोर कौन सा गेम पसंद है?
3: मुझे आउटडोर गेम पसंद है।
1: हां आउटडोर गेम, बच्चों को देखिए दीदी, वैसे तो इंडोर भी अच्छा है क्योंकि भाई जैसे मौसम के हिसाब से गर्मी है तो भाई धूप में खेलने से अच्छा है आप इंडोर गेम घर में खेलिए। और आउटडोर गेम की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्यों वेदिका, क्योंकि
2: वहाँ क्या होता है,
1: बाहर आप आउटडोर गेम खेलिएगा तो आपके एक्सरसाइज होगी, आप हेल्दी रहिएगा, है कि नहीं?
3: हाँ,
1: फिटनेस बनी रहेगी आपकी, तो अच्छी बात है।
2: ये बात तो हुई, लेकिन वेदिका के हाथ में कुछ है भैया, है ना?
1: तो वेदिका हमें कुछ सुनाने जा रही है, क्या सुनाइएगा?
3: पेड़ पर कविता।
2: अच्छा, पेड़ पर कविता,
1: ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम लोग पहले सुनते हैं फिर बातें करते हैं।
3: मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ो टुकड़ो में मत बाटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है। मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सखा हूँ सबसे न्यारा, मेरा फल खुद नहीं खाता हूँ, सब तुम्हें ही तो दे जाता हूँ, जहरीली गैस भी पी जाता हूँ, शुद्ध हवा तुम तक पहुँचाता हूँ, सूरज का भी तापस हूँ, मैं हूँ जीवन का आधार, फिर भी तुम मुझ पर करते प्रहार, सुनो तुम सब कान लगाकर, वृक्षों का करना सम्मान, मैं हूँ जीवन का आधार।
1: वाह वाह वाह भाई, देखे दीदी, ये वेदिका ने जो पेड़ पर कविता सुनाई है, और जो पेड़ का दर्द है ना, सच कि पेड़ हमारे इतने उपयोगी हैं, हमारे इतने काम आते हैं, लेकिन उनको भी दर्द होता है उनको काटने से। हाँ। जैसा कि पेड़ इस कविता में कह रहा है, और हम बच्चों को क्या करना चाहिए वेदिका,
2: पेड़ के लिए
1: लगाना चाहिए ना,
3: लगाना चाहिए
2: और काटना नहीं चाहिए,
1: और उसकी देखभाल करनी चाहिए, यानी कि पानी डालना चाहिए और उसको

0: किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए ना। जो छोटे पौधे होते हैं उसमें पानी डालिए, उसकी देखभाल करिए ताकि वो बड़े हो जाएंगे, फल देंगे, छाया देंगे। पेड़ तो बहुत काम के होते हैं ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं।
1: तो भाई कितनी अच्छी बात इन्होंने पेड़ के विषय में बताई है ना।
0: हाँ वेदिका, और भी कुछ सुनाएंगी हमें?
2: हाँ
0: क्या कोई कविता है?
2: हाँ प्रकृति पे कविता है।
1: थोड़ा तेज बोलिए वेदिका,
0: क्या सुनाइए?
1: जोर से बोलिए।
2: कविता।
0: हाँ,
1: कविता सुनाएंगी, चलिए सुनाइए।
2: सूरज जग में करे उजाला, चांद चांदनी देने वाला, टिमटिम करते आते तारे, खड़े हैं ऊंचे पर्वत सारे, नदियां बहती झर झर करती, सागर में लहरें हैं उठती, झरने नदियों में मिल जाते, मिलकर रहना हमें सिखाते।
1: वेरी गुड भाई, ताली होनी चाहिए। वेदिका बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई, एक पेड़ पर सुनाई और एक आप नेचर यानी प्रकृति पर आपने सुनाई। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज कर लीजिए, है ना। लग रहा है तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो, करके आए हो लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है।
0: अच्छा वेदिका, आपका स्कूल खुल गया?
2: हाँ।
0: तो जाने लगे? हाँ। आप किस क्लास में गए हो अभी?
1: बताया उन्होंने भाई,
0: टू में गए। अच्छा हाँ, आपने तो बताया था आप टू में गए हो। तो आपके जो कुछ नए फ्रेंड्स बने? बन गए। अच्छा आप जब किसी से दोस्ती करते हो तो क्या सोच के दोस्ती करते हो? अपने आप दोस्ती हो जाती है या कोई बच्चा या कोई लड़की जो है वो क्यों अच्छी लगती है, क्यों आप उससे दोस्ती करते हैं, क्या देखते हैं?
2: अपने आप ही दोस्ती हो जाती है।
0: अपने आप,
1: अपने आप।
0: लेकिन वो अच्छी होती है जो से वो आपकी हेल्प करती होगी कहीं ना कहीं, और आप उसकी भी हेल्प करते हो। ये तो भाई दीदी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अच्छी वाली दोस्ती करनी चाहिए, क्यों वेदिका? और कभी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: हाँ।
0: दोस्ती में ये सब नहीं चलता है ना।
2: हाँ।
0: दोस्ती में
1: तो तुम्हारी लड़ाई होती क्या दोस्तों से?
2: नहीं,
1: नहीं होती है।
2: नहीं।
1: बहुत अच्छी लड़की है भाई वेदिका, लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना भैया।
0: तो अच्छा वेदिका, और ये बताइए आपने इतनी बातें तो की, ये आप बड़े होकर क्या बनिएगा ये भी सोचा है?
2: नहीं
0: अभी नहीं सोचा। अभी तो टू में है, सेकंड में।
1: कितनी इनोसेंट है, इन्होंने बता दिया, सच सच बता दिया,
0: अभी नहीं सोचा। और बड़े क्लास में जाएंगी तब ये वेदिका सोचेंगी। वैसे इनको दीदी मैथ इनको बहुत पसंद है, बता रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ आगे हो सकता है इंजीनियर बनना चाहिए, क्यों वेदिका? हाँ अभी तो बहुत समय है, अभी पढ़ाई करिए खूब अच्छे से, खूब मेहनत करिए, है ना वेदिका? तो ठीक है दीदी, और अब हमारे जो अगले नए साथी हैं हम इनसे भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले भैया इनके बारे में जानते हैं, इनका क्या नाम है और ये किस क्लास में पढ़ती हैं, है
0: क्या
1: ना?
0: नाम है आपका?
1: तो बताइए आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम प्राख्या है।
1: प्राख्या, वाह बहुत सुंदर नाम है।
0: प्राख्या तो बहुत नया नाम है भाई, बहुत यूनिक है। और प्राख्या आप किस क्लास में पढ़ते हो?
2: मैं फिफ्थ में पढ़ती हूँ।
1: फिफ्थ में पढ़ती हैं आप? अच्छा प्राख्या ये बताइए कि आप जो है क्लास फिफ्थ में पहुंच गए हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा स्कूल में जाकर कि हम क्लास नई क्लास में जाएंगे तो हमारे कितने मित्र बनेंगे, हम उनकी कैसे सहायता करेंगे, कुछ सोचा है आपने? सोचा है कि नहीं सोचा?
2: हाँ मैंने सोचा है कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊंगी और अच्छा। उनके साथ अच्छे से मिल बांट के रहूंगी।
1: वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए
0: तो स्कूल खुल गए आपके भी।
1: तो आप ये बताइए कि आज क्या सुनाने वाले हैं आप हमें?
2: मैं कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक मेरे पापा हैं।
1: वाह मेरे पापा। चलिए भाई सुनाइए।
2: किसी ने मेरे पापा के बारे में पूछा, तो कुछ बोलने से पहले मैंने थोड़ा सोचा और कुछ यूँ कहा मैंने, जिसकी आवाज में दहाड़ है, जो खड़ा हर पल मेरे साथ है, जिसका रुतबा रौबदार है,
1: क्या बात है,
2: जिसका प्यार मेरे लिए बेहिसाब है, जिसे नींद में भी हमेशा मेरा ख्याल है,
1: बिल्कुल
2: वो है मेरे पापा, जिसको मुझ पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद।
0: वाह वाह भाई, और देखिए वेदिका प्राख्या, बिल्कुल प्राख्या कि भाई पापा आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और मम्मी भी, तो क्यों प्राख्या?
2: हाँ करती हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पापा को शेयर करती हूँ।
1: भाई पापा इनके हीरो हैं और पापा पे बहुत ही ये विश्वास करती हैं, और कहते हैं ना कि उनका रुतबा है ना, और जो उनकी दहाड़ है वो सब प्राख्या को बड़ा अच्छा लगता है, इंस्पायर करता
0: और
1: है।
0: और वैसे देखिए प्राख्या मम्मी भी

0: तो आपके लिए इतना कुछ करती हैं, आपको प्यार करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं जो आपकी पसंद का है ना, बोलिए हाँ कि नहीं,
1: हाँ
0: बनाती हैं ना,
1: यस सर,
0: और आपकी पसंद का हमेशा ध्यान रखती है मम्मी भी तो ना,
2: हमें तो लगता है कि
1: रखती
2: मम्मी
1: हैं।
2: पूरा
0: हाँ करती हैं,
1: हाँ
0: यानी मम्मी और पापा
2: हाँ
0: दोनों आपको प्यार करते हैं और दोनों आपकी केयर करते हैं।
1: हाँ रखते हैं,
0: देखिए कितने अच्छे से ये बोले, हाँ रखते हैं
2: हाँ
0: बिल्कुल
2: रखते
0: भाई,
2: हैं
0: इससे इनकार भी नहीं कर सकते। क्यों प्राज्ञा, और आपको क्या पसंद है, कौन सा विषय अच्छा लगता है पढ़ाई में?
1: मेरे को ईवीएस अच्छा लगता है ज़्यादा।
2: ईवीएस यानी एनवायरनमेंट एजुकेशन।
0: भाई
2: देखिए
0: देखिए
2: भाई बहुत अच्छी बात है, उसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, हिस्ट्री हो हमारा,
0: सब
2: है ना,
0: कुछ
2: हमारा
0: बिल्कुल।
2: ज्योग्राफी हो, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
1: हाँ जी,
2: तो उसमें आपको जो आप ईवीएस बता रहे हैं, ईवीएस में आपको कौन सा चीज़ बहुत ही जो इंस्पायर करता है या बहुत अच्छा लगता है?
1: मेरे को जो बॉडीज वगैरह होती हैं उसके
2: हाँ
1: ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते
2: वाह,
1: हैं।
2: क्या कहने,
0: बिल्कुल
2: इसका मतलब कि ये किधर की तरफ जा रही हैं या इन्होंने जो राह चुनी होगी। अभी पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
1: डॉक्टर,
0: वाह बिल्कुल, हम लोगों ने बिल्कुल
2: डॉक्टर
0: सही
2: इन्होंने
0: अंदाज
2: इंडिकेट
0: लगाया
2: कर
0: था
2: दिया है ना।
0: बिल्कुल।
2: तो भाई ठीक है, आपके सपने पूरे हो, आपके
0: और आपकी
2: सपनों को
0: हॉबीज
2: पंख
0: क्या
2: मिले।
0: है,
2: हाँ
0: क्या हॉबीज है आपकी?
1: हॉबीज है प्लेइंग आउटसाइड, मतलब बाहर खेलना कूदा, और
2: और
1: मैं किताब पढ़ती हूँ
2: किताब,
1: ज़्यादातर।
2: ठीक है, ये
0: मतलब
2: तो
0: जो
2: बहुत है।
0: अपनी कोर्स की
2: हाँ
0: या इसके अलावा भी,
1: कोर्स
0: अपनी कोर्स की
2: कोर्स
0: जो भी,
2: कोर्स अदर कोई ऐसी बुक्स जैसे स्टोरीज हो, कुछ ऐसा
0: वैसे
2: किसी,
0: पढ़ने का बच्चों में
2: हाँ
0: इंटरेस्ट
2: क्रेज
0: जरूरी
2: होना
0: है,
2: चाहिए,
0: होना चाहिए
2: बिल्कुल होना
0: उसको,
2: चाहिए।
0: पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप अपने कोर्स के अलावा भी
1: हाँ
0: और
1: मैं
0: भी
1: पढ़ती
0: जो,
1: हूँ,
0: हाँ अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में,
2: हाँ
0: समाज के
2: सबके
0: बारे में
2: बारे में जो,
0: जानिए,
2: बिल्कुल
0: है ना, और उसकी जानकारी रखिए, है कि नहीं?
2: हाँ। तो अभी
0: तो
2: फिफ्थ में
0: प्राख्या
2: है, अभी प्राख्या बता रही हूँ कि बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अब आप जाके घर में अपने पापा से बोलिएगा जो आपके मॉडल हीरो हैं, और आपकी मम्मी जो आपको बहुत केयर करती हैं, प्यार करती हैं, उनसे बोलिएगा कि कुछ ऐसी भी बुक्स हमें प्रोवाइड करवाइए कि हम उसमें देश की बातें, अपने लोग, अपनी हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास है, और वो सारी चीज़ें हम पढ़ें जिससे हमको नॉलेज हो, है ना, हमारा जीएस
1: हाँ,
2: बढ़े। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी
1: लेकिन
2: बात है।
1: पापा से बोलूंगी तो पापा भी दूर है, तो मम्मा से ही बोलना
0: अरे
1: पड़ेगा। हाँ तो
0: वाह
2: मम्मा तो तुरंत
0: बिल्कुल
2: ला
0: बिल्कुल
2: देंगी ना।
0: बिल्कुल,
2: हाँ
0: हाँ भाई
2: हाँ अब समझ में बात आ गई कि पापा दूर है, पास
0: बिल्कुल
2: है,
0: प्रख्या।
2: इसलिए, है ना।
0: और चलिए ठीक है प्रख्या, आप जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बड़े होकर, उसके लिए खूब मेहनत करिए,
2: हाँ,
0: खूब
2: बहुत
0: अच्छे से
2: मेहनत
0: पढ़ाई
2: करने की
0: करिए और
2: जरूरत
0: बड़े
2: है,
0: होकर अच्छी सी डॉक्टर बनिए,
2: डॉक्टर बनिए,
0: हाँ
2: बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
2: तो भैया अब इस क्रम में और किसको आप
0: और
2: बुलाएंगे?
0: भी हमारे नए साथी हैं,
2: हाँ
0: इंतज़ार कर रहे हैं
2: हाँ
0: अभी
2: हाँ कि
0: तो
2: मेरी
0: है,
2: बारी कब
0: और
2: आएगी।
0: अब अगले हमारे नए साथी तैयार हैं।
2: अच्छा तो क्या आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम ईशा देव है।
2: ईशा देव, क्या बात है भाई, ये आवाज़ है टनकदार वाली, ईशा देव। अच्छा आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
2: अच्छा क्लास 6 में, तो आपके स्कूल तो खुल गए होंगे?
1: अभी नहीं, कल
2: अभी
1: खुल
2: नहीं,
1: रहा है,
2: कल
1: कल
2: से
1: से खुल रहा
0: खुलेगा।
2: है, तो
0: और
2: चलिए ये तो बहुत
0: आपके,
2: अच्छी
0: अच्छा
2: बात
0: तो
2: है।
0: यानी कि अभी छुट्टियां चल रही थी, तो इन छुट्टियों में आपने क्या किया?
1: हाँ मैंने रंगमंच की कार्यशाला में पार्ट लिया था।
2: क्या बात है,
0: थिएटर
2: रंगमंच
0: वर्कशॉप
2: थिएटर
0: किया था
2: वर्क,
0: इन्होंने,
2: और
0: तो उसमें एक्टिंग किया था।
1: हाँ
0: क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव था आप?
1: बहुत बढ़िया था ये। मैं 3rd ईयर था रंगमंच की
0: अच्छा तीसरी
1: कार्यशाला
0: बार
2: में,
0: आपने
2: तीसरी
0: ये
2: बार
0: किया
2: आपने
0: था,
2: किया था।
0: तो आपका ये शौक है,
1: हाँ
0: यानी कि बड़े होकर भी ये करना चाहिएगा या कुछ और?
1: हाँ बड़े होके मुझे रंगमंच भी करना और स्पोर्ट्स में भी रहना है।
2: अरे वाह,
0: स्पोर्ट्स में,
2: स्पोर्ट्स,
0: यानी कि और किस में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा स्पोर्ट्स आपको?
1: ताइक्वांडो में।
0: ताइक्वांडो,
2: अरे वाह, क्या
0: वाह
2: बात है।
0: बिल्कुल, तो आप सीख रही हैं।
1: हाँ
0: हाँ
2: कितने कितने साल हो गए सीखते हुए आपको?
1: 3 साल हो गया
2: तीन
1: है।
2: साल हो गए।
0: तो अब इसमें ताइक्वांडो में तो अभी कौन सी बेल्ट आपको मिली है?
1: मेरी रेड बेल्ट हुई है।
0: रेड
2: रेड
0: है ना,
1: बेल्ट,
2: चलिए
0: तो अच्छी
2: कोशिश
0: बात
2: करेंगे तो
0: है,
2: इनको ब्लैक बेल्ट भी मिल जाएगी जल्दी जल्दी, है ना।
0: है ना? खूब
2: क्यों?
0: मेहनत करिए अभी
2: हाँ
0: से, और हमें क्या सुनाने जा रही हैं?
1: आज मैंने आपको कविता सुनाने जाने हैं।
2: अच्छा
0: अरे सुना
2: कविता
0: रहे हैं, कविता
2: सुनाएंगे आप?
0: सुनाएंगी
2: चलिए
0: तो सुनाइए।
2: सुनाइए।
1: अंकुर मिट्टी में सोया है, सपनों में खोया है, नन्ना बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया है, तभी बीज ने ले अंगड़ाई, दे जरा सिपाही, आग खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई, खाद मिली पानी भी पाया, जैसे जीवन आया उधर निकला इधर निकला, जैसे धरती पे आके उसका जीवन बहुत सुख हो गया। धन्यवाद।
2: अरे वाह,
0: ये तो है भाई, देखिए
2: छोटा बीज,
0: एक छोटा सा बीज कैसे उसमें अंकुर आता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, पौधा बनता है, पौधे होकर

0: बड़ा बड़ा पेड़ और विशाल वृक्ष बनता है।
1: तो हमारे ये बच्चे भी तो एक नन्हे बीज थे, फिर अंकुरित हुए, थोड़े इतने बड़े हुए, अब जब ग्रो करेंगे तो एक पेड़ की तरीके से ये बनेंगे जो सबको छाया देंगे और सबकी हेल्प करेंगे और इनका जीवन भी, जो इनका भविष्य है वो उज्ज्वल होगा।
0: तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर?
2: मैं बड़े होकर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं।
1: स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं,
0: बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में करियर बनाइए और उसके लिए खूब मेहनत करिए। और इसके साथ साथ ये आपने तो इंटरेस्ट बता दी। अच्छा, खाने पीने की बात करें तो क्या खाने पीने में आपको पसंद है?
1: क्या खाना? पौष्टिक खाना।
0: पौष्टिक खाना, कोई
1: घर का खाना कि बाहर का खाना?
2: घर का
1: खाना।
0: और ये देखिए ईशा, हम तो बच्चों से सबसे यही कहते हैं अपने हर कार्यक्रम में कि भाई पौष्टिक खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए और घर का खाना। आजकल बहुत से बच्चे हैं जो बाहर के लिए अक्सर खाने के लिए
1: जिद करते हैं ना।
0: हाँ। ये तो अच्छी बात, कभी कभी खाया जा सकता है थोड़ा बहुत, है ना, मन बदलने के लिए। लेकिन केवल बाहर का ही खाना खा के आप बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना। तो इसलिए घर का खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए। और आप बड़े होकर जो बनना चाहती हैं ईशा, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो अच्छे से उसमें आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए
1: और आगे बढ़िए,
0: है ना। पर्सन बनिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ठीक है दीदी, और अब हमारे एक और भी अगली नए साथी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अंतरा देव है।
1: अंतरा देव, अंतरा देव। तो सब कितने एक्साइटेड हैं भैया अपनी बारी के लिए, है ना। अंतरा देव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं 9th में हूँ।
1: 9th में हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं, पहले ये बताइए।
2: मेरे को अपना करियर स्पोर्ट्स और ये थिएटर वर्क, थिएटर में।
0: मतलब आपको भी सेम? आप भी थिएटर करते हो?
2: हाँ, ये मेरा चौथा साल है।
1: ये चौथा साल है, वाह। तो ये तो बहुत अच्छी, क्या सीखा इसमें वर्कशॉप में? क्या
0: थिएटर में कुछ सीखने को अच्छा नया सीखने को क्या मिला?
2: थिएटर में सीखने को हर साल मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन बढ़ता है, टीम वर्क, और ये सब पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ टीम वर्क की बात है अंतरा, तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या अदर कोई भी प्लेस आपने अगर चुना है, और अच्छी हेल्दी एटमोसफेयर में ये सारी चीजें ग्रोज होती हैं, यानी आगे बढ़ती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने टीम वर्क की बात की।
0: क्या सुनाइएगा हमें?
2: आज हम आपको सुनाने वाले हैं पुष्प की अभिलाषा।
1: पुष्प की अभिलाषा, अच्छा ठीक है, चलिए सुनाइए।
2: चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी की माला में बिन प्यारी को ललचाऊं,
1: क्या बात।
2: चाहा नहीं सम्राटों के सर पे है हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देव के सर पे चढ़ के मैं इतराऊं, मुझे तोड़ने ला मन वाली उस पद पे डालना डाल, जहाँ पर मातृभूमि के शीश जा रहे हैं,
0: जिस पथ जाएं,
1: जिस शीश नवाने की बात है ना बेटा। देखिए,
0: यानी ये पुष्प की एक अभिलाषा है
1: और इन्हें अच्छी तरीके से याद नहीं है ये कविता,
0: लेकिन इन्होंने प्रयास किया हमें सुनाने का।
1: ये माखनलाल
0: चतुर्वेदी जी की बहुत अच्छी कविता है। इसमें पुष्प की ये अभिलाषा है कि वो पुष्प की जो इच्छा है कि मुझे ईश्वर के चरणों में चाहे ना चढ़ाया जाए या किसी के बालों में ना गूथा जाए, लेकिन जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिस राह पर जा रहे हैं अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने बलिदान देने के लिए, उनके रास्तों में मुझे बिखेर दिया जाए, मुझे
1: देखिए पुष्प कितना प्यारा, कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे
0: इससे एक सीख मिलती है। ये हम सब के लिए एक सीख है,
1: बिल्कुल,
0: इस कविता के माध्यम से।
1: उस कांटों के बीच में वो जो खिलता है ना, अपना रास्ता बनाता है, और उसकी ऐसी अभिलाषा है कि उसके अंदर कोई जो अहंकार नहीं है, वो बस विनम्रता से झुका हुआ है कि मुझे किसी के भी चीज में नहीं जाना, ना बालों में लगना है, ना मुझे किसी चीज की सजावट में लगना है।
0: इसके पीछे एक भाव ये भी है कि जो देश भक्ति का भाव है ना, क्यों?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा अंतरा, आपने तो बताया कि बड़े होकर आप भी, यानी कि जब इंटरेस्ट है तो आप भी बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, आप बताओ?
2: स्पोर्ट्स में करियर बनाना है अपना मेरे को।
1: अच्छा, स्पोर्ट्स में आप क्या क्या खेलते हो?
2: शूटिंग।
0: शूटिंग, ये तो भाई देखिए, अच्छा, इनका नया, इनका
1: उन्होंने ताइक्वांडो और इन्होंने शूटिंग में, तो ये भाई
0: आपने उसमें
1: तो प्रयास के, मतलब जो आप जाते हो रिहर्सल यानी अभ्यास करने के लिए, आपको टाइम मिल जाता है स्कूल के बाद?
2: हाँ, टाइम मिल जाता है।
0: कितने सुबह या शाम कब आप करते हो प्रैक्टिस?
2: वहाँ एकेडमी तो सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक खुली रहती है,
1: हाँ।
2: तो चाहे जब जाके कर सकते हैं।
1: अच्छा, स्कूल के बाद फिर आप जाते होंगे?
2: स्कूल के बाद
1: तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं?
2: दो।

0: 2 घंटे।
1: तो
2: घंटे
1: भाई भाई बहुत
2: चलिए
1: अच्छी बात है, आप बड़े होकर अपना जो भी करियर बनाना चाहते हैं उसमें ज़रूर सफल होइए, हमारी ये शुभकामना है। और
2: और
1: दीदी
2: दीदी
1: अपने
2: की बात
1: साथ,
2: कर रहे हैं, मैं ही
1: हाँ
2: कहने जा रही थी कि एक और भाई नए साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपने एकदम इंस्ट्रूमेंट के साथ आए हैं कि मेरी बारी कब आएगी, तो भैया जल्दी जल्दी इनसे भी पूछ
1: हाँ आपका
2: लीजिए,
1: नाम क्या
2: है
1: है?
2: ना।
3: मेरा नाम अर्जुन चौधरी है।
1: तो हम आपसे बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए दीदी ये सिंथेसाइजर
2: हाँ
1: लेकर आए हैं, कीबोर्ड
2: हाँ
1: लेकर आए हैं, और इस पर हमें कोई धुन सुनाएंगे, कौन सी?
3: मैं राग भीम पलासी बजाने
1: तो
3: जा
1: पहले
2: राग भीम
1: सुन लिया
2: पलासी
1: जाए।
2: चलिए।

0: के साथ, अर्जुन के साथ कीबोर्ड पर इन्होंने तो ये राग सुनाया, और
1: हाँ
0: इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे इनके सर
1: संतोष जी,
0: संतोष पांडे सर
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: और दीदी,
1: हाँ
0: हम इनसे अभी आगे बात करेंगे,
1: हाँ
0: थोड़ा सा हम पहले बात कर लें हम अगले सेगमेंट की,
1: ये तो
0: वो जो
1: आज का
0: है
1: है
0: शब्द
1: शब्द
0: ज्ञान।
1: ज्ञान का है, तो शब्द ज्ञान हिंदी में
0: पहला
1: है
0: जो हिंदी का जो शब्द ज्ञान
1: वो है
0: में
1: क्या है,
0: शब्द है वो है दिग्दर्शन।
1: दिग्दर्शन।
0: इसका अर्थ
1: बिल्कुल
0: होता है मार्गदर्शन, दिशा दिखाना या सही राह बताना।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि गुरु का दिग्दर्शन जीवन को सही दिशा देता है ये,
1: और
0: और दूसरा
1: अंग्रेजी शब्द ज्ञान है एब्सटेंशन, यानी परहेज करना, विरत रहना, मतदान में विरत रहना यानी मतदान में भाग नहीं लेना,
0: लेना।
1: किसी मतदान निर्णय या कार्य में भाग लेने से जानबूझकर अलग हो जाना या मतदान से परहेज
0: तो भाई
1: करना।
0: दीदी, अब अर्जुन की ओर हम फिर से बात करते हैं अर्जुन से, कि अर्जुन ये बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
2: मैं बड़े होकर मर्चेंट नेवी में जाना चाहती
0: अरे
2: हूँ,
0: भाई
1: नेवी
0: ये तो
1: में,
0: बहुत अच्छा, क्यों?
2: क्योंकि वहां पे काम करने के अलावा आपको पूरी दुनिया का घूमने का एक मौका मिलता है,
0: जानने का,
1: जानने का,
0: समझने
1: समझने
0: का,
1: का, नई
0: पूरी
1: नई
0: दुनिया,
1: भाषाओं को सीखने का।
0: ये
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: होना
1: बहुत
0: भी
1: ही अच्छी
0: चाहिए,
1: बात
0: हर
1: है।
0: बच्चों में ये बात जरूर होनी चाहिए कि जितना नया से नया, ज्यादा से ज्यादा कुछ सीख सकें उतना सीखना चाहिए, वो किसी
1: बिल्कुल
0: भी तरीके से हो सकता है। और इसके साथ साथ और आपका क्या शौक है? ये तो हमने देखा म्यूजिक के अलावा।
2: म्यूजिक के अलावा मैं बुक्स पढ़ता हूँ,
0: हाँ
2: नॉवेल्स जैसे हैरी पॉटर और भी काफी अलग बुक्स। उसके
0: हाँ
2: अलावा मैं कराटे सीखता हूँ।
0: अरे भाई
1: वाह,
0: भाई, मल्टी टैलेंटेड
1: मल्टी
0: बच्चे हैं
1: टैलेंटेड।
0: भाई अर्जुन। और देखिए, ये जो है अर्जुन, आप बड़े होकर मर्चेंट नेवी में जाइए, खूब मेहनत करिए, और हम
1: बिल्कुल,
0: सबकी शुभकामनाएं हैं
1: और
0: आपके
1: इसके लिए
0: साथ।
1: कठिन प्रयास कर

0: ना होगा
1: और
0: आपको।
1: दीदी अब अपने कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम बच्चों से अगले रविवार को अपने बाल संघ कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों,
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों

0: सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: few days. IMD said a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is expected to keep the monsoon active across central India for the next 4 or 5 days. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. Australia secured their place in the final with a victory over the West Indies in the semi-finals, while England defeated South Africa on Thursday to register their 6th consecutive win and book a place in the championship decider. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों की। आज शाम 7:31 से आप सुनेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध होगा 1:15 पर। 2:30 पर सुनिएगा लोकगीत, गायक कलाकार मोहनलाल कांस्कार और साथी संगीता राय और सरोज सिन्हा। शाम 5:00 ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम होगा बाल गोपाल, इसमें बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता ग्रामीण बच्चों में खेल और रचनात्मकता का विकास। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:15 पर और शाम 6:30 पर होगा ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। सोहनी जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, इकहरा बदन है। ये दिनांक 14 मई 2026 से बेनीगंज प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें सारिका से, जिनका मोबाइल नंबर है 8803572280। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8803572280। सुषमा सरोज जिनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। ये दिनांक 22 मार्च 2026 से ग्राम कुकड़ा चक दौलत हंडिया प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें अर्जुन सरोज से, मोबाइल नंबर है 9974828523। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9974828523। दिलीप कुमार शर्मा जिनकी उम्र है 36 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 12 मई 2026 से जयंतीपुर सुलेमसराय प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें सीमा से, जिनका मोबाइल नंबर है 9580129659। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 9580129659। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन। पहले सुनिए शहनाई पर बजाया राग भीम पलासी।

अभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग भीम पलासी, और अब सुनिए शहनाई पर बजाया राग वृंदावनी सारंग, कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खां।

अभी आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग वृंदावनी सारंग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत जमीर काजमी का है और संगीत है अनु मलिक का।

साजन, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। आवाज़ें एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की हैं। गीत रचना है समीर की और इसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीत रानी मलिक का था और संगीत नदीम श्रवण का था। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, बारिश की रिमझिम बूंदें जब दिल को छूती हैं तो यादों का कारवां भी साथ चल पड़ता है। बरसती बूंदें कभी यादों को ताज़ा करती हैं तो कभी मन में नई उमंग जगा देती हैं। इसी एहसास के साथ अब आपको सुनवाते हैं गुरु फिल्म का गाना, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार ने। गीत है गुलजार का और संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, बरसात की बूंदें जब धरती को छूती हैं तो चारों ओर नई ऊर्जा और ताजगी बिखर जाती है। बारिश के मौसम में कभी शरारत होती है, कभी रोमांस और कभी दिल की अनकही बातें। इस मौसम की मादकता लिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म मोहरा से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका।

के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 1 बजने को है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अज़्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बुहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बुहरान का दुरुस्त अंदाजा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदामात के जरिए मुल्क ने इस बुहरान से कामयाबी से निपटा।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार दो रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मेयारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: गुलाब प्रजापति कन्हौजा कला बाबूगंज प्रयागराज।
0: जी गुलाब जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बरसात की रात मूवी का कोई एक गीत।
0: बरसात की रात, तो कौन सी वाली बरसात की रात फिल्म का आपने गाना सुनना है?
1: ये पुरानी मूवी है मैम।
0: नहीं, पुरानी तो एक और आई थी अमिताभ बच्चन और राखी की, और आप कौन सी बरसात की बात कर रहे हैं?
1: ये जो दूसरी मूवी है बरसात की रात।
0: अच्छा, बरसात की रात फिल्म की जो दूसरी मूवी है,
1: जो 1998 की है, वही मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई आपकी पसंद का हम ये गाना बरसात की रात फिल्म का सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी।
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।
0: जी
1: यहाँ मौसम गजब कुछ किया है मैडम, परसों तो 1:30 बजे खूब पानी गिरा और 2 दिन से बादल कर रहा है, इसके बाद धूप कर रहा है, उमस गर्मी हो रहा है, हवा चलता है तो धूप के चलता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इस टाइप का मौसम चल रहा है।
0: देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता दूर दूर से फ़ोन करते हैं वो अपने राज्य का अपने शहर का मौसम भी बता देते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। इससे
1: जी
0: जो प्रयागराज में बैठे हुए हमारे श्रोता हैं वो जान जाते हैं कि कहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है। तो इंद्रभान जी ने अभी अपने शहर के मौसम के बारे में हम लोगों को बताया, तो अब गाना भी बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है मेरा साया और गीत के
0: जी
1: बोल है नैनों में बदरा छाए,
0: बिजली सी
1: गायिका लता
0: चमकी है।
1: मंगेशकर। और
0: हाँ
1: सबसे
0: हाँ
1: पहले गीत सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत के श्रोता को, आकाशवाणी प्रयागराज में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, आकाशवाणी प्रयागराज में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एकता रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को डिटेल कर रहा हूँ।
0: तो
1: ठीक है ना,
0: इंद्रभान जी, मेरा साया फिल्म के इस गाने को आपने सुनना चाहा है, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: महेंद्र यादव मुन्ना बरौद हंडिया प्रयागराज से हैं।
0: जी हंडिया से महेंद्र जी ने कॉल की है, तो कौन सा गाना सुनना है महेंद्र जी को?
1: दिलवाले फिल्म का गाना है,
0: जी
1: पुरानी दिलवाले का।
0: जी जी
1: जीता था जिसके लिए मरता था,
0: जी
1: एक ऐसी
0: जी
1: लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
0: कुमार सानू की आवाज में ये गाना है,
1: हाँ जी मैं
0: तो आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मौसम वर्मा। मैम
0: मौसम वर्मा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तुमसे अच्छा कौन है, इसका टाइटल सॉन्ग।
0: तो मौसम वर्मा जी, आपने कहाँ से कॉल की है?
1: विंध्याचल से। मैम
0: विंध्याचल से मौसम जी ने हमें कॉल की है और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मेरा नितीश आर्या है
0: जी। नितीश आर्या जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिल एक मानता नहीं
0: जी।
1: गाने बोलने दुल्हन तू बन जाएगी, दुल्हन बन जाऊंगा, इंतजार करना, हम बारात लेकर आऊंगा।
0: अच्छा, आमिर खान और पूजा भट्ट की ये फिल्म थी।
1: बहुत ही अच्छा गाना भी है
0: जी। गाने भी अच्छे थे इस फिल्म के। और अब आपकी पसंद का ये गाना हेलो अनुरोध कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए।

0: हेलो अनिरुद्ध, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: परमादरणीय दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा से कहता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: दीदी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।
0: जी
1: आप अपनी पसंद से कोई सा प्यारा सुरीला गीत हम समस्त श्रोताओं के लिए प्रसारित कीजिए आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर। कैसी मैम आप?
0: मैं ठीक हूँ विकास जी, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे मैम, आपका कार्यक्रम सुनते तो और अच्छे हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम बेहद पसंद है। तो विकास जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: इजाजत।
0: इजाजत का कौन सा गाना है?
1: छोटी सी कहानी से सारे वादे भर गए, ये एक थोड़ा बारिश का गाना है।
0: हाँ हाँ है, तो आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है।
1: जी जी ये बहुत अच्छा गाना है।
0: जी जी और ये बिल्कुल बरसात को आंख के सामने एकदम ला देता है। इसकी जो वर्ड्स हैं, इसके जो शब्द हैं, वो वाकई आपको महसूस कराते हैं कि सारी वादी भर गई।
1: जी ये हमारे बहुत से बाहर के लोग, ये हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं ये गाने को।
0: अच्छा,
1: वो कहते हैं ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, तो कहाँ के हैं दोस्त आपके?
1: हमारे दोस्त उड़ीसा से हैं, ये कम से कम 20 लोग सुनना चाहते हैं ये
0: अच्छा,
1: गाने।
0: अच्छा अच्छा तो ये उनकी फरमाइश है।
1: हाँ जी ये उनकी फरमाइश है।
0: तो उनमें से किसी का नाम अगर आपको याद है तो बताइए।
1: एक नाम है राजेश,
0: राजेश, और
1: जी, और एक है अरविंद।
0: राजेश अरविंद उड़ीसा से।
1: जी जी ये सुनना चाहते हैं ये गाना।
0: अच्छा अच्छा तो आपकी मुलाकात उड़ीसा में हुई?
1: बिल्कुल, वो बहुत अच्छे मित्र, हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ जरूर ही 2 घंटे 4 घंटे तो रुक ही जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए, इतनी दूर से उन्होंने फरमाइश की है, वो भी आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में, तो हम उनकी इस फरमाइश को क्यों नहीं प्रसारित करेंगे। तो विकास जी, गाना भी बहुत अच्छा है और दूर से फरमाइश भी आई है, तो आइए सुनते हैं इजाजत फिल्म का ये गाना।

0: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
1: नमस्कार प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: मैम फिल्म का नाम है जानवर
1: जी,
0: और गाने के बोल है कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से। उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजों में ये प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम जानवर, अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर की फिल्म।
1: तो आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन

0: ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के

0: साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय

0: लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं मोहनलाल कांस्कार और साथियों के स्वर में दादरा।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत। अब आपको सुनवाते हैं संगीता राय के स्वर में खेमटा।

सरो सिन्हा के गाए इस पूर्वी गीत के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर, और इसके अलावा प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल गोपाल।
1: लइकनो जय हिंद।
2: हम कहे सुमरन भैया।
1: हाँ चंद्र भैया।
2: भैया देखा बरसात के मौसम बात ये मौसम भैया तो चारों तरफ हरियाली हो जाते हैं।
1: हरियाली हो जाते काहे नहीं भैया, और हरियाली के साथ साथ भैया एक हमारे पचन का जिम्मेदारी भी होता है।
2: हाँ, हाँ,
1: कि भाई जैसे आपका मानसून जब आवे वाला होता है ना, तब भाई आपका जो उपयुक्त समय होता वो पेड़ लगावे का होता।
2: बिल्कुल।
1: और भैया ई समय अगर पेड़ लगावा जाए तो भाई पेड़ का विकास अच्छे से हो, अच्छे से पेड़ पकड़ ले, और जो ना हरियाली की बात कह रहा है ना, ये हरियाली और बढ़े।
2: बिल्कुल भैया, चुन्नू मुन्नू के भी ये कहा बतावा जाए कि भाई जवान ये पौधा बांटें पेड़ बांटें, भाई निश्चित तौर पर एकर सुरक्षा करें। वो कहे से एकर इतनी महत्ता बा कि ओकर गुण गाय न खत्म हुए।
1: काहे नहीं भैया, सुनर भैया साथ ही साथ देखा अब तो स्कूल कॉलेज में भी चुन्नू मुन्नू भैया हरे देखे वृक्षारोपण कर रहा है। अपने अपने तरीके से पेड़ लगावत है, अपने अपने तरीके से होकर देखभाल करते हैं। और जो नहीं अभी सप्ताह चलत बाटे ना, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक भैया ई जोन बाटे आपका वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनावा जाता
2: है। बिल्कुल। तो भाई सप्ताह के मनावे के मकसद यही होता है कि लोगन के चुन्नू मुन्नू के जागरूक किया जाए पेड़ पौधन के प्रति, कि पेड़ पौधन के महत्ता का बा, एकर सुरक्षा करें, एका कोनो तरह से नुकसान न पहुँचावें। कहें से भाई जो वातावरण में जो शुद्ध ऑक्सीजन की बात की जाती है, भाई देखा और केहू सुना खाली पेड़ पौधा से मिले थे।
1: बिल्कुल, शुद्ध ऑक्सीजन मिले थे भैया, साथ ही साथ जो अपन

0: पारिस्थितिकी बाटे ही
1: हाँ
0: भाई,
1: हाँ
0: पारिस्थितिकी उससे अच्छी होता। एका जो ही वन महोत्सव सप्ताह चलत बाटे ही भाई, एका वनों का त्योहार यही वजह से कहा जाता है कि भाई वृक्षों का त्योहार, कि ये समय भैया जोनो भैया हरे हैं, चाहे बड़ा हों, चाहे बुजुर्ग हों, बूढ़ हों, पुरनिया हों,
1: हाँ
0: चाहे बच्चा ही हों,
1: हाँ
0: भाई सब जने एक अपनी जिम्मेदारी समझाई, और जिम्मेदारी के रूप में भाई वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण आप कितना फायदा कर रहे थे ये बतावे की जरूरत नहीं बटे, स्कूल कॉलेज हर तरीके से आपके ये चीज सिखाई जाता है।
1: निश्चित तौर पर भाई जो है ना अपन पर्यावरण में ना भाई देखा कहा जाता है कि हमें

0: कितना फायदा कर रहा था ये बतावे की जरूरत नहीं, बट स्कूल कॉलेज हर तरीके से आपके ये चीज सिखाई जाता है।
1: निश्चित तौर पर भाई, जो ना अपन पर्यावरण में ना भाई देखा, कहा जाता है कि हमें अगर संतुलन बनाए रखे वह तो धरा पे पृथ्वी पे भाई निश्चित तौर पे इतना पेड़ पौधा हो चाहे कि संतुलन बना रहा है, जौन से जौन गर्मी ठंडी और बरसात के जौन भाई मौसम होते ना, इनमें आपस में संतुलन रहा है, लगभग बराबर समय पर वर्ष भर में रहा है, जौन से भाई हमू से खुशहाल रही और प्रकृति भी हरी भरी रहा है।
0: हम तो कहब चंद्र भैया कि जौन चुन्नू मुन्नू के स्कूल में पढ़ावा जाता है पर्यावरण में, यह चीज तो पढ़ाई जाता है कि भाई परिस्थिति की अपन अच्छी रहे, अपन पर्यावरण अगर अच्छा रहे तो आगे आवे वाला जो समय बांटे वो अच्छा हो। तो हम समझते कि चुन्नू मुन्नू का हेमन बहुत अच्छा एक वो तरीका बांटे कि वो अगर आगे बढ़ के पेड़ लगावाई, उनका देखा देखी और सब जने भी आगे बढ़ी और पेड़ लगाई और एक तरीके से जो नी हरा भरा जो नी पारिस्थितिकी तंत्र बांटे ये और विकसित हुए।
1: बिल्कुल भैया, कम से कम चुन्नू मुन्नू इतना तो कही सकत भैया, कोनो में तरह के छुटवार अगर पौधा बांटे उनका कोनो तरह से नुकसान न
0: पहुंचावे
1: ऐसे भाई, वह पौधा जब देख रेख होए, जब उनका समय समय पर खाद पानी मिले भैया, तो है बड़ा होए और बड़ा होए तो जौन जौन के लिए लगावा गए, चाहे फल के लिए, चाहे शोभा के लिए, चाहे प्रकृति के भाई एक तरह से धरोहर के रूप में, तो वह आगे चल के भाई काम आए।
0: नहीं, बड़ी अच्छी चंद्र भैया आप बात कहें कि खेल कूद में कई बार गलती हो जाता है कि भाई चुन्नू मुन्नू भैया क्या करते हैं, डाल तोड़ देते हैं, पेड़ के नुकसान पहुंचा देते हैं। अब जोन बड़वार पेड़ हैं भाई उनका तो फर्क नहीं पड़ा था, जोन छोटवार पेड़ हैं भाई अगर उनका नुकसान पहुंच जाए तो पारिस्थितिकी के लिए बड़ा गलत हो था। और जहां तक खेल कूद के बात भाई, तो जैसे अपन बीता बांटे गर्मी छुट्टी बीती बांटे खूब खेलन कूदन चुन्नू मुन्नू, अब तो भाई देखो स्कूल खुल गवा बांटे, खेल कूद से न केवल भैया उनका शारीरिक विकास होता बल्कि उनमें कई तरह के गुण आवत हैं, भाईचारा आवत है, रचनात्मकता आवत है, नई नई तरीके से वो सीखत इन चीजें के। तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ अगर खेल कूद बांटे तो हम समझे था कि खेल कूद जीवन में बहुत जरूरी बांटे।
1: बिल्कुल, तो भाई देखा आज खेल कूद से संबंधित देखे वार्ता बांटे,
0: हाँ
1: तो ग्रामीण बच्चों में खेल कूद और रचनात्मकता का विकास, नीता श्रीवास्तव बहनी की वार्ता पर आवाज सुना जाए।
2: मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में खेल और रचनात्मकता का क्या महत्व है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल उल्लास, उमंग और जीवंतता का प्रतीक है। पता है बच्चों, जब किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चा अपने परिवार जन का खिलौना बन जाता है। वह बच्चा खेल खिलौने खेलने लायक तो बाद में बनता है, पर उसके घर के लोग उसके साथ खूब खेलते हैं। आस पड़ोस वाले, यहाँ तक कि अनजान लोग भी बच्चे से खेलने को लालायित रहते हैं। अच्छा बताइए तो बच्चों, दादाजी की पीठ पर घुड़सवारी कितने लोगों ने की है? चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। आप बच्चों को जो आनंद आता था वो तो था ही, परंतु दादाजी भी अपने घुटनों का दर्द भूलकर आपको यहाँ वहाँ की सैर कराते थे, खूब खुश होते थे और आप सीख जाते थे संतुलन बनाना, अपनी रीढ़ की हड्डी को साधना और मौज मस्ती करना। और इसी तरह दादी नानी के पैर पे बैठकर झूलते हुए घुग्घू कन्हैया भी खूब किया है आपने। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपने हाथों पे बिठा के घुमाते थे और साथ में गाते थे, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। चाचा मामा तो चुन्नू मुन्नू को एक एक हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमाते थे, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। बिल्ली चूहा को भले ही न पकड़ पाए, पर इन छोटे छोटे मनोरंजक खेलों से बच्चों में गजब का उल्लास, उमंग, शारीरिक सक्रियता और ऊर्जा का विस्तार होता था, और यह बच्चे के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। आरंभिक अवस्था से ही बच्चों को हवा में उछालना और लपक के पकड़ना, ये भी चाचा मामा लोगों का प्रिय खेल होता था, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ों से डांट ही क्यों ना पड़ जाए। पर देखा जाए तो ये आज की पैराग्लाइडिंग का आरंभिक रूप था शायद, जिससे बच्चों को ऊंचाई का डर निकल जाता हो। धीरे धीरे चुन्नू मुन्नू बड़े होते हैं, घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हैं और उनका सामाजिक विकास होने लगता है। बच्चों के मनपसंद खेलों में होता है दौड़ लगाना, ऊंची कूद, लंबी कूद, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, पतंगबाजी, निशानेबाजी, तैराकी और खेल खेलने से बन जाती है टोली या टीम, और टोली में प्रतिस्पर्धा होना ही तो खेल को रोचक बनाता है।

टोली बनने से आप में नेतृत्व के गुण विकसित होने लगते हैं, आपसी प्रतिबद्धता बढ़ती है, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की होड़ में आप नियमित अभ्यास करने लगते हैं, आप में निर्णय लेना, नेतृत्व करना, आत्मविश्वासी होना व सद्भावना के गुण आ जाते हैं। पर बच्चों, कोई भी खेल किसी अनुभवी के निर्देशन, निरीक्षण और अनुशासन में रहकर ही खेलना चाहिए। खेल में नियम और अनुशासन का बड़ा महत्व है। खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, ना कि हार जीत की भावना से। अब देखो ना बच्चों, जब मौसम की मार पड़ती है तब आप लोगों को घर में ही समय व्यतीत करना पड़ता है और घर बैठकर भी तमाम खेल खेले जा सकते हैं। सांप सीढ़ी, कैरम, लूडो, शतरंज आदि से समय भी बीतता है, मनोरंजन भी होता है, साथ ही एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, धैर्य रखना आदि भी गुण विकसित होने लगते हैं। कुछ बच्चों को पठन पाठन का शौक होता है तो वह अपनी कल्पना से अलग ही प्रकार के रचनात्मक खेल गढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों से या अन्य पुस्तकों पर आधारित नाट्य मंचन कर, संवाद बोलकर, अभिनय करके सॉन्ग रचाते हैं। हाँ, जैसे रामलीला खेलते हैं। रामलीला से प्रभावित होकर सारे बच्चे मिलकर राम, सीता, हनुमान, रावण, वानर आदि बनके अभिनय करते हैं, तरह तरह का रूप धारण करते हैं, धनुष, बाण, मुकुट, गदा, नकली मूछें व अन्य श्रृंगार का ढंग सीख जाते हैं। छोटे बड़े सभी इसका खूब आनंद लेते हैं। रचनात्मक खेलों की इस श्रृंखला में बिटिया लोगों का एक और प्रिय खेल होता है, गुड़िया का ब्याह रचाना। सखी सहेलियों के साथ मिलकर पूरे परिवार को जोड़कर गाजे बाजे, साज श्रृंगार, पूरी, हलवा, मिठाई, पकवान के साथ बड़े ही भावनात्मक ढंग से खेला जाता है ये खेल। कहीं गुड़िया का घर बनता है तो कहीं माला पिरोई जाती है, तो कहीं वस्त्रों पे किनारी गोटा लगता है। सारे बच्चे मिलकर आनंद लेते हुए ये सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे खेल हमारी कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कहीं न कहीं बच्चे संगठित होकर जिम्मेदारी उठाते हैं और जीवन के पाठ सीखते हैं। तो बच्चों, खेल न सिर्फ हमारे शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमें भावनात्मक संतुष्टि भी देते हैं। खेल हमारे मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का। खाली बैठकर हमें कभी नकारात्मक विचार घेर लेते हैं तो कभी उदासी और अकेलापन, भय, क्रोध, दुश्चिंता, अवसाद, कुंठा जैसे मनोरोगों से बचने के लिए जरूरी है कि सक्रिय रहा जाए, खेल कूद में रुचि ली जाए। तभी तो कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बच्चों, आजकल देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में भी आलस घेरने लगा है, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। व्यस्त माता पिता और अकेले बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में घंटों समय बिता देते हैं, परिणाम स्वरूप शारीरिक सक्रियता का अभाव हो जाता है। संयुक्त परिवार में तो खेलकूद का माहौल बना रहता है, परंतु एकल परिवार में माता पिता को भी विशेष प्रयास करने होंगे। बच्चों, आपको सक्रिय बने रहने के लिए साइकिल चलाना, रस्सी कूदना या पार्क में जाकर खेलने के लिए स्वयं को प्रेरित करना होगा। एक ही जगह बैठकर घंटों टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना आदि पे रोकथाम करना जरूरी है। यहाँ तक कि घंटों एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने की बजाय विद्यालयों में भी क्रियाकलापों द्वारा खेल खेल में शिक्षा देने को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चे तो स्वभाव से ही खेलों में रुचि लेते हैं, तो पढ़ाई की नीरसता, अरुचि, बोझ व दबाव को समाप्त करने के लिए खेलों को आधार बनाया जा रहा है। नाना प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, कभी उल्टी गिनती बुलवाई जाती है तो कभी अक्षरों को उल्टा बोलकर नाम पुकारे जाते हैं। इससे पढ़ना लिखना सीखना और भी स्थायी हो जाता है। विद्यालयों में खेल के घंटे होते हैं, नाना प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, खेल सिखाने के लिए अध्यापक होते हैं और खेलने के लिए पर्याप्त सामग्री व मैदान होते हैं। बच्चों, इन्हीं घरों, गांवों, चौपालों से निकलकर बच्चे बड़े होकर खेल में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा पानीपत के पास के गांव के रहने वाले थे। इसी प्रकार प्रियंका गोस्वामी, राजकुमार पाल, अंजू बाबी जॉर्ज, साक्षी मलिक, मनु भास्कर, करनाम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, गीता बबीता फोगाट जैसे कितने ही खिलाड़ी हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। है ना बच्चों, कितने गर्व की बात। और यह भी गर्व की बात है कि आप बच्चे भी तो गांव से जुड़े हुए हैं। बच्चों, गांव की मिट्टी में बड़ी ताकत है। धूप, पसीना और मेहनत से जो सहन शक्ति विकसित होती है वही इन खेलों का आधार बनती है। बच्चों, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए और इसके महत्व को समझते हुए कई कार्यक्रम और पहल भी हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, राज्य

0: गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की पहल होना बहुत शुभकारी है। खेलों को सर्वसुलभ बनाने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं के बीच पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उषा सिलाई स्कूल काम कर रही है, उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। और तो और बच्चों दिव्यांग भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस, तैराकी वगैरह खेल शामिल हैं। यह समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देता है। तो देखा ना बच्चों आपने कि घर की चार दीवारी के अंदर से पनपते खेल कैसे विश्व पटल पर तिरंगा लहराते हैं। बच्चों हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके नियमित अभ्यास, दृढ़ संकल्प और कुशल मार्गदर्शन पाकर आज अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते, पर इसके लिए आपको अभी से प्रयास करने होंगे। पौष्टिक और संतुलित आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम भी जरूरी है। खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भी जिम्मेदारी आप ही पर है। तभी तो आप साबित कर पाएंगे कि खेल कूद से खराब नहीं बल्कि लाजवाब बनेंगे। तो बच्चों आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: हाँ भैया,
2: देखा ग्रामीण बच्चों में खेल और रचनात्मकता का विकास, नीता श्रीवास्तव बहनी कितना फरियाय के हर बात बता दी।
1: बिल्कुल,
2: खेल कूद के कितनी महत्ता
1: बाटे। साथ ही साथ एक चीज और बताई ना कि भाई खेल कूद तो जरूरी बाटे, ओकरे साथ साथ संतुलित आहार, व्यायाम और खेल कूद और पढ़ाई में सामंजस्य, ये भी चीज जरूरी बाटे। ये चीज अगर आप साथ लेके चुन्नू मुन्ने भैया आगे चली तो भाई जरूर सफल हुई। दूसरा चीज ये बात बाटे कि जोन मौसम चलत बा भाई, एमन विशेष ध्यान आप रखा है खेल कूद के में भी और अपने दैनिक दिनचर्या में भी। भाई बारिश होत बाटे तो कोई जोन विद्युत पोल बाटे ओकरे नजदीक न जाए, अपना वो आस पास अगर खेलत है तो भाई सुरक्षा के साथ अपन खेल कूद अपन पढ़ाई हर चीज करें।
2: बिल्कुल, अब देखा धीरे धीरे अब चुन्नू मुन्नू से विद्यालय के आ गया। अच्छा तो लड़कियों
1: जय हिंद।
3: अभी ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल गोपाल। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी ही देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी प्रयागराज से युवाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव और मेरे साथ,
1: और मैं हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव, और दोनों हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में, यानी कि युवाणी में, जहाँ हर दिन हम कुछ अलग लेके आते हैं, कुछ खास लाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमें जानना समझना बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और तुम्हें नहीं लगता पूजा कि जैसा देश हमारा भारत, जब हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो इसके साथ हम कई चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने देश की कला, हर हमारे स्टेट की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसको प्रेजेंट करते हैं, और बेहद खूबसूरती से कैसे हमारे सारे स्टेट्स का जो कल्चर है वो बेहतरीन तरीके से हर कलाकार, वहाँ के जो लोग, चाहे गायक हों चाहे कोई और भी कलाकार हो, उसको बहुत सुंदर तरीके से पिरोते हैं, और तब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम कहते हैं कि हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ में लोगों को उसकी हेरिटेज का पता होता है, उसके ट्रेडिशंस का, उसके कल्चर का पता होता
0: है। यकीनन, भारत में एक भारत

0: भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, इतने सारे रंग हैं, सांस्कृतिक हैं, हमारे खान पान, हमारे पहनावे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारी इंडिया को रिच बनाता है।
1: और दोस्तों, आज ऐसी ही भारत की पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे जो अवार्ड से सम्मानित पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका निधन भारतीय लोक कला जगत के लिए अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति है।
0: एक साधारण आदिवासी परिवार से निकलकर रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने जिस तरह महाभारत की गाथा को अपनी अनोखी शैली और कड़कती आवाज में जीवंत किया, वो युगों युगों तक कलाकारों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा।
1: उन्होंने अपनी विलक्षण गायन शैली और अद्वितीय प्रस्तुति से पंडवानी लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।
0: सुष्मिता, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पांडवानी गायन की दो शैलियां होती हैं, जिसमें एक है वेदमती यानी बैठकर गाना और दूसरा है कपालिक यानी खड़े होकर अभिनय के साथ गाना। तीजन बाई पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर कपालिक शैली को अपनाया। वे केवल गाती नहीं थी बल्कि मंच पर घूम घूम कर पूरी ऊर्जा के साथ महाभारत की कहानी का सजीव मंचन करती थी। उनके हाथ में रहने वाला तंबूरा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि गाते और अभिनय के साथ उनका तंबूरा कहानी के हिसाब से रूप बदल लेता था। जैसे आप ये समझिए कि जब भीम की बात होती तो वो तंबूरों को कहीं ना कहीं गदा की तरह घुमाती, और जब अर्जुन का प्रसंग आता तो वो तंबूरा गांडिक धनुष बन जाता, और अगर कृष्ण जी की बात होती तो वो बांसुरी की तरह उसे अभिनय करती। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शकों को जोड़ कर रखती थी इस कला की ओर।
1: वाकई दोस्तों, उनका लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में जो अमूल योगदान है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी कला साधना आने वाली पीढ़ियों को भी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का मार्ग दिखाती रहेगी। और आज हम हमारी पूरी आकाशवाणी प्रयागराज के परिवार से की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूजा की, हम हर बार अपने कार्यक्रम में ऐसे कुछ टॉपिक्स लाते हैं ना, जिससे जिनके बारे में डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनको उस बारे में अवगत कराना कितना ज़रूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो आज शुरू करते हैं अपने चर्चा के विषय पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी और फ्लैगशिप योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार परख कौशल यानी स्किल्स सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई साल 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई थी। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के सहयोग से चलाई जा रही है।
0: और बता दें दोस्तों कि अभी करेंटली यानी इस समय इस स्कीम का चौथा फेज यानी कि PMKVY 4.0 लागू हो चुका है, और जो इससे भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक और टेक्निक ड्रिवन, जैसे कि अभी हम लगातार प्रगति कर रहे हैं ना अपने साइंस, हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसको इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाना इसका मेन एम है। और इंडिया पूजा, जैसे कि हम जानते हैं कि एक यूथ पॉपुलेशन ओरिएंटेड देश है, तो ऐसी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है जो यूथ ओरिएंटेड हो। तो ऐसे में यूथ की स्कीम से जोड़ना उसको बहुत एक बड़ा बदलाव जो हम अपनी पॉपुलेशन में हैं वो ला सकते हैं इसके थ्रू। और इसका जो मेन फोकस

0: है वो प्रैक्टिकल स्किल सिखाने पर ही है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना, स्कूल कॉलेज के कुछ हमारे स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप आउट्स हैं उनको भी हेल्प करना और उनको भी जॉब ओरिएंटेड बनाना।
1: बिल्कुल, अगर इसके कुछ की कॉम्पोनेंट्स हम देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, यानी जैसे कि तुमने बताया कि जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देकर स्किल ओरिएंटेड बनाना। और अभी भी हम देख सकते हैं कि देश में ऐसे कई लोग हैं जो पहले से ही किसी ना किसी काम में, वो चाहे बढ़ाई हो, दर्जी हो, मिस्त्री हो, कहीं ना कहीं उसमें बहुत माहिर है, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। तो RPL के तहत उनके हुनर के हिसाब से सर्टिफिकेट देना ताकि उनकी जो आर्ट है ना उनकी वैल्यू बढ़ सके। और स्पेशल प्रोजेक्ट भी ऑफ कोर्स, जैसे कि पिछड़े इलाके के लोगों के लिए ट्रेनिंग देना ताकि वो भी जागरूक हो सके और कहते ना हमारे साथ भी उन्हें जोड़कर आगे बढ़ा चला जाए।
0: बिल्कुल, और जैसे कि कुछ ऐसी है ना AI रिलेटेड, क्योंकि AI का हमने देखा है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे उनका इंटेंसिव यूज़ हो रहा है, तो AI रिलेटेड एजुकेशन, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दें और उनके स्किल पे हम काम करें तो वाकई हम कई एक ऐसा बड़ा जो हमारा यूथ है उसको काफ़ी कुछ हम सिखा सकते हैं, साथ ही साथ हम उनको सशक्त बना सकते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो अपनी जो कहते हैं ना लाइफ स्किल सीख सकते हैं जिससे वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। और सोलर एनर्जी में तो ये सब ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं दोस्तों जिनका भी हमने नाम लिया पूजा, कि इसमें अगर हम अच्छे से उनको स्किल ट्रेनिंग दें तो वाकई हम काफ़ी अच्छा बदलाव ला सकते हैं।
1: और ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है सुष्मिता, तो अगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो प्राइवेट किसी सेक्टर या इंस्टीट्यूशन से वो सीख नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स ला रही हैं ताकि उन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हमारा देश भारत है उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो काफ़ी हाई है, ऐसे में यूथ की स्किल को बढ़ावा देना देश की तरक्की करने के इक्विवेलेंट है, कि जब हम अपने देश का जो युवा है उसको सही डायरेक्शन दें, उसको सही स्किल सिखाएं, उसको सही नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें, तो वाकई फिर देश के विकास में ऐसा कोई स्टोन हम कहेंगे कि कहते हैं ना लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो यानी कि हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने देश के जो युवा हैं उनको अच्छी स्किल सिखा सकें। और कई बार हमने देखा भी है पूजा कि चाहे हम शहरों की बात करें या गाँव की भी बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पीढ़ियों से कोई कला कुछ ऐसी चलती आ रही है और उसको सजोना, और कई बार उन्हें लगता है कि अगर वो स्किल उन तक पहुंच जाए और आगे भी हो तो वो जो स्किल है उन्होंने सीखी है उससे कई चीज़ें वो ऐसी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो हर जगह आर्ट हमें मिलती है, चाहे वो मूंज की हम बात कर लें या ऐसी बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो लोगों ने इंटरनेशनल लेवल तक भी उसको पहचान मिल गई है। तो ऐसी जब हमारी डिमांड्स हैं तो वाकई जब हम एक हमारा जो युवा है वो अगर स्किल्ड होगा तो अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी आनी जेनरेशंस के लिए काफ़ी अच्छा कर सकेगा।
1: एक लेखक रहे हैं यशपाल, तो उन्होंने एक बात कही थी कि विद्या चाहे जितनी भी उत्तम चीज़ हो लेकिन पैसे के बिना अपर्याप्त रहती है। तो जैसे कि तुमने कहा कि जनरेशन बाय जनरेशन वो चीज़ें चली आ रही हैं, उनके पास स्किल्स है लेकिन अगर उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा है कि क्यों ना उसे जॉब ओरिएंटेड भी बनाया जाए ताकि वो अपना घर भी चला सके।
0: और पूजा, कई जैसे हम कुछ यूथ हैं जिनको कई बार ऐसी स्कीम्स के बारे में नहीं पता चल पाता या पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती, उसके लिए भी हम ये कहेंगे काफ़ी अब रिमोट एरियाज तक हम पहुंच चुके हैं इंटरनेट, तो उसका सही इस्तेमाल आप करें और ऐसी जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लें और देखें कि आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को ऐसी स्कीम्स के थ्रू बेहतर बना सकते हैं।
1: इसी के साथ सुष्मिता, एक डेटा है जो मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को जानना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि नीति आयोग और अन्य स्वतंत्र संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग यानी मोटे मोटे तौर पर 70% से अधिक युवाओं को इस ट्रेनिंग के बाद सीधे रोजगार मिला है और उनकी तकनीकी क्षमता में सुधार हुआ है। तो RPL के तहत सर्टिफिकेट पाने वाले 50% से अधिक कामगारों की आय में वृद्धि भी दर्ज हुई है। तो किसी भी स्कीम्स की इतना बड़ा सक्सेस मिलना ये दिखाता है कि यूथ इससे जुड़ रहे हैं।

0: तो दोस्तों, इस गीत के बाद पूजा अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि प्रेरणा पुंज। दोस्तों, हमारे समाज और हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने कार्यों, अपने विचारों और सिद्धांतों से दूसरों के जीवन को आलोकित करते हैं। ऐसे ही मार्गदर्शक और अनुकरणीय व्यक्तित्व को हम प्रेरणा पुंज कह जाते हैं। आज अपने सेगमेंट में हम बात करेंगे श्री पी नारायण जी की। भारतीय समाज और प्रशासनिक इतिहास में ऐसे कई व्यक्तित्व हुए जिन्होंने बिना किसी बड़े शोर शराबे के ज़मीन पर रहकर समाज की सेवा की। श्री पी नारायण जी एक ऐसा ही नाम है जो अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं।
1: उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों ने उनके भीतर सहानुभूति और समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करने की भावना को मजबूत किया। अपने पेशेवर जीवन में, चाहे वो न्यायपालिका हो या प्रशासन हो या समाज सेवा हो, श्री पी नारायण ने हमेशा नियमों के पालन और मानवीय दृष्टिकोण के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई।
0: और दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना ऐसे व्यक्तित्व की, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो नीतियां हैं वो केवल कागज़ों तक सीमित ना रहकर, उन्हें हमेशा सुनिश्चित किया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वे गांधीवादी विचारों और सादा जीवन उच्च

विचार के सिद्धांत के बेहद करीब रहे। श्री पी नारायण जैसे व्यक्तित्व समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। सफलता, सम्मान और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना उन्होंने दोस्त सिखाया है। और पूजा, जब हम ऐसे किसी पर्सनालिटी की हर अपने जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो बात करते हैं, तो यकीनन वो एक इंस्पिरेशन की तरह होते हैं, चाहे उनकी फील्ड ऑफ वर्क जो भी हो, उनकी जो जर्नी रहती है, उनका जो जीवन में उन्होंने जो कार्य किए होते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें हर बार ये समझ आता है कि आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप अपने काम में ऑनेस्टी रखते हैं और लगन से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने रास्ते खुलते जाते हैं।

0: सफाई करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: शश्विता, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि बचपन में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या था?
7: मतलब पढ़ाई में क्या था?
6: पढ़ाई से रिलेटेड।
7: मुझे लगता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पसंद आता था। उसमें भी अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं, मैं पर्सनली अपने लिए बताऊं तो मुझे टेबल याद करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था।
6: मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा मार भी खाई हूँ, मैं ईमानदारी से बता दूँ, मुझे सेवन्थ की टेबल याद ही नहीं होती थी। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं बताया कि अगर हम किसी चीज़ को क्रिएटिव वे में अगर याद कर ले तो वो याद हो जाती है। हाल ही में, मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने रिसेंटली देखा कि एक, वो स्कूल में ही पढ़ाती हैं, तो एक छोटी बच्ची को सिखा रही थी कि क घ घ कैसे लिखते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी कि जैसे मान लो एक खड़ी पाई आपको करना है, फिर आपको जीरो बना देना है, फिर इधर से ऐसे खींचना, बन गया का, बोलो क्या बना, का। तो अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत क्रिएटिव वे में सिखा देना सिंबल के तौर पे, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं।
7: और कई बार पूजा, मुझे लगता है कि चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती समझना या याद करना, जितना हम उनको तरीकों में डिफ़िकल्ट कर देते हैं। यानी कि उस नॉलेज को अटेन करने का अगर हम जो तरीका है वो अपना थोड़ा सा अलग बना लें, थोड़ा सा एक्साइटिंग बना लें, तो शायद हम बहुत अच्छे से चीज़ों को और बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हम विजुअली देखते हैं ना, वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद रहती है। या फिर आपने, क्योंकि कई बार होता है कि आपने कुछ पढ़ा लेकिन उसी चीज़ की अगर आपको एक मूवी फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में वो चीज़ आपको दिखा दी जाए, तो शायद आपको लगता है कि हाँ, अब आपने चीज़ पूरी तरीके से अपने अंदर एक तरीके से आत्मसार कर लिया वो चीज़, और अब एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हो जाएगी उसकी। तो मुझे ऐसा ही लगा पूजा, कि कई बार होता है कि हमें बस तरीका सही चाहिए और चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है जितना हम डर के या उसको सोच के कि ये तो बहुत कुछ बड़ी बात है जो हम पढ़ने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो इट्स ऑल इन दी हेड, और शायद हम अपना तरीका बदल लें और उसको अच्छा कोई अप्रोच बना लें, तो वाकई हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी।
6: बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने भी अडॉप्ट की है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि मेरे एक प्रिंसिपल ने मुझे बताई थी, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम हर दिन एक शब्द की भी मीनिंग याद कर लें तो महीने के हिसाब से 30 हमारे तैयार हो गए। तो ये मैथ्स बड़ी क्रिएटिव थी। एंड सेकेंड थिंग, मुझे प्रोनंसिएशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे मुझे उर्दू का बड़ा शौक रहा है, तो मुझे मेरे एक टीचर ने बताया कि किसी चीज़ को पहले समझो, देखो, जैसे अगर तुम्हें ख बोलना है तो ऐसे करो कि तुम खंगार रही हो, तो वो बोलना आप सीख सकते हैं। तो हर चीज़ का तरीका होता है, जैसे कि सुषमता ने भी बताया, तो हर चीज़ को अगर क्रिएटिव वे में हम सीखें तो सीख सकते हैं। यही वजह है कि हम हर दिन सवाल जवाब लाते हैं।
7: क्योंकि पूजा, ऐसा होता है ना कि जब हमारे दोस्त ना जब हमें सुन रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मान लो टहल रहे हों या अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, और जब चीज़ हम उसका ऑडियो सुनते हैं किसी चीज़ का, तो हमें लगता है बातचीत के बीच में एक धीरे से हमने एक प्रश्न कर दिया, और तब शायद जब हमने उनको किताबों के एक बोध समझ के नहीं पढ़ा लेकिन एज अ कॉन्वर्सेशन उसको अडॉप्ट किया, तो हमें लगता है कि हमारी मेमोरी उस समय बहुत, हम अंडर प्रेशर भी नहीं थे और बहुत आसानी से वो चीज़ हमें याद

0: हो गई और हमारी मेमोरी में भी रही।
1: तो ठीक है, तो इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा कल का सवाल था, चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश।
0: और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, सीयू की यानी कि द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड नाम की जो बुक है ये आखिर किसने लिखी है। तो आप जो अपने जवाब हैं वो हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 8004926250 पर, या फिर हमारी ईमेल आईडी पर जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर। तो हमें रहेगा आपके जवाबों का इंतज़ार और इसी के साथ एक प्यारा सा गीत।

0: वैसे राहत तो काफी है, मौसम सुहाना हो चुका है सुष्मिता, तो तुम क्या कहना चाहोगी इस पे?
1: मैं ये कहना चाहूंगी पूजा कि जब मौसम चेंज होता है ना, तो हम तो ऑब्वियसली हम बहुत राहत की सांस मिलती है, और लेकिन कई बार ये जो मौसम जब चेंज होता है ना, तो कई बार खांसी जुकाम फीवर आसपास हमें ऑलरेडी अपने दोस्तों में देखा है, किसी ना किसी को ना ये जुकाम ने पकड़ ही लिया है। तो दोस्तों कई बार जब ऐसे मौसम चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान है वो इस तरफ जाना चाहिए कि कैसे हम अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब हम पूजा अपना ख्याल रखते हैं ना, तभी हम अपना काम कर सकते हैं सारा अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, और अपनों का भी हम तभी ख्याल रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, बारिश का मौसम जितना प्यारा और जितना सुहाना लगता है, उतनी ही अपने साथ सेहत और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी लाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं, जैसे कि फूड एंड वाटर सेफ्टी, तो साफ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जब बारिश होती है तो गंदे पानी भी घरों में आने लगते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने हाइजीन का ख्याल रखें, बाहर के खाने से बचें। मुझे लगता है ये तो ऐसा पॉइंट है जो छूटना ही नहीं चाहिए। अभी पकौड़ी कहीं भी मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि खाना ही खाना है चाय के साथ, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि बाहर का जितना हो सके इस वक्त अवॉइड करें, और घर में अगर हम ताज़ा खाना बना सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है।
1: और साथ ही साथ पूजा ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसे वेदर्स होते हैं जब हमें लगता है कि बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ इजी हो जाती है जिस मौसम में, तो उस तप में हमें मॉइस्चर की वजह से, तो ऐसे मौसम में ख़ास तौर से जो हमारी हाइजीन है ना, उसको लेकर जैसे तुमने मेंशन भी किया, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दिखानी चाहिए अपने लिए भी और आसपास हमारे लोगों के लिए भी। और साथ ही साथ पूजा, जब मौसम बिगड़ता है तो हमें पता होता है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं, और हमें उसकी अलर्ट्स मिल जाते हैं, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हमें अलर्ट्स मिल रहे हैं कि किसी एरिया में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए और मौसम चेंज है, तो उनको आप थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि ऐसे केयरलेस स्टेप्स हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिर्फ हमारी लाइफ के लिए नहीं भी है, हमारे जो फैमिली है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल।
0: और सुष्मिता, हमने देखा है कि बारिश में दीवारों में नमी या सीलन आ जाती है, जिससे करंट लगने का डर रहता है, तो स्विच बोर्ड वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि हम अक्सर घर जाने की जल्दी में हमेशा रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम ज़रूर अपना ख्याल रखिए अपना।

0: तो दोस्तों हमारा जो रिश्ता है ये यूं ही बरकरार रहेगा आपसे और इसी के साथ मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को
1: और मुझे यानी पूजा यादव को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।

विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक

शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है।

पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघड़, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर और अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, 7:31 से हम आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाली ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 7:31 से 8:45 तक और फिर समाचारों के बाद 9:30 से खेल की समाप्ति तक। छह बजकर 30 मिनट पर प्रसारित होने वाले पंचायत घर कार्यक्रम में आज हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं पंचमलाल और दिवाकर पटेल से मेरी खेती मेरी बात के तहत किसान चर्चा। इसके अलावा तेरसलाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण इस तरह से हैं।

सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर दीप्ति चतुर्वेदी और शाम 7:45 पर शाम्भव पांडे के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे लेकर हम हाजिर होंगे और फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाएं आप सुनती हैं प्रातः 7:10 पर।

कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु में 6:30 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार प्रसारित किए जाएंगे। किसान भाइयों के लिए रोज की तरह कृषि जगत कार्यक्रम सुबह 6:35 पर प्रसारित होगा। कल के इस कार्यक्रम में ललित कुमार वर्मा से की गई बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। बातचीत का विषय होगा वर्षा ऋतु में सब्जियों की देखभाल। छह बजकर 45 मिनट पर प्रतिदिन हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता होगी बच्चों की आंखों में मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव।

कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर विदुषी सुलोचना बृहस्पति का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित अनुपम राय का तबला वादन और रात 10:30 पर गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन हम आपको सुनवाएंगे। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा आपकी पसंद। सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे एथलीट बजरंग पांडे से अभय कांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग प्रोग्राम वॉइस ऑफ प्रयागराज के तहत। सुबह 10:30 पर राधेश्याम सिंह और साथी के गायन लोकगीत सुनवाए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। शाम 5:00 प्रसारित होगा नन्ही दुनिया कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को जानकारी दी जाएगी बैक्टीरिया के बारे में। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम और शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई छंगूलाल लहरी के गाए लोकगीत के अलावा किसान चर्चा सुनेंगे, जिसके तहत सुभाष चंद्र से इसे एक बार फिर सुन लीजिए। कल शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई छंगूलाल लहरी के गाए लोकगीत सुनेंगे। इसके अलावा किसान चर्चा, साथ ही सुभाष चंद्र से लोकभाषा कविता पाठ। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में वैभव मैनी की वार्ता होगी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में चुनौतियां। रात 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कानून और हम कार्यक्रम, जिसमें अधिवक्ता मनीष पाठक की वार्ता प्रसारित होगी महिला सुरक्षा संबंधी कानून। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं संबित स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना।

श्रोताओं, देशभक्ति रचनाएं हमारे भीतर देश के प्रति भक्ति के भावों का बीजारोपण करती हैं। आप सुन रहे थे संवित स्वरों में ये देशभक्ति पूर्ण रचना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे पास इस वक्त खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना, अहमद रजा पुत्र मोहम्मद असलम, रसूलाबाद तिलियरगंज शिवकुटी प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनके संबंधी निकहत परवीन, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, ये दिनांक 21 मई 2026 से लापता हो गई हैं। निकहत परवीन का चेहरा लंबा है और वेश सामान्य है, साथ ही वे अपने साथ मोबाइल रखे हुए हैं। इनके मोहल्ले और स्टेशन, इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को निकहत परवीन के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध हो, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, 139F/11 रसूलाबाद तिलियरगंज शिवकुटी प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 6392-73870 यानी 6392-73870। एक अन्य सूचना, कमलेश कुमार पुत्र लालचंद्र, निवासी उमरपुर नीवा थाना धूमनगंज प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी वैशाली, दिनांक 14 मई 2026 से नीवा से लापता हो गई हैं। वैशाली की उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है और ये काले रंग की जीन्स और पीला कुर्ता पहने हुए हैं। वैशाली के विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, कमलेश कुमार पुत्र लालचंद्र, निवासी उमरपुर नीवा थाना धूमनगंज प्रयागराज। एक अन्य सूचना, दयाराम पुत्र जगदीश प्रसाद, जलालपुर थाना एयरपोर्ट प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी पत्नी भावना देवी, दिनांक 14 मई 2000

26 से ग्राम जलालपुर से लापता हो गई हैं। इनकी उम्र 37 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है, रंग गेहुआ है। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, दयाराम सुपुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद, ग्राम जलालपुर घोषी, थाना एयरपोर्ट, प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कोई भी व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का। अब से थोड़ी ही देर में
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्य 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव सप्तदिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायुः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियम सफलतया प्रभावशील अभवत्। मंत्रिणा अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन अस्य अभियानस्य अंतर्गत

0: श्वः आरभमाणः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक सम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य 6 दिनांकतः जुलाई मासस्य 8 दिनांकं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति, तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिकसहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य 20-20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले संपूर्ण स्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्ति स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं, जो कि प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप है। और अब वक्त हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए उनके कार्यक्रम पंचायत घर का।

0: पंचो राम राम।
1: हम कहे सुमरन भैया।
0: हाँ भैया।
1: भैया देखा इस समय तो भाई धान के रोपाई की बहार बाट
0: बहार बाटी भैया, और जो दूधना से जोन घेरे बाटे ना,
1: हाँ।
0: घेराई देख के लगत बाटे कि भाई धान का फसल जोन बा ना भाई, ये बार अच्छी होए, अगर अच्छी बारिश हो जाए तो भाई हमार जोन बाटे रोपाई, हम तो भैया 3-4 दिन में शुरू कर दे।
1: बिल्कुल भैया, हर भैया शुरू कर दे हैं अगर समय से नर्सरी डाले बाटे, तो निश्चित तौर पर भाई यह समय चलत ब सही समय चलत बा, जबकि रोपाई कह दें हम समझते हैं कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी बारिश बीच बीच में होत रहे, कुछ अपने ट्यूबवेल संभाल लिया जाए,
0: हाँ।
1: तो भाई देखा इतनी पैदावार हो जाए कि संतोषजनक रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और बात यही बाटे ना कि भाई धान का फसल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज बाटे पानी। अब पानी आपके चाहे भाई बदरी से मिले और चाहे वो भाई ट्यूबवेल से मिले,
1: हाँ,
0: वो तो
1: हाँ।
0: भाई आपके चाहबे करे, सही तरीके से उमन अगर सिंचाई ना हो तो भाई पैदावार भी अच्छी ना हो।
1: सुमरन हो देखा कतों को तो भैया नहर की अच्छी सुविधा बाटे, नहर में पानी भैया आई के बाटे, तो लोगन के थोड़ा सा सिंचाई पानी खेत में कई के धान के रोपाई करे में काफ़ी आसानी होगी। कतों कतों भैया ज़्यादा बारिश भी होगी बाटे, तो वहाँ के लोगन के भी काफ़ी सुविधा मिली गई, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा बाटे सुमरन जहाँ कि बारिश थोड़ा कम हो पाए बे, तो ऐसा लोगन के भाई अपने ट्यूबवेल के द्वारा ही पानी कह के पलेवा दे के तब रोपाई के काम करे के चलत करत पा रही, तो निश्चित तौर पर भाई देखा अब संभाले रही ना, तो आगे चल के दौ राजा बरसबे करी और निश्चित तौर पर भाई धान के फसल अच्छी होए, यही उम्मीद के साथ भाई रोपाई करेगी।
0: धान के फसल के अलावा भैया जोन भैया अरे सब्जी की खेती कर रहा है,
1: हाँ,
0: या
1: हाँ,
0: अन्य जोन भैया फसल लगाए ना, उनमें भी देखा पानी की जरूरत होता। यही बारे जब मानसून से पहले ही बात होता ना कि भाई जोन कुआं बावड़ी जोन चीज बाटेन भाई, ओका साफ सफाई कई लिन

0: जाए, अबहू बहुत देर नाई भई बाटे।
1: हाँ
0: अबहू अगर ओकर साफ सफाई कैले ही, ओके साफ सुथरा कैले ही, तो जोन बारिश का पानी बा वहाँ एकत्रित होए, उ पानी के आप खेती किसानी में या अन्य चीज में भाई उपयोग में लाई सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक चीज़ और भैया
0: हाँ
1: कि भाई देखा अपने ही देश में प्रदेश में ढेर क्षेत्र ऐसन बाटन जहाँ की थोड़ा बारिश के कमी होत है, या फिर ये कहला कि लोग ऐसन खेत बाटे कि वो धान के रोपाई ना कर पौतेन, वो जमन है ज्वार बै बाजरा बै मक्का बै यही कुल के खेती करत हैं,
0: करते हैं भैया।
1: तो निश्चित तौर पे भाई देखा वहाँ के लोग भी सचेत हो जाएं, अगर हल्की फुल्की भी बारिश होगी बाटे तो ये सबके बुआई अगर कर दें ना तो निश्चित तौर पे भाई जमन है आगे चल के उनकर भी फसल अच्छी हो।
0: देखा ये बहुत गूढ़ बात आप कहें कि आपके ये समझे के पड़ी कि भाई आप कौने क्षेत्र में रह रहा हैं, कैसा ना आपके क्षेत्र में बारिश होता है, कैसा ना आपके सिंचाई की व्यवस्था बाटे, कौन और सुख सुख सुविधा आपके बाटे, जैसे आप खेती किसानी कर सकते हैं ना। जैसे आप बताएं कि भाई अगर धान की खेती में भाई ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता, आपके पास वो सुविधा नहीं बाटे और आप धान लगाए दिए हैं, ना निश्चित तौर पर एक तो पानी की बर्बादी हो, उतना पानी होके मिल ना पाए, उतना पैदावार ना हो, और जोन आपके भैया और जोन फसल आप उगाई सकते हैं उसे आप भैया वंचित रह जाएंगे। तो जोन चंद्र भैया ये बात कहें कि भाई आप समझें ये चीज कि आपके खेत में कौन फसल उपयुक्त तो बाटे, वही हिसाब से भाई खेती किसानी करें। अगर पानी की सुविधा नहीं बाटे तो भाई जोन भैया बताएं कि भाई मक्का बा ज्वार बा बाजरा बा अगर खेती करें तो निश्चित तौर पर भाई कुछ ना कुछ फायदा मिले।
1: बिल्कुल भैया, तो बातन पे ध्यान देख बा। एक चीज़ और कि भाई देखा कहा जाता ना कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो भाई आदमी खेती बाड़ी के काम या कोनो भी काम समय पे कर पाए।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो भाई देखा यह कुल देखते भाई गांव के लोगन के लिए या भाई पूरे देश में जो आयुष्मान कार्ड बना कि भाई एकर सुविधा बाटे, लोग एकर भी लाभ ले सकते हैं, अगर भाई कोनो ऐसन बीमारी हो जात बे जोने के लिए उनके पास अगर पैसा ना हो पात बे,
0: गंभीर बीमारी हो जाए।
1: हाँ तो भाई जोने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो किसान भाई या कोनो भैया लोग समर्थ ना हो पौते, तो ऐसा स्थिति में आयुष्मान कार्ड भैया बहुत ही कारगर होता है और इसमें उनका पैसा भी नहीं ला दे पड़े और भाई पूरी सुविधा भी मिल जाए।
0: अच्छा चंद्र भैया बहुत सही बात बताएं। जो नी सुविधा बाटे, हम देखी थे कि तमाम ऐसा परिवार बाटन के कौन ऐसा गंभीर बीमारी आई जाता, कौन ऐसा स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो आई जाता, उसे भैया आर्थिक रूप से इतना तोड़ देता है
1: बिल्कुल
0: भाई परिवारन के, कि आपका जो सामान्य रहन सहन बाटे, जो सामान्य जीवन बा भाई, वह प्रभावित हो, आपका खेती किसानी प्रभावित होता, आपके एक तरह से पूरा भविष्य प्रभावित होता।
1: बिल्कुल
0: उसे
1: बिल्कुल
0: केवल वो बीमारी नहीं बाटे, वो पूरे आपके परिवार के, पूरे आपके परिवार के आर्थिक तंत्र के तोड़ देता है। तो जोन ई योजना बाटे भाई, कतौ न कतौ सरकारों ये समझत है कि भाई अगर किसान भाइयन के या जोन हमार भैया हरे हैं जोन एकर पात्र बाटेन भाई, उनका कई तरीके से आर्थिक लाभ अगर पहुँचावा जा सके, ऐसे विपदा के टाइम पर, विपदा के समय पर अगर उनका मदद कुछ की जा सके, तो भाई निश्चित तौर पर भाई जो इन आयुष्मान कार्ड योजना बाटे भाई, ये मन आप रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं, अगर एकर पात्र बाटे ना आप,
1: हाँ
0: तो जोन
1: हाँ
0: पोर्टल बाटे ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करवावें, जोन भैया बताएं कि जोन स्वास्थ्य संबंधी समस्या होते हैं भाई, उमन जोन आपका खर्च होता वो खर्च
1: हाँ
0: भैया आपका न लगे, आपका फ्री में एक तरह से इलाज होए।
1: बिल्कुल भैया, तो देखा योजना तो बहुत अच्छी अच्छी होती लेकिन जरूरत है बात को कि लोग आवें आगे और एकल लाभ लें।
0: लाभ मिले ये पूरे परिवार के लिए बना था, ये कैशलेस होता, एमन कोनो प्रकार का आपके पैसा नहीं दे के पड़े, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना बाटे, जोन जोन आयुष्मान कार्ड से आपका जोन जोन आयुष्मान कार्ड से हॉस्पिटल जुड़ा है, वहाँ जाए के आप बिना पैसा के जोन गंभीर बीमारी होतीन, जैसे आपका हृदय रोग से संबंधित, किडनी से संबंधित,
1: हाँ
0: जोन कैंसर से संबंधित, ये तरह के जोन गंभीर बीमारी बाटे जेमन भाई पैसा लग जाता है
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल।
0: उसे आपको पैसा ना लगे और आपका समुचित और सही इलाज हो ही पाए।
1: तो भाई देखा ये पंचन के जो ना है याद एक तरह से दिलावा के कार्ड के लाभ जरूर लें।
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: चीज़ अभी और की देखा
0: हाँ
1: आज बताई दी अपने कार्यक्रम में कहा कुछ बाटे, तो भाई देखा किसान भाई से कुछ बातचीत की है बग्गा बाटे तो कहा कुछ खेती बाड़ी में उनका अनुभव वो बताए बाटे तो का सुनावा जाए। सोचते ही कि 13 साल संघातिक गाय के गौने पहले हो जाए
0: एकदम
1: फिर
0: भैया,
1: देखा जाए भैया।
0: एकदम भैया सुनवाई दे।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया
1: देखा
0: देखते
1: तेरह साल और गाँव संघातिन गावा भाई विकास की तो हो ही गए।
0: हैं।
1: अब भाई एक चीज़ और कहे कि भाई देखा जौन बरसात का मौसम बा ना,
0: हाँ भैया
1: ए मौसम में अगर वृक्षारोपण के काम किया जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो निश्चित तौर पे भाई देखा वो ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होते कि भाई पौध के पकड़े के पूरी संभावना होती।
0: एकदम भैया
1: कहे से भाई देखा अन्य मौसम में भाई रोज़ पानी इतना ना दे पाते हैं, लोग
0: बिल्कुल
1: भूल जाते हैं या और तरह तरह की बात आई। तब बरसात की मौसम जो बा भाई पौधन के लगावे के रोपाई के सबसे उचित बात है, तो ई काम के बढ़ चढ़ के करे के जरूरत बा।
0: एकदम बिल्कुल चंद्र भैया कही गए नी बात। और जोन ही हफ्ता चलत बाटे, जोन ही सप्ताह चलत बाटे भाई, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जोन वन महोत्सव सप्ताह चलत बाटे,
1: हाँ हाँ
0: वो यही
1: हाँ
0: वजह से चलत बाटे कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के बढ़ावा दिया जाए। आपन जोन पारिस्थितिकी तंत्र बाटे या अपन जोन पर्यावरण बाटे भाई, एकर बचावे के सबसे अच्छा तरीका यही बाटे कि जोन पेड़ बाटेन, पहली चीज़ तो यही बा कि पेड़ के कम से कम कटाई से रोका जाए, कम से
1: हाँ
0: कम पेड़ कटाई। दूसर चीज़ ये बा कि जितना पेड़ कट रहा है उसे 10 गुना 15 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा पेड़ वृक्षारोपण लगावा जाए। और ये चीज़ हम ये वजह से कहा था ये कि जो नवा पेड़ लगत हैं सबसे ज़्यादा समस्याओं में ये होती कि भाई ओका वृक्ष बनाई में भाई 10 साल 15 साल 20 साल का समय लगता है
1: बिल्कुल लग
0: भाई, उस
1: जाएगा।
0: समय बचावे बिना और जो नहीं पारिस्थितिकी तंत्र बाटे एक अच्छा बनावे बिना सबसे बढ़िया तरीका तो यही बाटे कि वृक्ष के ना काटा जाए। और अगर के तो कारण बस ओका अगर वृक्ष का कटाना हो तो बाटे तो वो भाई उसके भाई अलग तरीके से भाई उमन वृक्षारोपण भी हो उही गति से उस बल्कि उसकी दुगनी गति से वृक्षारोपण किया जाए।
1: बिल्कुल सुमिरन सही कहा बात है भैया। और खाली वृक्षारोपण के काम न कह के भैया जोन कहिया था ना कि भाई लगाए बड़कई ना बाटे, भाई देखा ओकर सुरक्षा करब ओकर समय समय पर ही देखभाल करब जरूरी बा कि कौनो तरह के जानवर जोन भाई छोटा जानवर बाटे ओकर नुकसान न पहुँचावें, एकर भी सुरक्षा व्यवस्था के भी ध्यान दे के जरूरत बाटे। और अपने देश में प्रदेश में ढेर सारी ऐसी जमीन बाटी भैया बे पड़ी जौन की उसरीली बाटी या ऊंच नीच बाटे वहाँ खेती ना हो पौते, तो ऐसे भैया पड़ा बाटे तो वहाँ वृक्षारोपण का अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे ऐसा पेड़ जब तैयार होए तो अपने वातावरण के साफ सुथरा करे में बहुत बड़ी भूमिका
0: एकदम
1: होए।
0: एकदम चंद्र भैया। और एक चीज़ हम समझी था कि वृक्षारोपण तो देखा सही बात बाटे, मगर जो नहीं वन कटत बाटेन भाई, आप वृक्ष लगाई सकत हैं पर आप वन के नहीं लगाई सकते हैं।
1: नहीं भैया
0: वन एक
1: नहीं।
0: ऐसा चीज बाटे जगह अपने आप उगत है, अपने आप एक तरीके से आवत है परिस्थितिकी में। तो भैया वन इतना जरूरी बाटे जो वन्य जीव बाटेन, पशु पक्षी बाटेन, सबका घर बाटे, इतना बड़ा कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, इतना बड़ा आपकी जो ऑक्सीजन बाटे ओकर देख बिना जो पर्यावरण में ओकर काम करता है। तो
1: बिल्कुल
0: एक तरीके से भाई ओकर भी बचाव बहुत जरूरी बाटे भाई, ओकर भी संरक्षण बहुत जरूरी बाटे। तो कोनो भी पारिस्थितिकी तंत्र आपके अगर आस पास बाटे तो भाई आपकी जिम्मेदारी बा कि भाई ओकर सुरक्षा ओकर रक्षा आपके द्वारा की जाए।
1: भाई देखा ये एक आदमी काम ना आए तो भाई सामूहिक काम हर आदमी के चेतक परे, हर आदमी के भाई ध्यान देख परे, हर आदमी के पे पहल करे परे, तब जाए के भाई इस तरह के काम में सफलता मिल
0: और
1: पावत है।
0: भैया सफलता तभी मिले जब भैया जागरूकता बढ़े, और
1: बिल्कुल
0: जागरूकता कैसे बढ़े जो नहीं कार्यक्रम तमाम तरह के चलावा जाते हैं, तमाम तरह के दिवस मनावा जाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस।
1: हाँ
0: एकर
1: हाँ
0: मनावे का मतलब यही बाटे कि लोगन में जागरूकता आवे
1: हाँ
0: पर्यावरण के प्रति भी, अपने भविष्य के प्रति भी। अगर हम सभी अपने भविष्य के प्रति सचेतब, पर्यावरण का रक्षा करब, सुरक्षा करब, वृक्षारोपण करब, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा भविष्य का निर्माण होए और भाई जो हमारा समाज रहे वो भैया अच्छे तरीके से प्रगति करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखा है ये पे हर आदमी के विचार करे कि भाई चेतई के भाई तब जाए कि भाई इस तरह काम में सफलता मिले। अब सुमरन हो जौन वो कहते रहे ना भाई कि भाई किसान भाई से कुछ बातचीत किया गए
0: हाँ हाँ भैया बताओ।
1: तो पंचम लाल भैया बाटे दिवाकर पटेल।

0: भैया से मनोज सिंह भैया बतियान बाटे तो आवा यहो सुन लिया जाए कि कैसे का कुछ खेती बाड़ी में से कहे हैं और कैसे करे और लोग लाभ ले सकते।
1: बिल्कुल भैया।
2: भैया देखा समय समय पर अपने आकाशवाणी में अपने स्टूडियो में जो प्रगतिशील किसान लोग हैं उनके बुलावा जाता है और उनसे उनके खेती किसानी का अनुभव लिया जाता है। काहे कि एक दूसरे से सुन के एक दूसरे से प्रेरित होके ही आगे बढ़ा जा सकता है और अपने खेती किसानी में नया नया प्रयोग किया जा सकता है। तो आज मेरी खेती मेरी बात में दो किसान लोग बैठा बढ़े हमारे बीच में हैं। भैया देखे दिवाकर पटेल जी करछना से हैं और साथ ही साथ पंचम लाल जी हैं मऊ आईमा से। भैया आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा। हम आपसे ई जाना चाह पंचम लाल सबसे पहले हम आपसे जाना चाह कि ये समय जो नी खरीफ का समय चलत बा एहमन आप का कहे बाटन खेती किसानी में।
3: भैया ये समय खरीफ में हम धान जो है वो 26 मई को बियड़ जो है डाले थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: और वो मेरी जब हो गई जून 26 जून को एक माह हुआ तो मैं अपने खेत की मैंने पूरी तैयारी किया था मेड़बंदी करके और उसका पानी भराओ और किसी में टमाटर लगाया था किसी में क्या कहते हैं हरी खाद के लिए सड़ाया था और ये सब को तैयार करके हमने 9 बीघा 3 जुलाई को अपने हमने तैयार कर दिया पूरा।
2: अच्छा अच्छा 9 बीघा में मतलब।
3: जी हाँ 9 बीघा बिल्कुल धान की खेती।
2: 9 बीघा तो काफी मतलब बड़े पैमाने पर आप धान का खेती रहें। हम आपसे ये जानना चाहब कि धान जैसे कि खरीफ का मुख्य फसल बा
3: जी हाँ
2: तो कौन ढंग से एकर तैयारी करत हैं और पहले भी आप की हुई है धान का अच्छी
3: करते
2: तो आपका अनुभव की कौन तरीके से करे से खेती लाभप्रद होता और धान का पैदावार
3: बढ़िया। देखे हम अपने किसान भाइयों का ही बताव चाहते है कि धान अगर करत हो तो जोन विधि हम अपनाई थे इसको सबसे समय के ध्यान रखना चाहिए और अगर बियड़ आपकी तगड़ी हो गई तो धान जो है वो उसको बाद में दिक्कत करता है। 70-75 दिन के में ये धान जो है करीब ये 4 गांठ इसमें बनती धान में और उसके बाद फिर अगर आप देर कर दिया तो गांठ बनना दूभर हो जाता है बाद में आपकी बालियां भी नहीं अच्छी बन पाती है और आपको दिक्कत होती है।
2: बिल्कुल भैया हम कहें कि देखा खेती किसानी में अगर समय के प्रति लोग सचेत ना रहे हैं तो निश्चित तौर पे खेती किसानी एक तरीके से ज्यादा अमन लागत भी लगी और अमन जो है कि पैदावार कम हुई साथ ही साथ घाटा का सौदा हुई। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहब कि जैसे धान कहा जाता ना कि धान पान और केरा ये सब पानी के चेहरा पानी पानी चाहिए कबो कबो ऐसा होता भाई कि देखा दौ राजा तान देते हैं है?
3: तो
2: ऐसा समय में सिंचाई का व्यवस्था भी रहल बड़ा जरूरी होता है तो आपके पास कुछ सिंचाई का अपन व्यवस्था।
3: भैया हमारे पास 3 ट्यूबवेल निजी है अपने पर्सनल सब में जो है वो पानी अपना है डालते रहते हैं। धान की विशेषता यह है कि अगर आप धान की रुपाई कर दिया तो उसमें बराबर पानी बराबर बना रहना चाहिए। जब उसमें बराबर पानी बना रहेगा तो कोई भी खरपतवार जो है वो उगेगा नहीं।
2: बिल्कुल
3: आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है और विशेष करके धान की और एक विशेषता आपको बताएं किसान भाइयों को आखिरी में जब 70-75 दिन हो जाता है उसके बाद इसकी अगली जो गांठ जहाँ से फिर बनती है वहीं वो बाली का रूप ले लेती है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: बाली का रूप ले करके अगर आप उसको उस समय पानी सीढ़ा पहुंचाए रखिए अगर पानी भरा नहीं है तो सीढ़ा जरूर पहुंचाए रखिए। जब इसमें बाली शुरू हो जाए तो आप ये करिए कि इसका ये 3.5 दिन तक इसकी ओबरी खुली रहती जब बालियां शुरू हो जाए उस मध्य में आपको पानी नहीं देना है न आपको खेत के मेड़े जाना है।
2: बिल्कुल भैया देखा ही अनुभव का बात है और इतना अनुभवी किसान है तो निश्चित तौर पे सुन के बाकी लोगों के भी गुने के चाहिए। धान के अलावा और कौन चीज का खेती इस समय आपकी है बाटे।
3: भैया समय है कि हमारे पास गाय भैंस ज्यादा है।
2: हाँ
3: तो करीब 1.5 बीघा तक बजरी बुआ है।
2: अच्छा बजरी बुआ
3: है। बजरी बुआ है 15-16 बिस्सा बिचरी और चल रही है।
2: अच्छा
3: उसकी खेती है कुछ करते हैं नेनुआ तरोई लौकी का ज्यादा नहीं करते हैं ज्यादा एक 10 बिस्सा तक करते हैं साग सब्जी बाकी हम वो रबी वाली में इसीलिए जल्दी धान लगवाए हैं। हम लगाते हैं आलू और पैदा करते हैं लहसुन प्याज धनिया ये हमारी विशेष उपज है करते हैं।
2: अच्छा तो हम बिल्कुल प्याज और धनिया पर बात करब आपसे।
3: अच्छा
2: और आपका अनुभव लेब लेकिन हम आपसे जाना चाहब पटेल जी कि आप इस समय का की है बाटें खरीफ के समय में।
4: खरीफ के समय में साहब जैसा कि धान बताएं तो धान तो लगाए हैं
2: मुख्य रूप से
4: धान

0: लेकिन व्यावसायिक रूप से फूल, हम फूल की
1: अच्छा
0: खेती करी थी साहब, और फूल में गुलदावरी फूल, सफ़ेद वाला गुलदावरी फूल इस समय लगाया है 10-20 तक
1: अच्छा ये समय लगाए हैं
0: जी।
1: 10-20 समय।
0: हाँ
1: तो भैया देखा हो आजकल तो सब लोग जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं और कृषि के विशेषज्ञ लोग हैं सब ये कहते हैं कि पारंपरिक खेती से हटके कुछ ऐसा खेती करे जो उनसे कि 4 पैसा का नगद आमदनी होके। तो देखा धान के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी लिया गया, हम
0: हाँ
1: आपसे जानना चाहें आपकी फूल का खेती का अनुभव आपका कहाँ बा।
0: फूल की खेती की अनुभव बहुत अच्छा हुआ है, कहें से कि हम इकरे पहले एक बार लगा चुका है फूल, ये दूसरा सीजन है हमारा ये गुलदावरी के लगावे के लिए।
1: अच्छा
0: तो गुलदावरी के लिए हम ये कहब कि खेती की तैयारी सबसे पहले
1: कौन ढंग से करत है
0: कौन ढंग से
1: खेती
0: करे बा है कि उनमें कि घास पूरी तरीके से निकाल दे के बा, उसके बाद उनमें मेड़ बनाए के, इसलिए कि गुलदावरी फूल जो है फूल में पानी के बहुत प्रभाव गलत
1: मतलब
0: मतलब
1: बराबर चाहिए
0: हाँ
1: पानी
0: बराबर
1: चाहिए
0: चाहिए, और
1: प्रचुर
0: पानी
1: मात्रा में पानी चाहिए।
0: भरा न रहना चाहिए, तो इसलिए हम उनमें मेड़बंदी के एकदम कुला पे, तो के
1: हाँ
0: फूल अब लगवे भाई हैं। अब इकरे बाद क्या करे बा कि बस बराबर पानी भरे न पावे जरूरत के हिसाब से पानी, नहीं तो फिर पानी निकाल दे बा है,
1: अच्छा
0: और उसके बाद खाद थोड़ा बहुत बस धीरे धीरे, उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर तक हमारे फूल स्टार्ट हो जाए फूल देव।
1: अच्छा मतलब
0: हाँ
1: यानी
0: अभी
1: कि
0: लगो
1: फूल
0: भाई
1: निकले
0: उस
1: लगे उत्पादन
0: हाँ
1: शुरू हो जाए फूल का।
0: हाँ
1: एक चीज ये जैसे मान ले कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम फूल का खेती करी चाहे कोनो भी ऐसा व्यवसायिक खेती करी, और फूल
0: हाँ
1: तो अगर देखा जाए तो अपने देश में बहुत ज्यादा पैदावार हो रहा बा और जितना पैदावार बा उतने खपत बा।
0: खपत भाई
1: तो
0: बिल्कुल
1: हम आपसे ये जानना चाहब कि जैसे मान ले आप 10-20 में लगाए हैं
0: हाँ।
1: तो इमन लगभग लगभग लागत कितनी पड़ी आप।
0: लागत एमए लगभग लगभग पड़ी हुआ है लगभग 15 से 20 हज़ार, 15 हज़ार अभी तक
1: अच्छा
0: लग चुकी हुआ
1: लमसम मतलब
0: लमसम में।
1: हाँ।
0: हाँ
1: तो
0: लेकिन
1: अभी मतलब जैसे कि 2 साल से आप करते हैं
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पिछले वर्ष का क्या अनुभव रहा है
0: पिछले
1: आपका।
0: वर्ष के अनुभव अच्छा रहा, लगभग हम 25 हज़ार तक लागत लगाए रहे, लेकिन उनमें से हम लगभग 90 हज़ार से 1 लाख रुपया तक
1: बहुत बा भैया तब तो हम तो कहें कि देखा अगर चरगुना लाभ बा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और बहुत ज्यादा लागत भी ना बा
0: हाँ
1: और बहुत ज्यादा कुछ अतिरिक्त कार्य भी ना करे के बाय
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: पानी मान ला कि इस समय में बरसात कभी मिल जाता है बाकी सिंचाई
0: हाँ।
1: का साधन हुई आपके
0: सिंचाई के
1: पास।
0: साधन निजी है, इसलिए कभी कभी बारिश लेट हुए थे,
1: हाँ
0: दस दस दिन 15-15 दिन
1: हाँ
0: बारिश नहीं होती, तो उस समय में पानी की जरूरत
1: पानी
0: पड़े।
1: चलावे के पड़त है।
0: हाँ
1: सबसे बड़ी एक जो उन दिक्कत आओ था और जो उन्हें के सोचे के पड़त है कि मान ले कि अगर आप व्यापारिक तौर पर खेती करते हैं जैसे फूल का
0: हाँ
1: तो बाजार का तलाश करे के पड़त है और साथे
0: हाँ
1: साथे मतलब कहाँ मतलब ओकर खपत बात तो कौने ढंग से करते हैं आखिर एक अपने खेत से बाजार तक कौने तरीके से आप पहुँचावते हैं कोनो दिक्कत होता या
0: ना
1: सहूलियत से हो जाता।
0: सहूलियत से हो जाते हैं, जैसे कि सुबह हमका मंडी लेके जाके रहते हैं, तो शाम के हम फूल सब तोड़ के रख लेते हैं,
1: अच्छा
0: और सुबह उठते 4 बजे निकल रहे थे, 5 बजे तक इलाहाबाद मंडी में पहुंच जाए था, और फूल
1: अच्छा
0: में माला बनावे के रहते हैं, सिर्फ फूल तोड़ के, जैसे गुलाब के खेती किसान लोग करते हैं उसी प्रकार से सेम फूल ही बिक जाते हैं।
1: अच्छा फूल
0: और
1: सीधे मतलब आप खुद ही
0: हाँ
1: जो ना कि ओके बाजार तक मंडी तक
0: हाँ
1: पहुंचा
0: पहुँचा
1: देते।
0: रहे थे, लेकिन अब कुछ लोगों की जैसे जानकारी होगी बाकी हम फूल लगाए थे, तो कुछ ग्राहक ऐसे हैं कि आ जाते हैं घरे ले दो
1: अच्छा
0: किलो
1: तो
0: 4 किलो,
1: बहुत बढ़िया मतलब
0: तो
1: कोनो दिक्कत ना आवत
0: कौनो
1: है
0: प्रकार
1: खपत
0: जैसे
1: पूरा हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: भाई हम कहें कि देखा बहुत बढ़िया बात बा और यही तरीके से बाकी किसान लोगों के कुछ सोचे के चाहिए कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ ऐसा खेती करें जो से कि उनके फायदा
0: अतिरिक्त
1: होके।
0: लाभ।
1: अब हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते जैसे
0: हाँ क्या
1: आप धान
0: भैया
1: के बारे में बताएंगे उन्हें कि पंचमलाल जी
0: जी भैया
1: और साथे साथे हम आपसे ये जानना चाहब कि व्यावसायिक तौर पर आप बागवानी चाहे खेती में क्या करते हैं।
0: बागवानी में जैसे जी हम बांस की खेती करते हैं,
1: अच्छा बांस की खेती
0: बांस की खेती जी, और ये मेरा पूर्वज से मेरे ख्याल से सौ
1: मतलब
0: साल पहले से मेरे
1: पारंपरिक तौर तरीका से चला आता है
0: हाँ
1: जमीन
0: ये
1: को ना
0: चला रहा है
1: खानदानी
0: सौ
1: एक
0: साल
1: तरीके से।
0: खानदानी चला रहा है जी। तो मेरे पास करीब वो कोठ कहते हैं ना जो थोड़ा झुम्मी झुम्मी करके होती है, मेरे पास 10-12 कोठ हैं,
1: अच्छा
0: इसमें जो है वो ज़्यादा लागत नहीं है, वो मई वही जून के महीने में मिर्गिसरा होता है, मिर्गिसरा के अंदर इनमें कोठियों में कुछ डला देते हैं, पुआल है और इस टाइप का, अब कुछ मट्टी उट्टी डलवा देते हैं, तो वो बांस जो है करेल निकलता ज़्यादा करके, और इसकी करेल जो जब निकलती है बढ़िया स्वस्थ करेल 24 घंटे में 6 इंची बढ़ता है जी,
1: अच्छा
0: हाँ छः
1: 24 घंटा
0: इंची
1: में 6 इंची तो
0: छः इंची
1: बढ़वार तो
0: बढ़
1: बहुत तेज होते हैं।
0: हाँ इसकी बढ़वार बहुत है, 24 घंटे में 6 इंची बढ़ता है, और कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि बांस फूला आता है, जो फूल आ गया वो बांस बिल्कुल उसका तत्व तो कुछ रह नहीं जाता, अब उसमें भौकी डलिया जो भी बनाते हैं लोग ले जाते हैं कुछ बनता नहीं है, बिल्कुल से बेकार हो जाता है,
1: हाँ
0: और बिना पैसे की खेती है जी।
1: बिल्कुल बिना पैसे के भाई बांस कहा ही जाते हैं
0: हाँ
1: कि अगर

0: कायदे से।
1: और पैसे वाली खेती में अब ये फसल करते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: ये मांस का खपत कैसे होता है, मतलब
1: खपत
0: बिक्री
1: जी इसकी
0: ढंग से करते हैं?
1: ऐसा न पूछे, जिसको तुरंत आते हैं, जो डलिया वलिया नहीं बनाते हैं, वो लोग हमेशा आते रहते हैं।
0: अच्छा, सीधे मतलब आके वहीं से, यहीं
1: आके
0: से ले लेते
1: वही
0: हैं?
1: काट लेते हैं, वो
0: अरे
1: कहते
0: बहुत
1: हैं
0: बढ़िया
1: तब
0: भाई।
1: 250 300 का एक एक बांस कटता है।
0: मतलब भाई हम कहें कि कोनो अतिरिक्त समय हम ना देवे के बाद,
1: कुछ नहीं
0: कोनो
1: है, कुछ
0: अतिरिक्त
1: कुछ नहीं,
0: लागत ना लगावे के बाद,
1: कुछ नहीं।
0: थोड़ा सा अपन अगर सोच के लोग बदलें और थोड़ा सा
1: हाँ
0: एक बार अगर प्रयास कर दें, तो घरे
1: हाँ
0: बैठा बैठा खेती किसानी का भी काम हुई और
1: हाँ
0: देखा जो ने कि ऐसे जो ने कि एक
1: पैसा
0: नगद
1: मिल
0: आमदनी
1: जाता
0: भी
1: है।
0: होगी। और एक अलावा
1: और
0: बांस के अलावा आप क्या करते हैं
1: बांस
0: खेती में,
1: की
0: व्यावसायिक खेती क्या करते हैं?
1: व्यावसायिक खेती में जी हमारे पास, फिर हम जैसे लहसुन समय में बहुत पैदा करते हैं,
0: लहसुन
1: एक हाँ 1 बीघा तक लहसुन लगाते हैं।
0: 1 बीघा लहसुन?
1: जी हाँ, धनिया बोते हैं और
0: अच्छा।
1: उसके बाद प्याज लगाते हैं, 1 बीघा 1.5 बीघा हम सारी व्यवस्था करते हैं। लहसुन में हमको ज़्यादा पड़ता मिलता है,
0: लहसुन का है नहीं, लहसुन का तो भाई रात रात दिन
1: उसको
0: दाम ऐसा बढ़ जाता है कि खाए
1: वो
0: बड़ा मुश्किल हो
1: भैया
0: जाते
1: उसकी
0: हैं।
1: तैयारी जो है ना, गोबर की जो जो सड़ी खाद होती है बिल्कुल से, उसको
0: हाँ।
1: सड़ी खाद डालते हैं। फिर हम 10-12 बोकरी दिया है, ये बोकरी की रेड़ी जो रखते हैं, जिस समय बोना होता है लहसुन को जरूर उसको डालते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: डालने के बाद जो है वो जब लहसुन माने अच्छा होता है, 6 महीने का पौधा होता है। एक विशेष बात इसमें और है जी, लहसुन 6 महीने का पौधा होता है, इसको जब हरा डंठल रहता है 5 साढ़े 5 महीने में, तब इसको खोदना पड़ता है। बहुत खास
0: अच्छा।
1: बात है कि जिस दिन से आप लहसुन, जैसे आप खुदाई कर दिए आज, 27 दिन तक लहसुन बढ़ता है जी। और कितना बढ़ता है, 27 दिन के अंदर 1 किलो का अगर पोड़ा बनाए हैं तो 350 350 350 ग्राम उसमें खोदने के बाद बढ़ता है लहसुन।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ, और
0: और धनिया, हरी
1: कौन
0: धनिया बेचते हैं कि धनिया का
1: नहीं,
0: जो हम?
1: धनिया हम मसले ही धनिया,
0: अच्छा,
1: हम
0: मसाले ही धनिया।
1: धनिया में भी एक बहुत विशेषता है जी, वो उसमें जब धनिया जैसे बोना है, कल आपको 1 किलो 2 किलो बोना है, शाम के ही आज शाम को जैसे सुबह बोना है, अदर के उसको भिगो दो और सवेरे आप बो, जैसे बोना चाहिए। देखिए आपको अगर 1 कुंतल है तो 1.25 कुंतल 1.5 कुंतल धनिया पैदा होना है।
0: लेकिन कुल मिला के एक तरीके से बीज का शोधन हो जाता है, वो
1: अब
0: प्रक्रिया से वो शोधन
1: प्रक्रिया
0: हो
1: हो
0: जाता है और
1: जाता है।
0: बीज एक प्रकार से बढ़िया ढंग से अंकुरित होता है।
1: और प्याज भी जान ले थोड़ा जी, प्याज के बारे
0: हाँ
1: में,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: प्याज के बारे में जैसे कई परत होती है, अभी सबको मालूम नहीं है, खाता है आदमी उसको। आप जितना आप खाद पांच डाल करके, पोटास वगैरह गोबर खाद डाल करके बढ़ाएंगे, जय पत्ती ऊपर कर पाओगे तय ही उसकी परत बन पाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसमें जब
0: बिल्कुल
1: ज्यादा परत होगी, ज्यादा मोटी होगी, उसकी अच्छी खपत होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखा ये सब अनुभव बा खेती किसानी का,
1: और
0: और
1: भैया जान
0: अनुभव
1: ले,
0: से बड़ा कुछ होत नहीं बा। पटेल जी आपसे ही जाना चाह कि
1: हाँ
0: जैसे आपने फूल का खेती का बात की है ना, बाकी तो खरीफ का आप खेती कहते हैं,
1: हाँ
0: पशुपालन में का की है पटेल?
2: पशुपालन में भैंस हैं और गाय हैं, बकरी वगैरह तो नहीं है लेकिन भैंस और गाय रखे हैं, और कुछ बागवानी बसा है हमारे पास।
0: अच्छा
2: बागवानी में जैसे कि आम बा और अमरूद।
0: अच्छा आम और अमरूद। तो
2: हाँ
0: आम अमरूद मतलब कुछ अपने खाए से ज्यादा ऐसे निकल जाते हैं व्यावसायिक
2: हाँ
0: तौर पर बाजार
2: हाँ
0: में बेचे भर
2: बिल्कुल
0: के?
2: बिल्कुल बिल्कुल, अमरूद के व्यावसायिक रूप से बाजार में बेचा जाता है,
0: अच्छा।
2: और आम भी रहा था रिश्तेदारी वगैरह में भी कुछ दे दिया जाता है, और बाकी बाजार में भी बेच दिया जाता है, क्योंकि
0: अच्छा।
2: बगीचा वहाँ लगभग 7-8 पेड़ आम के हैं और अमरूद के तो 20-20 पेड़ होंगे लगभग।
0: बहुत भाई हम कहें कि खेती किसानी पशु प्राणी बाग
2: बाग
0: बागवानी
2: बागवानी
0: ये सब एक दूसरे का पूरक होते हैं। एक चीज़ और ऐसे में जैसे कि बतावत हैं लोग जितने भी कृषि के विशेषज्ञ हैं
2: हाँ
0: कि जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करा,
2: बिल्कुल
0: गोबर के
2: बिल्कुल,
0: खाद का ज़्यादा प्रयोग करा, तो का आप अपने खेती में के आजमावते हैं
2: जैविक
0: रासायनिक खाद
2: खेत
0: पर निर्भरता कम की है बाटे?
2: बिल्कुल बिल्कुल, रासायनिक खाद के निर्भरता बहुत ही कम होगी, मान के चलेंगे 20-25% तक डाली थे, बाकी की 75% लगभग, 70 से 75% जैविक खाद और गोबर की खाद डाली थे।
0: अच्छा, पशुपालन के बाटे तो गोबर तो
2: हाँ
0: मिल ही
2: हाँ
0: जातो ही।
2: गोबर पर्याप्त मात्रा मिल जाते हैं, और जैविक खाद जैसे कि हम जैसे तैयार करी थी केचुआ द्वारा, जैसे जैविक बनते हैं, तो 3 गड्ढा हम बनाए ही, 3 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबा और 1 फीट गहरान, और उनमें केचुआ फिर डाल के गोबर वगैरह डाल दिया है,
0: हाँ
2: और नीचे नीचे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुआ,
0: हाँ जोड़ दिए हैं
2: हाँ
0: नीचे से भी।
2: जोड़
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जगह छोड़ा गवा, एक वाले गड्ढा में जब गोबर डाल दिए थे, फिर केचुआ जब ओके जैविक खाद में बदल देते हैं, फिर वो केचुआ दूसरे वाले गड्ढा में आ जाते हैं,
0: अच्छा।
2: जब गोबर ताज़ा डाल दिए थे तो दूसरे वाले में चला जाते हैं, फिर पहले वाले खाद हमार तैयार हो जाते हैं, फिर ओका हम निकाल के अपने खेती में बागवानी में भी थोड़ा बहुत

0: खेती में, फूल में, हर चीज में, सब्जी साग में उसका प्रयोग हम
1: बिल्कुल
0: करते हैं।
1: बिल्कुल भैया, हम कहें कि देखा यही तरीके से अगर प्रगतिशील तौर तरीका अपनावा जाए तो निश्चित तौर पर अपन खेती लाभप्रद हुई और साथे साथे अपने जो माटी का संरचना बा वो भी जो कि बढ़िया
0: बनी
1: रही,
0: बढ़िया बनी
1: बनी
0: रहे।
1: रही। ऐसे देखें पैदावार भी बढ़िया होते हैं और
0: बिल्कुल
1: लागत
0: बिल्कुल
1: भी कम होते हैं। एक चीज हम जाना चाह
0: भाई,
1: पंचम लाल जी,
0: भैया
1: आजकल लोग कहते हैं माटी के जांच करावे बदे कि भाई बिना माटी के जांच के खेती जिन करा, आप माटी के जांच करावत हैं और
0: हाँ,
1: कौन ढंग से करावत?
0: ये ढंग है कि आप पहले तो हम ऐसा करते हैं कि उसको जो मेरा खेत खाली रहता है उसका नंबर आता रहता है, तो उसके जो है मिट्टी लेते हैं। और मिट्टी किस तरह से लेते हैं, खेत के चारों कोनों से एक करीब एक लाटा हट करके, एक इधर करके खुरपी से करीब 9 इंची गड्ढा बनाते हैं, ऐसे साधारण से खोद करके उसकी मिट्टी 5 गड्ढा यानी एक मध्य खेत का और चार चार कोने का ले जा करके उसको आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे अगर एक 5 किलो तक हो गई, 1/2 करते हैं, 1/2
1: अच्छा।
0: करते करते करते जब 1 पाव 1.5 पाव रह जाता है तो इसको एक थैली बनाते हैं।

0: खुरपी से करीब 9 इंची गड्ढा बनाते हैं ऐसे साधारण से खोद करके, उसकी मिट्टी 5 गड्ढा यानी एक मध्य खेत का चार चार कोने का ले जा करके उसको आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे अगर 1-5 किलो तक हो गई, 1/2 करते हैं, 1/2
1: अच्छा
0: करते करते करते जब 1 पाव 1.5 पाव रह जाता है तो इसको एक थैली बनाते हैं, उसका लिखते हैं कौन गाटा का है, कि तो उत्तर का है कि दक्षिण का, ले जाकर कृषि रक्षा इकाई में वहीं दे देते हैं। आसानी से हो जाता
1: अच्छा
0: है
1: अच्छा
0: तो
1: तो
0: मालूम हो जाता है कि इसमें कितना पीएस मान क्या है, किसमें इसके कौन सी खाद की कमी है, आप
1: कौन से खाद कमी बा, कौन से तत्व का कमी बा, कौन चीज का अधिकता बा, साथे
0: अधिकता
1: साथे
0: बोल
1: कौन
0: तुम।
1: चीज का
0: हाँ
1: खेती किया जाए,
0: हाँ
1: और
0: ये
1: वही के अनुसार फसल चक्र भी
0: हाँ
1: अपना
0: उसे
1: होते हैं यहाँ।
0: फसल चक्र सी, किसी में किसी बार उरुद बो दिया, मूंग बो दिया, सनई ढैचा कर दिया। अब ज़्यादा करके मैंने आलू खेती होती है ज़्यादा जी, मैं 4-6 बीघा आलू लगाता हूँ तो वो रोटेशन मेरा रहता है, किस तरह से चलता
1: बिल्कुल
0: रहता।
1: भैया, पंचम लाल जी, दिवाकर पटेल जी, आप लोग आएन और अपने खेती किसानी का अनुभव भैया किसान के बीच में आप लोग दिहेन, निश्चित तौर पे लोग सुनिए और अपने खेती किसानी में भी आप लोगों का तजुर्बा अपनाई है और खेती किसानी के लाभप्रद बनाई है। आप लोगों आयन अपन जानकारी दिहन, अनुभव बताएन, ओकरी बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: भैया
2: भैया, देखा दोनों किसान भाइन के भाई अपन अपन अनुभव जोन रहा है भाई, देखा कितना फरियाए के बताएन है, और मन्नू भैया कितना फरियाए के हर बात के पूछ लेहन। तो निश्चित तौर पे भाई अगर ये कार्यक्रम में पंच भाई सुने हुई जरूर भैया का गुण, कहें से भाई ये कहा जाते ना बराबर कि भैया देखा थोड़ा सा लीक से हट के अगर खेती किया जाए ना
1: बिल्कुल।
2: तो उनमें थोड़ा सा गुंजाइश के संभावना ज़्यादा होत है।
1: और जो नी बात भैया चंद्र भैया आप कहते हैं कि लीक से हट के, तो कुल मिलाई के हम ही समझी था कि लीक से हट के भी और साथ ही साथ जोन जानकारी बाटे भाई, सही जानकारी आपके अगर मिले,
2: हाँ
1: जोन विशेषज्ञ भैया बतावत हैं, जोन वैज्ञानिक भैया बतावत हैं तौर तरीका,
2: या
1: वैज्ञानिक
2: तमाम भैया
1: ढंग से
2: प्रशिक्षण के कार्यक्रम
1: प्रशिक्षण का
2: चलते हैं।
1: कार्यक्रम होता भाई, अगर उसे अगर अपन खेती किसानी किया जाए तो निश्चित तौर पर लाभ मिले। और जोन ही भैया दो भैया के जोन बातचीत रही, उनकी फरियाई फरियाई के बताएं अपन अनुभव जोन बताएं,
2: बिल्कुल
1: यानी कि जोन बातें कही जाते भैया विशेषज्ञ भैया भी बतावत हैं, जब ओका खेती किसानी में अपनावा जाता और तब देखा जाता का दिक्कत होत बाटे, का अच्छा होत बा, का खराब होत बा, वो
2: जरूर
1: अनुभव जब साझा किया जाता तो निश्चित तौर पर एक आत्मविश्वास आवता अपने ही अंदर, और जोन सुनने वाला भैया हैं कि अगर
2: हाँ
1: हमहू पचई तरीका अपनाओ तो निश्चित तौर पर हमहू पचन के लाभ मिले। अब जैसे
2: बिल्कुल
1: जैविक खाद का बात किए, गोबर खाद का बात किए, वर्मी कंपोस्ट का बात किए,
2: फूल के खेती की बात
1: फूल का
2: कहें।
1: खेती के बात किए हैं, तमाम तरह का अन्य तरह का जो है व्यावसायिक कार्य कई रहा है किसान भाई, बाग बागवानी का कार्य कई रहा है, तो ई चीज ऐसा चीज बाटे कि जब एक दूसरे से किसान भाई सुनही तो निश्चित तौर पर उ तौर तरीका अपनही जैसे उनके लाभ मिले। अब
2: और
1: जैसे
2: का
1: भैया बताएं कि भाई ई तो हमहू समझे थे कि भाई अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत किसान भैया आ रहे हैं जो वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर रहा है, अब कैसे वो बनाई जाए, कितना वो सफल बाटे, कैसे उनका छिड़काव किया जाए, ये सब जोन चीज बाटे इस समय समय पर भैया अपने कार्यक्रम में हम सब बुलाई था विशेषज्ञ के और जोन पंच भैया आ रहे हैं और उनके माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुँचाई जाता, ये
2: हाँ
1: जानकारी पहुँचावे का यही मतलब होता कि वो जानकारी आप अच्छे से सुनाई और अपने खेती किसानी में उनका प्रयोग में लेके आवाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो भाई देखा एसएस कार्यक्रम के लाभ तो जरूर ले चाहे। एक चीज़ और भाई कि भाई यौन ये तरह तरह के कार्यक्रम सुनावा जात रहा था ना भाई, किसान भाई का सुनत बाटें तो कितना गुणत बाटें, का कुछ और भैया कार्यक्रम से संबंधित, खेती बाड़ी संबंधित, बाग बागवानी संबंधित और कुछ का कार्यक्रम के सुने चाहते हैं, जानकारी चाहत बाटें, अपन कुछ भाई जौन बा अपन प्रतिक्रिया
1: प्रतिक्रिया
2: जौन।
1: के रूप में
2: हाँ
1: अपन एक तरह से जोन प्रतिक्रिया बांटे, कोनो संदेश बांटे या कोनो सवाल बांटे
2: हाँ
1: या
2: हाँ
1: कोनो कार्यक्रम को लेके के सुझाव बांटे, तो भाई अगर एक तरह का कोनो चीज बांटे तो भाई पंच भाई आप बिल्कुल दिल खोल के निश्चिंत हो के जो ने नंबर बांटे
2: हाँ
1: 800-4926-250
2: हाँ
1: नंबर में एक बार फिर से बोल देते ही 800-4926-250 भैया ये पर जाए कि व्हाट्सएप नंबर बांटे, ये पर आप अपने संदेश दे सकते हैं, बहुत किसान भाई अपन संदेश देते हैं जेके हम सभी समय समय पे कार्यक्रम में अपने शामिल करी था, तो
2: बिल्कुल
1: आपों का अगर कोनो संदेश हो, कोनो सुझाव हो या विशेषज्ञ से कोनो प्रश्न हो अपने तरफ से तो भाई ओका दई दें, निश्चित तौर पर ओका अपने कार्यक्रम में शामिल किया जाए और जोन आप सुझाव दें ही उसे अपन कार्यक्रम और अच्छा बनावा जाए।
2: बिल्कुल हम सोचते हैं कि चला चलाओ तो कुछ गवनई और सुन लिया जाए।
1: तो गवनई तो भैया सुनवाई नहीं, मगर जैसन घेरे बाटे, घेरी घेरा में भैया सबसे बढ़िया जो चीज बजत है

0: हाँ भैया
1: भैया देखा तेरा सलाल और संघाती गाय कजरी तो हो गए। अब भाई देखा मौसम जो बा ना देखा ऐसा बा कि अब ई कर इशारा करत बा कि भाई देखा समय से अगर घरे चले गए तो भाई अपन जोन बा जोन
0: खेती किसानी के काम भी भाई मौसम के अनुसार करें और जो गोरु बछड़ा पाले हैं भाई मौसम के अनुसार भी उनकर देखभाल करें। कहें कि ज्यादा बारिश जब हो ही जाते तो तमाम तरह के जो पशु संबंधित रोग होते वो लगत हैं, तो भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, चारा पानी सब अच्छे से प्रबंध करें ही, तो निश्चित तौर पर भाई वो सफल रही खेती किसानी में।
1: जो धान के रोपाई पे ओका समय से करें।
0: बिल्कुल। और भैया एक चीज और बाटे कि अब समय हो चला बाटे कि हमो पचन के चलाई का, तो भाई पंच भाई से आज्ञा लीन जाए, तो पंचों राम राम, राम।

हमारे ग्रामीण भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप और अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, 7:31 से हमारी इसी सभा में आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 7:31 से 8:45 तक और फिर समाचारों के बाद 9:30 से खेल की समाप्ति तक।

कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर विदुषी सुलोचना बृहस्पति का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित अनुपम राय का तबला वादन और रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गुरु प्रसाद शर्मा का वायलिन वादन। आपकी पसंद ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 12:30 पर।

कल सुबह 10:05 पर एथलीट बजरंग पांडे से अभयकांत तिवारी की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। सुबह 10:30 पर राधेश्याम सिंह और साथी के गाई लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। श्रोताओं, अभी आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में सुन रही थी।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा करती है। खुद साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाने में अपना अमूल्य योगदान कीजिए। हमें यह नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। आइए सांप्रदायिक सौहार्द का व्रत लें।

0: हम आकाशवाणी प्रयागराज से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। वक्त हो चला है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
2: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
3: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा

0: और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
1: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे उस पर चर्चा हुई है और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए।

केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: Today, because it's lots, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved Chetan. Welcome to the studio.
2: Thank you.
1: Also, we have Vaishali Mathur, India first-class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right? जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, बाय एनी मीन्स, मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स
3: को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था, कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों

के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया, जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।